मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 की श्रावण मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 अगस्त 2026। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 और 3 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपकी रेडियो मित्र स्मिता। आप सभी को हमारा नमस्कार, सुप्रभात।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इस बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री रक्षा सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा संपन्न कर ली है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी है। प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदान सूची प्रकाशित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। 18 से 30 वर्ष के युवा, जिनमें उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, NSS वॉलंटियर और युवा पेशेवर शामिल हैं, युवा संगम के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय ने लखनऊ में हाथी दांत की कलाकृतियों के गैर कानूनी व्यापार में शामिल एक वन्यजीव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में जब्त 54 नकाशीदार चीजें, जिसमें बैल, हाथी जैसे जानवरों की मूर्तियां शामिल हैं, गिरफ्तार 4 लोगों को आगे की जांच के लिए उत्तर प्रदेश वन विभाग को सौंप दिया गया है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद, BNP नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिन चलने वाले इस महोत्सव में भारत और रूस के लोगों को आपसी संस्कृति और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की मित्रता थीम पर आयोजित ये फेस्टिवल मॉस्को की गोस्तनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। और अब खेल खबरें। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन के खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टरडेम में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। इसके अलावा श्रीलंका के गोल में भारत ने दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को भी 165 रन से मात दी है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में देर रात बारिश हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना का शुभारंभ हम कर रहे हैं समूह स्वर में गाए इस देशगान से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशगान। वंदना में अब लीजिए सुनते हैं नंदिनी शरण की आवाज़ में ये भक्ति रचना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नंदिनी शरण की आवाज़ में ये भजन। वंदना में आइए सुनते हैं छाया गांगुली की स्वर में एक और भक्ति रचना।

छाया गांगुली की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये भक्ति रचना। वंदना में आइए सुनते हैं हरिओम शरण की आवाज़ में ये भजन।

हरिओम शरण की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का समापन अब हम कर रहे हैं महेंद्र कपूर और सुलक्षणा पंडित के गाए इस भक्ति रचना के साथ।

0: इस भजन के साथ ही आज की वंदना यहीं संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है चिंतन। चिंतन के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं अतिशयोक्ति पूर्ण कथन। इस विषय पर श्री एसपी सारस्वत के विचार। वाचक स्वर कल्पना प्रदीप का है।
1: मानव जीवन में मूल्यों का सदैव महत्व रहा है। मूल्यहीन जीवन पशु के समान है। अतः मानव होने के नाते हमें सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। हम मानवीय मूल्यों को संवर्धन एवं संरक्षण करते रहें। आज के इस भौतिक जगत में अधिकांशतः लोग मूल्यों से शनह शनह दूर चलते चले जा रहे हैं। हम जाने अथवा अनजाने में प्रतिदिन छोटे छोटे स्वार्थों की पूर्ति और अहंकार के पोषण हेतु कुछ अन्यथा एवं अनुचित करते रहते हैं। प्रायः ये देखा जाता है कि व्यक्ति अपने क्षुद्र उद्देश्यों की पूर्ति बड़ी चालाकी के साथ एक छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है अथवा बिना कारण ही असत्य का सहारा लेता है। बढ़ा चढ़ाकर दिया गया कथन ही अतिशयोक्तिपूर्ण कथन कहलाता है। उदाहरण के लिए वो 10 मिनट को 10 घंटा या 1 माह को 1 साल के बराबर आंकलन कर सामने वाले व्यक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। जीवन में हर पल अनेक उदाहरण आपके सामने आते हैं जब व्यक्ति अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में या तो अपने ज्ञान का बखान करता है या किसी की आर्थिक स्थिति का महिमा गान करता है जिसकी बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। इसी तरह व्यक्ति अनावश्यक रूप से दैनिक जीवन में असत्य का सहारा लेता है अथवा तिल का ताड़ बनाकर प्रस्तुत करता है जिसका कोई औचित्य नहीं होता। आधुनिक युग में बढ़ते मोबाइल के प्रयोग ने झूठ बोलने की आदत ही डाल दी है। उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। ये दोनों ही प्रकार की स्थिति अवांछित है जिससे बचा जा सकता है। कुछ लोग तो रेडीमेड बहाने बनाकर तैयार रखने में बहुत माहिर होते हैं, चाहे वो स्थान कार्यस्थल हो या घर परिवार या ईष्ट मित्र हो, इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्तियों की स्थिति धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का जैसी हो जाती है। दुर्भाग्य से ऐसे व्यक्ति जो अतिशयोक्तिपूर्ण एवं असत्य कथन के आदि हो जाते हैं, वे समझते हैं कि उनकी इस तथा कथित स्मार्टनेस को लोग नहीं समझते, जबकि सत्य ये है कि लंबे समय तक ऐसा करते रहने से उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर अच्छी छाप नहीं पड़ती। यही नहीं, इस दुष्प्रवृत्ति का दूसरों पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। गुड मैनर्स जैसे रचनात्मक दिशा में प्रभावित करते हैं, वैसे ही इल मैनर्स नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर नकारात्मकता फैलाते हैं जो समाज को दुष्प्रभावित करते हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण एवं असत्य कथन वाले व्यक्ति इस शैली का प्रयोग दूसरों को प्रभावित करने का असफल प्रयास करते हैं। धीरे धीरे ये दुर्गुण आदत में बदल जाती है और यही आदत स्वभाव में बदल जाती है जिसमें परिवर्तन लाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। अतः उचित होगा कि बुराई को पनपने से पहले ही रोक दिया जाए। ऐसे व्यक्ति कई बार तो इस बुरी आदत के आरोप में रंगे हाथ पकड़े भी जाते हैं, अर्थात उनका अतिशयोक्तिपूर्ण कथन अथवा असत्य कथन उजागर हो जाता है। ये बड़ी विषम परिस्थिति होती है जिसके लिए वे स्वयं दोषी हैं। ऐसे व्यक्ति कभी विश्वसनीय नहीं रहते तथा अपने इस कृत्य के कारण दूसरों की नजरों में अपना सम्मान भी खो देते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बड़ी बड़ी बातों से ज़्यादा महत्व रखती हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें हर पल घटित होती रहती हैं जबकि बड़ी बड़ी बातों के अवसर जीवन में बहुत कम आते हैं। आवश्यकता है इस अवांछित और अनावश्यक बुराई को दूर करने के। इसके लिए कुछ हद तक हम अपना परिवार, अपनी शिक्षा को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, परिवार प्राथमिक पाठशाला कहलाता है। अतः माँ बाप को प्रारंभ से ही अपने बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित करने की शिक्षा डालनी चाहिए। कई बार तो प्रत्यक्ष रूप से माँ बाप ही बच्चों को असत्य कथन करने को बढ़ावा देते हैं। प्राथमिक शिक्षा में नैतिक मूल्यों पर बल देने की आवश्यकता है।

यह हमारा सबका दायित्व है कि हम अपने चारों ओर एक ऐसे परिवेश का निर्माण करें जहां बच्चे संस्कारवान बने और सामाजिक और नैतिक मूल्यों को आत्मसात करते हुए

राजा जनक की यज्ञशाला में सीता को वरण करने के लिए आए नृप समुदाय ने श्री राम तथा लक्ष्मण को अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार देखा। कुछ को वो वीर रस की प्रतिमूर्ति दिखे तो कुछ ने उन्हें अपने काल के रूप में देखा। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। इसी प्रकार स्त्रियां भी हर्षित होकर दोनों भाइयों को अपनी मन भावन छवि में देख रही हैं। उनके लिए मानो स्वयं श्रृंगार रस मानव का अनुपम रूप धारण कर वहां पहुंच गया है। विद्वानों को प्रभु का विराट रूप दिखा और जनक जी के सगे संबंधियों ने उन्हें अपने कुटुंब के रूप में देखा। रानियों को वो अपने बालक प्रतीत हो रहे हैं तो योगी यति उनमें शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन हुए, किंतु सीता जी जिस भाव से श्री राम को देख रही हैं उसके सुख और स्नेह का वर्णन करना कठिन है। ना तो वो स्वयं उसे व्यक्त कर सकती हैं, ना ही कवि उसके लिए सक्षम है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा। आज की सामयिक चर्चा का विषय है मिर्च की खेती से अधिक लाभ कैसे। जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, मिर्च हमारे भोजन का प्रमुख अंग है। मिर्च की फसल सभी तरह की मौसम सहनशील होने के कारण वर्ष भर उगाई जाती है। मिर्च की फसल नकदी और अत्यधिक लाभप्रद है, लेकिन मिर्च की फसल में कीट और बीमारियों से अधिक नुकसान पहुंचता है, इसलिए मिर्च की फसल लाभप्रद सिद्ध नहीं हो पाती है। बीज को बोने से पहले हमेशा फफूंदनाशक दवाओं से उपचारित करके बुवाई करनी चाहिए। नर्सरी की भूमि को उपचारित करने के लिए कार्बोफ्लोरान 3G 8 से 10 ग्राम मात्रा प्रति वर्ग मीटर क्यारियों में जुताई गुड़ाई के समय मिला देना चाहिए। उसके बाद बीज की बुवाई क्यारियों में करनी चाहिए। बीज दर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई करने के लिए 1250 ग्राम पर्याप्त रहती है। मिर्च की उन्नतशील प्रजातियां हैं NP 46, पंत सीवन, जवाहर 218, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, आंध्रा ज्योति, किरण हाइब्रिड, तेजस्विनी, सूर्यमुखी। नर्सरी में समय समय पर सिंचाई करते रहें और खरपतवारों को निकालकर नष्ट करते रहें। पौधे छोटे और मुलायम कमजोर होने के कारण कीट और बीमारियों के प्रभाव से शीघ्र ही नष्ट होने लगते हैं। पौधशाला में मुक्त जड़ गलन, पर्ण कुंचन और मोजक बीमारियों से पौध प्रभावित होती है। जड़ गलन बीमारी में जमीन की सतह से लगा हुआ भाग काला पड़ने लगता है, जबकि पर्ण कुंचन और मोजा कीट की रस चूसने से विषाणु के प्रविष्ट होने पर फैलता है। पौधशाला में पौधों के बचाव के लिए नियंत्रण के सभी उपाय अपनाने चाहिए। पौध 4-5 सप्ताह में रोपाई योग्य तैयार हो जाती है। रोपाई के लिए खेत की 3-4 बार गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे खेत की मिट्टी भुरभुरी बन जाए। अंतिम जुताई के समय 8 से 10 किलोग्राम कीटनाशक चूर्ण प्रति एकड़ भूमि में भुरकाव कर देना चाहिए। साथ ही पर्याप्त मात्रा में देसी खाद के साथ साथ 100 किलोग्राम नत्रजन खाद, 60 किलोग्राम स्फुर और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर मिला दें। नत्रजन खाद की 1/3 मात्रा खेत तैयार करते समय और शेष मात्रा पौध लगाने के 40 और 60 दिन बाद प्रयोग करनी चाहिए। तैयार खेत में रोपाई करने से पहले नर्सरी में हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे पौध उखाड़ते समय पौधों की जड़ें न टूटने पाए। पौधों की जड़ों को धोकर साफ कर लेना चाहिए, जिससे मिट्टी पूर्णतः हट जाए और पौध रोपाई करने से पहले पौधों की जड़ों को 2 ग्राम बाविस्टीन फफूंदनाशक दवा 1 लीटर पानी के अनुपात में घोल बनाकर पौधों की जड़ों को 30 मिनट तक उपचारित करने के बाद रोपाई लाइनों में करनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, जिससे पौधा जब तक फल देगा फसल में बीमारी लगने की संभावना बहुत कम रहेगी। पौधों को खेत में रोपण करने के बाद पौधों पर माहू, सफेद मक्खी, थ्रिप्स, जैसिड कीटों का प्रकोप शुरू हो जाता है, जो पौधों की पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं। सफेद मक्खी पर्ण कुंचन और मोजक रोग के विषाणु को फैलाने का कार्य करती है। यदि इस कीट को शुरुआत से ही नियंत्रित नहीं किया जाता है तो पूर्ण फसल ही प्रभावित हो जाती है। सफेद मक्खी को नियंत्रित करने के लिए पौध रोपण के 15-20 दिन बाद मेलाथियन 36 SL 2 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी के अनुपात में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। फसल पर फूल बनने के बाद थायोडान 35 EC का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। फसल पर अगर चूड़ी मुड़ी रोग के लक्षण दिखाई देने पर 2 से 3 ग्राम घुलनशील गंधक और आधी मात्रा रोगर 1 लीटर पानी के अनुपात में घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे फसल स्वस्थ रहेगी और पैदावार निश्चित रूप से अधिक मिलेगी।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। आज की सामयिक चर्चा का विषय था मिर्च की खेती से अधिक लाभ कैसे। जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।
2: सड़क पर गाड़ी चलाते समय पैदल चलने वालों का ध्यान रखें। ट्रैफिक सिग्नल पर निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकें। यदि सिग्नल पर टाइमर 90 सेकंड रुकने का निर्देश दे तो इंजन बंद कर दें। बेवजह ईंधन की खपत ना करें। प्रदूषण भी न बढ़ाएं। हरी बत्ती मिलने पर हॉर्न बजाते हुए आगे जाने की जल्दबाजी न करें। ये दुर्घटना को बढ़ावा तो देगा ही, ध्वनि प्रदूषण से चालकों का तनाव भी बढ़ाएगा। सड़क पर चलने का हक सबको है, इसलिए सबका ध्यान रखें।
3: मनु भाई मोटर चली पाम पाम पाम।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
5: 8700001424।

0: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नोपवेशनानन्तरं 13,000 कोटि रूप्यकाधिकाः पञ्चपरियोजनाः अनुमोदिताः। एतासु 4 रेलमार्गसम्बद्धाः, एका च राजमार्गसम्बद्धा परियोजना अस्ति। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इत्येतेषु 4 राज्येषु रेलमार्गस्य 8 बहुमार्गीय परियोजनाः अनुमोदिताः। असौ उक्तवान् यत् आहत्य 50,4,900,000,000,000 रूप्यकाणां व्ययेन एताः परियोजनाः 30,2,000,000,000 तमवर्षात् 31,000,000 तमवर्षपर्यन्तं पूर्णाः करिष्यन्ते।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव संसूचितवान् यत् मंत्रिमण्डलेन बिहार राज्ये मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खण्डस्य राष्ट्रीय राजमार्ग 22 इत्यस्य चतुर्मार्गीय मानकानुसारं उन्नयनमपि अनुमोदितम्। अस्य व्ययः आहत्य 90,500,000,000,000 रूप्यकाधिकः अस्ति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य नवदिल्ल्यां जापानस्य रक्षामन्त्रिणा शिन्ज़िरो कोइजुमी इत्यमुना सह द्विपाक्षिकोपवेशनं करिष्यति। अपेक्षते यत् अस्मिन् उपवेशने हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे रणनीतिक विश्वासः सहयोगश्च अधिकं सुदृढौ भविष्यतः तथा स्थिरतायाः सुरक्षायाश्च प्रवर्धनं भविष्यति। उभौ मन्त्रिणौ सामुद्रिक सुरक्षा क्षेत्रे गहन सहयोगस्य अथ मेक इन इंडिया इत्यस्य च अन्तर्गतं रक्षोपकरणानां प्रौद्योगिक्याश्च क्षेत्रे अधिक निकट सहयोगस्य विषये विचाराणाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजुः एतत् कथनं निराकृतवान् यत् चीन देशः अरुणाचल

0: देशे 60 किलोमीटर पर्यन्तम् अन्तः प्रविष्टः अस्ति. सामाजिकसञ्चारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे श्री रिजिजुः उक्तवान् यत् बांग्लादेशस्य छायाचित्राणि दृश्यचित्राणि च चीनदेशस्य अरुणाचलप्रदेशे प्रवेशं मिथ्यारूपेण प्रदर्शयितुं प्रयोज्यन्ते. असौ उक्तवान् यत् एतादृशानि असत्यानि अभिकथनानि सीमां रक्षतां सैनिकानां मनोबलं न्यूनीकर्तुं शक्नुवन्ति तथा अनावश्यकं भ्रमं जनयितुं शक्नुवन्ति. मन्त्री उक्तवान् यत् भारतचीनसीमासम्बद्धः विषयः गम्भीरः अस्ति. सः जनान् आहूतवान् यत् एतादृशे संवेदनशीलविषये मिथ्यानि उत वा अप्रमाणितानि कथनानि न कुर्वन्तु. दिल्ल्यां प्रचलितस्य विशेषगहनपुनरीक्षणस्य अन्तर्गतम् आवेदनपत्राणाम् उपस्थापनस्य अन्तिमतिथिः अस्य मासस्य 24 दिनाङ्कं यावत् वर्धिता. दिल्ल्याः मुख्यनिर्वाचनाधिकारिणः अनुसारम् अधुना प्रारूपमतदातृसूची अस्य मासस्य 31 दिनाङ्के प्रकाशिता भविष्यति. अभ्यर्थनानाम् आक्षेपानाञ्च प्रस्तुतेः अन्तिमतिथिः आगामि मासस्य 30 दिनाङ्कं भविष्यति. बांग्लादेशे अद्य राष्ट्रपतिपदाय निर्वाचनं भविष्यति. अस्मिन् निर्वाचने सांसदाः शासनाधिरूढस्य बीएनपी दलस्य वरिष्ठनेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर तथा एकादशदलात्मकस्य विपक्षसंयुतेः प्रत्याशी कर्नल ओली अहमद इत्येतयोः मध्ये चयनं करिष्यन्ति. 35 वर्षाणाम् अनन्तरं प्रथमवारं राष्ट्रपतिपदाय निर्वाचने मतदानं भविष्यति. मतदानम् अद्य अपराह्णे 2 वादनादारभ्य सायं 5 वादनपर्यन्तं संसद्भवने भविष्यति. इति वार्ताः.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा. भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा. सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं. इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन के साथ द्विपक्षीय बैठक की. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है.
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं. पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है. पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन. और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का. टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए.
1: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ वार्ता करेंगे. दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे. दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी गई है. प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी. दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है. आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन

0: गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय इस महोत्सव में भारत और रूस के लोगों को आपसी संस्कृति और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की मित्रता विषय पर आयोजित ये फेस्टिवल मॉस्को के गोस्तीनी दौर में आयोजित किया जाएगा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, केरलम, माहे और तमिलनाडु में बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कल देर रात बारिश हुई। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला आज चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल किए, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत को मजबूत बढ़त दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 7:20 पर आप सुन सकेंगे शिवम सिंह तोमर से काव्य पाठ। 7:30 से सुबह 8 तक आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। ये कार्यक्रम हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सुबह 9:02 पर आप सुन सकेंगे सूचना और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। 9:30 पर आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे सलमान खान का सारंगी वादन, राग होगा अहीर भैरव। आपके साथ तबला पर साथ देंगे महेश विशोपिया। 10:05 पर आप सुनेंगे अपनी ही पसंद की फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक सारे ही कार्यक्रम हमारे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। हमारे शाम की सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे हमारे युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी से। ये कार्यक्रम जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति होगी और हमारे मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। 5:33 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। शाम 6 बजे आप सुन सकेंगे NCERT का शैक्षणिक

कार्यक्रम उमंग 7:20 पर आप सुनेंगे कलाकार हरिराम पुरोहित से पर्यावरण गीत और रुचि शिवहरे से झूला गीत। 7:30 पर आप सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। ये कार्यक्रम हमारे भोपाल केंद्र की प्रस्तुति होगी। रात 9:15 पर आप सुन सकेंगे उर्दू समाचार और 9:30 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। रात 10:00 आप पुनः सुन सकेंगे अपनी पसंद की फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। रात 10:30 पर आप आनंद लेंगे राग रंजनी का। ये सभी कार्यक्रम हमारे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित की जाएंगी। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 10 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भव्य, अलौकिक और आपदा मुक्त संघर्ष के लिए तैयार हो रहा उज्जैन। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्लोबल स्किल्स पार्क में प्रशिक्षुओं के अभिमुखीकरण समारोह में होंगे शामिल। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 5-3 से हरा कर अगले दौर के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के भव्य, दिव्य, अलौकिक, आकर्षक और आपदा मुक्त आयोजन के लिए सभी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल उज्जैन को 945.20 करोड़ रुपए की लागत से नए एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात दी। ये 5.30 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं को सहज आवागमन की सुविधाएं प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल कालिदास अकादमी में आयोजित होमगार्ड, आपदा मित्र और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कहा कि सिंहस्थ धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा मेला होगा।
1: सिंहस्थ सहित पूरे साल जो हमारे बड़े बड़े मंदिरों के बीच महाकाल मंदिर और महाकाल के साथ काल भैरव, मंगलनाथ और अन्य देवस्थानों के लिए पुराने शहर की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक दो एलिवेटेड रोड का हमने भूमि पूजन किया लगभग 1000 करोड़ की लागत से। साथ ही होमगार्ड की ट्रेनिंग का भी शुभारंभ किया। इतने बड़े प्रबंधन में हमको अपने आपदा मित्रों को भी जोड़ना पड़ेगा। पुलिस बल को, होमगार्ड को, सबको सतर्क करते हुए उनकी ट्रेनिंग की आवश्यकता है।
0: भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। यह सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है।

0: इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल मैहर में 48 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से सांदीपनी विद्यालय, 7 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से ताला में शासकीय महाविद्यालय भवन, 3 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से अमरपाटन में 30 सीटर बालक छात्रावास तथा आवास का लोकार्पण किया। उन्होंने 21 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्यों तथा 19 करोड़ से अधिक की लागत से जनपद पंचायत मैहर, अमरपाटन और रामनगर में जलगंगा संवर्धन अभियान से जुड़े 1069 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 2 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से पुलिस कंट्रोल रूम तथा 1 करोड़ 47 लाख की लागत से जूरा में नए शासकीय हाईस्कूल भवन और परशुराम धर्मशाला भवन का लोकार्पण भी किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल मैहर स्थित मां शारदा माता मंदिर पहुंचकर विधि विधानपूर्वक मां शारदा का पूजन अर्चन किया। मुख्यमंत्री ने मां शारदा के दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, खुशहाली और कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए कहा कि मां शारदा लोक के निर्माण से मैहर में धार्मिक तीर्थाटन में वृद्धि होगी, जिससे जिले में स्थानीय लोगों के लिए रोजगारों का सृजन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार धार्मिक शहरों में शराबबंदी के लिए कृत संकल्पित है।
1: हमारी सरकार ने पहले नक्सलवादियों को समाप्त किया प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, और अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नशा विरोधी अभियान चला रहे हैं। इसलिए सभी धार्मिक नगरों से हमारी सरकार ने 19 नगरों से दारू की दुकानें बंद की है। हमारे अपने परिवार के माध्यम से हम सब संकल्पित हैं। मैहर में भी दारू की दुकानें शराब की बंद हुई। भविष्य की पीढ़ियों को बचाने के लिए, हर प्रकार से नशे के खिलाफ लड़ने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में 550 प्रशिक्षुओं के अभिमुखीकरण समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ग्लोबल स्किल पार्क का भ्रमण करेंगे, इसके साथ ही अकादमिक लैब का अवलोकन कर प्रशिक्षुओं से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं, आधुनिक तकनीकी सुविधाओं और युवाओं को दिए जा रहे कौशल प्रशिक्षण की जानकारी लेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव उद्योग जगत के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से भेंट और चर्चा करेंगे। इसके साथ ही कौशल प्रशिक्षण और उद्योगों की जरूरत के अनुरूप युवाओं को तैयार करने से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श भी करेंगे। संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज से 10 सितंबर तक समरसता संकल्प अभियान एवं समरसता यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश भर में कलश रथ यात्रा सहित अनेक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खंडवा जिले में आज से गांव-गांव और शहरों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा। वहीं धार और विदिशा जिले में भी 10 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। राजधानी भोपाल के RCVP नरोहना प्रशासन तथा प्रबंधकीय अकादमी में आज विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के सर्वांगीण उत्थान, आजीविका संवर्धन तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसका शुभारंभ पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर करेंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने कहा कि तारीख बढ़ने से देश भर के योग्य युवाओं को इस अनोखे युवा एक्सचेंज प्रोग्राम में रजिस्टर करने और हिस्सा लेने का एक और मौका मिलेगा। 18 से 30 साल तक की उम्र के युवा, जिनमें हायर एजुकेशन संस्थानों के छात्र, वॉलंटियर और युवा प्रोफेशनल शामिल हैं, युवा संगम के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए रजिस्टर कर सकते हैं। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के पूर्वी हिस्सों समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई है। छतरपुर के नौगांव में सबसे ज्यादा 45 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि खजुराहो में 33 मिलीमीटर पानी बरसा। मंडला में 35, मलाजखंड में 16 और जबलपुर में 8 मिलीमीटर बारिश हुई। सीधी और टीकमगढ़ में भी 7-7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज पन्ना में बारिश का रेड और सतना, कटनी, दमोह, मैहर और छतरपुर जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में अगले 2 दिनों तक रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। अब रुक करते हैं खेल की खबर का। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड का सामना करेगी। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। भारत को जीत या ड्रॉ से पूल में

शीर्ष स्थान हासिल करना होगा। शीर्ष स्थान हासिल होगा और वह अगले मैच के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। वहीं मंगलवार को भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर 6-1 से जीत दर्ज की थी। इस जीत ने विश्व कप में भारत की पिछली सबसे बड़ी जीत 1974 के उद्घाटन विश्व कप में स्पेन पर 4-1 की जीत को पीछे छोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम ने जनपद के सचिवों और रोजगार सहायकों को वीबीजी रामजी से जुड़े कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। खंडवा में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत 21 अगस्त को पुनासा विकासखंड के ग्राम अटूट खास में अधिकारियों का दल पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद करेगा। डिंडोरी में लगातार बारिश के चलते कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने जोगी टिकरिया स्थित नर्मदा पुल और नर्मदा डैम घाट का निरीक्षण कर सुरक्षा और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने जिले में पीओपी और रासायनिक पदार्थों से मूर्ति निर्माण पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया है। दमोह में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत जिले में जल्द ही दमयंती चना प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। सागर में सागर संभाग क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बम्होरी रेगुआ ग्राउंड पर क्रिकेटर क्रांति गौड़ और रणजी खिलाड़ी अक्षत रघुवंशी तथा आर्यन पांडे को सम्मानित किया गया। विदिशा में एग्रीस्टेक अभियान के तहत पात्र किसानों की शत प्रतिशत फार्मर आईडी बनाने के लिए 20 अगस्त से 15 सितंबर तक प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। क्रिएटिव श्योपुर के तहत एनआरएलएम केसीटीसी केंद्र में पोषण एवं परंपरा महोत्सव का आयोजन किया गया। नर्मदापुरम के इटारसी के शासकीय कन्या महाविद्यालय और महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय में व्यक्तित्व विकास रोजगार मार्गदर्शन और पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और जबलपुर हाईकोर्ट ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के ओटी टेक्नीशियन के 288 पदों पर 31 मार्च 2026 को जारी मेरिट लिस्ट और उससे हुई नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भव्य दिव्य अलौकिक और आपदा मुक्त सिंहस्थ के लिए तैयार हो रहा उज्जैन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्लोबल स्किल्स पार्क में प्रशिक्षुओं के अभिमुखीकरण समारोह में शामिल होंगे। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपने अंतिम ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए शिवम सिंह तोमर से काव्य पाठ।
1: नमस्कार, मेरी पहली कविता का शीर्षक है रोटी की गुणवत्ता। जिस गाय को अम्मा खिलाती रहीं रोटियां और उसका माता छूकर मांगती रही स्वर्ग में जगह, अब घर के सामने आकर रमाती रहती है। अम्मा ने तो खटिया पकड़ ली है, अब गाय को ऊपर से ही डाल देती है रोटी बहुएं। रोटी तीसरे माले से फेंकी जाती है, फट की आवाज़ से सड़क पर गिरती है और गाय ऊपर देखती है तो कोई नहीं दिखता। गाय को लगता है अम्मा स्वर्ग को चली गई और अम्मा ही फेंक रही है रोटियां स्वर्ग से। पहले अम्मा जो रोटियां देती रहीं एकदम सूखी, मुंह में धरते ही चटर चटर होती, पर यह रोटी तो एकदम मुलायम। लेकिन बस एक अम्मा चार रोटियां देती थी। एक रोटी फेंक दिए जाने पर भी गाय उसे खाना शुरू नहीं करती, वह ऊपर देखती रहती है दूसरी तीसरी और चौथी रोटी की बाट जोहती। गाय को लगता है स्वर्ग में अम्मा का पाचन तंत्र और दांत दोनों सही हो गए हैं। अम्मा उसके हिस्से की रोटियां भी खा ले रही हैं। खैर, रोटी भी तो कितनी मुलायम है, नीयत बिगड़ गई होगी बुढ़िया की। ऊपर देखते देखते जब गाय की गर्दन दुखने लगती है तो वह नीचे पड़ी मुलायम रोटी बेमन से चबाने लगती है। भूखी गाय को रोटी की गुणवत्ता से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भूखी गाय को तो कम से कम चार रोटियां चाहिए, चाहे स्वर्ग से गिरे चाहे तीसरे माले से। मेरी अगली कविता है कोचिंग से लौटते बच्चे। रात हो चली है और बच्चे कोचिंग से घर लौट रहे हैं। अपने अपने कोचिंग सेंटर के नाम की टी शर्ट पहने वे अपनी अपनी कोचिंग सेंटर के विज्ञापन लग रहे हैं। वे लौट रहे हैं झुकी हुई पीठें और निस्तेज चेहरे लिए, जबकि अपने माँ बाप के दिवा स्वप्नों में उंगलियों से विक्ट्री का वी बनाए हुए उनकी शक्लें हमेशा ऊर्जा से लबरेज होती हैं। अभी कुछ ही घंटों पहले वे स्कूल से लौटे थे, घर लौट आने के प्रति बिल्कुल उदासीन। अपनी यूनिफॉर्म उतारने से पहले ही वे कोचिंग का बस्ता लगाने लग गए थे। अब वे कोचिंग से लौट रहे हैं, टेम्पो और ऑटो में ठुसे हुए, अपने अपने पर्चों में सिर गड़ाएं, उन सवालों को देखते हुए जो खत्म होते हुए दिन की रोशनी में भी भयानक रूप से प्रकाशित हैं। मेरी तीसरी कविता है सरकारी पुण्य। मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ कोई गंगा नहीं बहती, लेकिन अगर आप पुण्य कमाना चाहें तो मुख्य डाकघर जा सकते हैं। वहाँ आप पाएंगे कि साक्षरता से वंचित लोगों की एक भीड़ आधार कार्ड बनवाने के फॉर्म को भरने भरवाने में जुटी हुई है। वे हाथ में फोल्डर लिए या जेब में पेन खुरसे मनुष्यों को ऐसे देखते हैं जैसे वे उनके हिस्से की साक्षरता हों। आप चाहें तो जाए वहाँ, अपनी शर्ट की जेब में पेन खुरस कर, फिर देखिएगा कि सरकारी फॉर्म में मांगी जा रही तमाम जानकारियों और उन्हें ठीक से समझने की असमर्थता से परेशान वे लोग कैसे आपकी ओर उम्मीद से देखेंगे, और आप उनके फॉर्म भरते हुए यह इल्हाम पाएंगे कि सरकार कितनी दूरदर्शी है। उसने पुण्य कमाने का एक ऐसा ढांचा तैयार किया है कि एक मामूली फॉर्म भरने भरवाने मात्र से गरीब की आंखों में चमक आ जाती है और आप जैसे भद्र लोग पुण्य के अधिकारी बन जाते हैं। मेरी चौथी कविता का शीर्षक है अश्वगाथा। दो मरियल घोड़े शहर की चमक तमक के बीच एक बारात की बग्घी का वजन ढो रहे हैं। बग्घी पर बैठा दूल्हा इस समय सिकंदर सा प्रतीत होता है, परंतु यदि ये कमज़ोर घोड़े गश खाकर सड़क पर गिर पड़े तो दूल्हे का क्या होगा? क्या होता सिकंदर का यदि उसका घोड़ा बुसेफलस गोगा मेला के युद्ध के दौरान किसी अहम क्षण में अपने पुट्ठे को पूंछ से खुजलाने के लिए ठहर जाता? नेपोलियन के घोड़े का बेदकना इतिहास में मशहूर है, शायद इसलिए कि जिद्दी और गुस्सैल घोड़े को साधता नेपोलियन और अधिक महान दिखे। जबकि ऐसा भी हो सकता था कि जनश्रुति में नेपोलियन को एक दुलत्ती पड़ती और उसी के साथ घोड़ों के सामने मनुष्य की असहायता की एक छोटी सी कथा भी बची रह जाती। इतने घोड़े मारे गए हैं युद्धों में कि कभी कभी लगता है यदि घोड़ों को ज्ञात होता कि उन पर आरूढ़ बादशाहों की प्रत्येक विजय के साथ वे अपनी आगामी पीढ़ियों पर राजसी ठाठ की यह छवि एक भार की तरह छोड़ रहे हैं, तो शायद किसी निर्णायक क्षण पर वे बिदक जाते अपने बादशाहों को रणभूमि की धूल में पटक कर। तब शायद घोड़ों के बेकाबू होने का इतिहास कुछ और सुदृढ़ होता। अगर ऐसा हुआ होता तो बारात की बग्घी का भार ढोते ये दो मरियल घोड़े मानवीय उपयोगिता की इस निर्दयी दुनिया से दूर किसी खुले मैदान में हरी हरी घास चर रहे होते। मेरी पांचवी कविता है दरवाजे। दरवाजे अब खुलते हुए चरचराते हैं, बाहर से होती दस्तक पर कब से नहीं खुले अंदर की तरफ। बाहर जाने के लिए खोले गए अक्सर। कोई हताश आदमी जैसे होठों पर धरता है सिगरेट, वैसे वे चाबियों के लिए खोलते हैं मुंह, और एक लंबी गहरी सांस लेकर वे उन लोगों का धुआं अंदर खींचते हैं जो बाहर को गए और वापस नहीं आए, और फिर बाहर को फेंक देते हैं चाबियां बचे कुचे सिगरेट के बट के जैसे और खुल जाते हैं। दरवाजे दस्तकों पर खुलना चाहते थे, और जब जब मुझे यह बात याद रहती है तब तब मैं क्षण भर के लिए दरवाजे के बाहर ही रुक जाता हूँ, अपने घर को किसी और का घर मान लेता हूँ और दरवाजे को उल्टे हाथ से खटखटाता हूँ। वे खुशी के मारे खुलना भूल जाते हैं। हर किसी की तरह एक दिन मैं भी नहीं लौटूंगा, तब दरवाज़ा बाहर को नहीं भीतर को जाकेगा और पाएगा कि घर को लौटने के लिए घर में किसी का होना कितना ज़रूरी है। मेरी अगली कविता है दिसंबर। देह को आलस के धागों से बिस्तरों में टाँकता हुआ आ पहुँचा है दिसंबर। सूरज के कान उमेट कर अब वह पुनः स्थापित करवाएगा देह और धूप का संबंध। कम्बल रजाइयों की पलंग बंद तपस्या को पूर्ण घोषित कर देगा दैवीय दर्शन। गुसलखानों में रखी नहाने की बाल्टियों में घोलेगा भर भर कर झिझक। इस तरह पानी बचाने की मानवीय मुहिम में देगा अपना ज़रूरी सहयोग। आते जाते बालों में हाथ फिराएगा, झड़ते हुए डेंड्रफ के जरिए देगा सुदूर क्षेत्र में होती बर्फबारी के कठिन संकेत। थकी हुई रेलगाड़ियों के रास्ते में एक धुंधला ठहराव बिछाकर देरी और दूरी को जल्दबाजी के रूढ़ संदर्भ से करेगा मुक्त। बोलचाल के शब्दों में हल्की सी कपकपी जोड़ता हुआ एक नई उपभाषा का निर्माण करता हुआ आ पहुंचा है दिसंबर। मेरी अगली कविता का शीर्षक है एक स्त्री की कामना। एक कैलेंडर में एक तारीख के बाद की सारी तारीखें मिट गई हैं। घड़ी में 8:30 बजकर रह गए हैं। एक शहर के तमाम लोग आना जाना स्थगित कर एक प्लेटफॉर्म पर सालों से पत्थर बने खड़े हैं। यह गतिहीनता एक स्त्री की कामना थी। एक जाते हुए को रोक लेने के लिए उसने पूरी दुनिया भर से गति छीन ली। वह रेलगाड़ी जिसमें बैठकर मैं उस दुनिया से दूर चला आया, मैंने देखा था उसकी आंखों में ठहरी रही। मेरी अगली कविता है यहाँ सिर्फ अर्जेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ निकाले जाते हैं। कलर फोटो स्टूडियो की वह दुकान जो खुली हुई दिख रही है दरअसल एक बंद होती हुई दुकान है। कुछ चीज़ें ऐसे ही अवसादग्रस्त मनुष्यों की तरह अपने नियत स्थान पर बैठी अदृश्य सलाइयों से अपनी मृत्यु बुनती हुई एक दिन मर जाती हैं, और आप देख पाते हैं मात्र उनके श्रम की नीरस निरंतरता। दुकान के भीतर काउंटर के पास कितने ही चेहरे इस धीमी मृत्यु से बेखबर एक स्थिर मुस्कान और चिरस्थायी यौवन लिए दीवारों पर चिपकी तस्वीरों में सांस ले रहे हैं। भीतर एक दूसरा कमरा है जहां फोटो खींचे जाते हैं। अब वहां केवल अति आवश्यकताओं से घिरे लोग ही जाते हैं। कैमरे के सामने जब वे अस्वाभाविक रूप से मुस्कुराते हैं तब उस दुकान का अस्तित्व सरकारी फॉर्मों में फ़ोटो के लिए आरक्षित एक छोटे से चौकोर में सिमटता चला जाता है। इन दुकानों के भविष्य का भी एक नेगेटिव फोटोग्राफ है जिसे डार्क रूम में विकसित करने पर मात्र एक त्रासद वाक्य उभरता है कि यहाँ सिर्फ अर्जेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ निकाले जाते हैं।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शिवम सिंह तोमर से काव्य पाठ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और उदित नारायण के युगल स्वरों में फिल्म दुश्मन का गीत। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था कार्यक्रम का अगला गीत अब सुनते हैं कुमार सानू और अनु मलिक की आवाज़ में। फिल्म का नाम है फिर तेरी कहानी याद आई। आवाज़ें हैं कुमार सानू और अनु मलिक की।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
0: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
2: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं।

0: सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
3: ओह लवली, वेल डन।
2: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
3: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
4: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
3: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
4: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
3: आप कौन?
5: आरबीआई कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म इम्तिहान से। फैज अनवर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है अनु मलिक ने, आवाज़ कुमार सानू की है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म इम्तिहान का गीत। आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। आकाशवाणी ग्वालियर आपकी सेवा में है।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए,
4: नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं,
3: समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
5: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
3: क्या, कैसे?
5: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
3: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
5: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: फिल्म संगीत में सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया। देव कोहली के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है राम लक्ष्मण ने। आवाज़ SP बाला सुब्रमण्यम की।

श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म सरफरोश से। गीत के बोल लिखे हैं निदा फाजली ने और संगीत रचना जतिन ललित की है, आवाज़ जगजीत सिंह की।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। ईरान की मदद करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एक्सल्टफेन में इंग्लैंड से खेलेगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
3: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
3: ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
2: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी दो दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्ट्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
4: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई।
5: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
2: उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। चार दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट।
6: यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्टिनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियाँ, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास नापा।
2: बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद BNP के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
7: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है।
5: उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है, उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमरीका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए, जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल, अगर बात करें बैडमिंटन की, तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में, तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और ले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
2: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
8: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है। पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है और धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। बालेश्वर जिले में बालियापाल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां खबर है कि 45,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भद्रक जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। राजघाट पर आज सुबह 6 बजे नदी 11.80 मीटर के स्तर पर बह रही थी, जबकि खतरे का निशान 10.36 मीटर है। सुवर्ण रेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। IMD ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और मयूरभंज, केंद्र और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है, जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। मौसम सुहावना हो गया है। कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
9: धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो कोर का ये बयान आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो गौर ने कश्मीर को लेकर अमरीकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे समीक्षा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, CID को सौंपी गई जांच। UPSC जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नवभारत टाइम्स में है। जेन Z को साधने की मोर्चाबंदी तेज, अमर उजाला लिखता है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त, हिंदुस्तान लिखता है, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए CM जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान।
2: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टर्डम में इंग्लैंड से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Union Cabinet approves 4 multi-tracking railway projects covering 8 districts of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Cabinet also clears 4 laning of Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of NH-22 in Bihar. Union Home Minister Amit Shah to chair Southern Zonal Council meeting at Kovalam in Tamil Nadu this morning. 4th round of India-Singapore Ministerial Roundtable to be held in Singapore today. Bangladesh to go to polls today to elect a new president. US President Donald Trump declares economic warfare against Iran, threatens economic punishment for any country helping Tehran. And Indian women's team to take on England in their final Pool D match of FIH Hockey World Cup in Amstelveen this evening. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Union Cabinet has cleared 4 multi-tracking projects of railways covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
11: Five major decisions have been taken. The first 4 projects are related to the railways, while the 5th is a highway project. The first 4 railway projects include the quadrupling of the Howrah-Chennai main railway route and the quadrupling of the Cuttack-Paradeep railway line. The 5th project is the construction of a 4-lane highway from Muzaffarpur via Sitamarhi to Sonbarsa. These projects, with a total cost of 13,041 crore rupees, were approved by the cabinet today.
3: Total 13,041 crore rupees ke projects cabinet ne approve kiye.
10: Mr. Vaishnaw informed that the cabinet has also approved the upgradation of the Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of National Highway 22 in Bihar to a 4-lane standard at a total capital cost of over 3,590 crore rupees.
11: The project is becoming a major lifeline for the entire Bihar. It starts from Sonbarsa on the Nepal border and passes through Sitamarhi and Muzaffarpur. It will create a complete transport artery which will benefit Bihar for many years. It is an 83-kilometer brownfield project under which the existing road will be upgraded into a 4-lane highway with an investment of 3,591 crore rupees.
3: 591 crore rupees ka investment is now.
10: Union Home Minister Amit Shah will chair 31st meeting of the Southern Zonal Council at Kovalam near Chennai in Tamil Nadu this morning. The meeting is likely to focus on issues requiring coordination between the centre and southern states and union territories. The Southern Zonal Council comprises Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Telangana, along with union territories of Puducherry, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Chief ministers of the southern states and 3 union territories, Puducherry, Andaman, Nicobar Islands and Lakshadweep, are participating in the meeting. More from our correspondent.
12: 6 chief ministers, Tamil Nadu chief minister Joseph Vijay, Karnataka chief minister DK Shivakumar, Kerala chief minister Satheesan, Telangana chief minister Revanth Reddy, Andhra Pradesh chief minister Chandrababu Naidu and Puducherry chief minister Rangasamy are set to participate in the conference. Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep administrators are also likely to participate in the meeting. High-ranking officials including chief secretaries and home secretaries from the respective states will also participate in the event. Discussions will be held on various key issues including interstate cooperation, economic growth, industrial investments, strengthening partnership, infrastructure development, water resource sharing, education, healthcare, information technology, disaster management, crime prevention and border disputes will be discussed in this meeting. Meanwhile, Home Minister Amit Shah was received by the BJP state president and other senior leaders last night. Later in the night, Mr. Shah also met the Chief Minister of Tamil Nadu, Joseph Vijay, in Kovalam. R. Chidambaranathan from Chennai for Akashvani News.
10: The fourth round of India-Singapore Ministerial Roundtable will be held in Singapore today. The participating ministers from the Indian side are Finance Minister Nirmala Sitharaman, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Minister of State for Commerce, Industry, Electronics and IT Jitin Prasad. A report.
13: The mechanism of ISMR is an important platform to drive cooperation, including in new and emerging areas. Its inaugural meeting was held in New Delhi in September 2022, followed by the second meeting in Singapore in August 2024 and third meeting in New Delhi in August 2025. Deliberations on advanced manufacturing, connectivity, healthcare and medicine, skills development and sustainability from these meetings drive the roadmap for India-Singapore Comprehensive Strategic Partnership CSP roadmap, which was unveiled during the visit of Prime Minister of Singapore, Lawrence Wong, to India in September last year. The MEA said the fourth round of ISMR will enable both sides to review the progress of various ongoing initiatives and identify avenues to further strengthen India-Singapore collaboration. The fourth edition of India-Singapore Business Roundtable that serves as a strategic and advisory forum of key business leaders will also be held along the ISMR. Meanwhile, Dr. Jayashankar met his Singaporean counterpart Vivian Balakrishnan on his arrival in the country yesterday. Payal Sharma, Akashvani News, Delhi.
10: Defence Minister Rajnath Singh will hold a bilateral meeting with the Defence Minister of Japan, Shinjiro Koizumi, in New Delhi today. The meeting is expected to further strengthen bilateral defence relations, enhance strategic trust and cooperation, promote stability and security in the Indo-Pacific region. U.S. Ambassador to India Sergio Gore described the Union Territory of Jammu and Kashmir as an important part of India and said the governments at the centre and in the region have taken significant steps to improve the security in the Union Territory. The US envoy was talking to media after holding a meeting with Jammu and Kashmir Chief Minister Umar Abdullah at his residence in Srinagar yesterday. Chief Minister Umar Abdullah said the meeting focused on India-US relations and areas where the United States can engage with Jammu and Kashmir. He said the emphasis was on positive engagement and future collaboration. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Bangladesh will hold its presidential election today with lawmakers set to choose between the ruling BNP stalwart Mirza Fakhrul Islam Alamgir and an 11-party opposition alliance candidate Colonel Oli Ahmed. The voting will take place for the first time in a presidential election after a gap of 35 years. The voting will be held at the Parliament, Jatiya Sangsad, from 2 p.m. to 5 p.m. today. The President-elect will take the oath as Bangladesh's new president tomorrow evening at the Darbar Hall of Bangabhavan. U.S. President Donald Trump has announced a sweeping new economic warfare against Iran. In a post on Truth Social, Trump said Iran was given several opportunities to reach a deal with the United States but failed to do so. He said Washington will now launch an unprecedented campaign of economic warfare and isolation against Tehran. Trump also threatened economic punishment for any country helping Tehran. He warned that any country allowing its financial institutions, businesses, airports or government agencies

कुछ आवाज़ें समय के साथ खो नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों के भीतर एक स्मृति दीप बनकर जलती रहती हैं। कुछ जीवन उम्र की लंबाई से नहीं, अपने संकल्प की ऊंचाई से बड़े होते हैं। वो मिट्टी धन्य हो जाती है जहां वो पैदा होते हैं, क्योंकि अपनी मातृभूमि के लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे शहीद बंता सिंह संघवाल। बंता सिंह का जन्म 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पंजाब के जालंधर जिले के संघवाल नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम बलवंत सिंह था, लेकिन आगे चलकर वो बंता सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके पिता सरदार बुधा सिंह एक साधारण किसान थे, लेकिन उनके विचार अत्यंत ऊंचे थे। उनका परिवार अपनी राष्ट्रभक्ति और नैतिक मूल्यों के लिए जाना जाता था। यही कारण है कि बचपन से ही बंता सिंह ने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना सीख लिया था। माता गुजरी देवी के संस्कारों ने उन्हें गढ़ने का काम किया। बंता सिंह की आरंभिक शिक्षा उनके गांव और पास के प्राथमिक विद्यालय में हुई। वो बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। इसके साथ ही वो बेहद साहसी और न्यायप्रिय थे। उन दिनों भारत पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। गांव में निर्धनता थी, किसानों पर अत्याचार हो रहे थे और युवाओं के सपने दम तोड़ रहे थे। धीरे धीरे बंता सिंह का बाल मन इन परिस्थितियों को समझने लगा था। जब वो डीएवी स्कूल जालंधर में पढ़ रहे थे, तभी कांगड़ा जिले में भूकंप आया। बंता सिंह घर से जब पढ़ने जाते तो भूकंप पीड़ितों के लिए अनाज की बोरियां ले जाते। धीरे धीरे बंता सिंह युवा हुए और उन्होंने देखा कि उनके अनेक साथी बेहतर जीवन की तलाश में विदेश जा रहे हैं। उन्होंने भी विदेश जाने का निर्णय लिया। आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चले गए। लेकिन ये एक सामान्य यात्रा नहीं थी। ये यात्रा एक योद्धा की यात्रा साबित हुई, जो अपने भीतर एक नए युग का सूर्य लेकर चल पड़ा था। अमेरिका में रहते हुए ही उनके भीतर क्रांति का बीज प्रस्फुटित हुआ।

बंता सिंह ने महसूस किया कि भारतीयों के साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा है, उनके आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाई जा रही है। उन्होंने गदरी लहर में कूदने का फैसला कर लिया। गदर पार्टी के प्रधान बाबा सोहन सिंह भकना ने पुस्तक मेरी राम कहानी में लिखा, हमारी सभी विपत्तियों की जड़ हमारी गुलामी है, इसे खत्म करने के लिए हमें शूरवीरों की जरूरत है। उनके इस आह्वान पर सबसे पहले अपना नाम पेश करने वालों में प्रमुख नाम भाई बंता सिंह का था। धीरे धीरे बंता सिंह गदर पार्टी के एक विश्वसनीय कार्यकर्ता बन गए। इसी बीच सन 1914 का साल आया, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। गदर पार्टी के नेताओं ने इसे स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक अवसर के रूप में देखा। निर्णय हुआ कि सभी क्रांतिकारी भारत लौटेंगे और अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष छेड़ेंगे। बंता सिंह भी अपने साथियों के साथ भारत लौट आए। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये युवा क्रांतिकारी कुछ ही समय में भारतीय स्वाधीनता के इतिहास का अमर अध्याय बन जाएगा। अमेरिका से भारत लौटकर बंता सिंह ने आसपास के गांव के लोगों को जगाना शुरू किया। उनके विचारों से प्रभावित होकर कई लोग उनके साथ चल पड़े। उन्होंने संघवाल में पंचायत की स्थापना की और सरकार के विरुद्ध प्रचार आरंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने गांव में एक विद्यालय और पुस्तकालय खोला। गांव में पशुओं का अस्पताल भी खोला गया। गांव की पंचायत में हत्या को छोड़कर सभी मुकदमों का फैसला किया जाता था। गांव में गदर साहित्य छापने के लिए एक प्रिंटिंग प्रेस भी लगाया गया। बंता सिंह ने पूरे जिले का दौरा किया और लोगों के बीच गदर आंदोलन का साहित्य वितरित किया। वो लोगों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने तथा अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का संदेश देने लगे। अनेक युवा उनके साथ थे। वो विरोध स्वरूप उन्हें रेलवे लाइन से छेड़छाड़ और टेलीफोन के तार काटने जैसी विध्वंसकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करते थे। वो कहा करते थे कि स्वतंत्रता उन्हीं को प्राप्त होती है जो उसके लिए लड़ने का साहस रखते हैं। बंता सिंह को उनके चार अन्य साथियों के साथ गदर पार्टी ने भारत भेजा था। उनका उद्देश्य भारतवर्ष में 1857 की क्रांति की तर्ज पर सशस्त्र क्रांति के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना था। इसके लिए जनता को संगठित करना था। सशस्त्र क्रांति हेतु हथियार और अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी वो निभा रहे थे। उनके मन में बस एक ही लगन थी, लगन आजादी की।

तरह बंता सिंह लगातार क्रांति गतिविधि में सक्रिय थे। संघवाल में उन्होंने एक मजबूत क्रांतिकारी केंद्र स्थापित कर दिया था। ये दुआबा क्षेत्र का मुख्यालय बन गया था। यहाँ महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, करतार सिंह सराभा, हरनाम सिंह टुंडीलाट, बीबी गुलाब कौर, बाबा साहेब सिंह और मान सिंह सियालकोटी जैसे क्रांतिकारी अक्सर आया करते थे। बंता सिंह द्वारा

ये केंद्र पंजाब में गदर आंदोलन की रीढ़ साबित हुआ। बंता सिंह के जीवन का मात्र एक उद्देश्य था, भारत की आजादी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कपूरथला के शस्त्रागार पर हमला कर दिया और हवलदार भगवान सिंह को अपने साथ मिला लिया। 25 अप्रैल सन 1915 को उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर नगल कलां होशियारपुर के जेलदार चंदा सिंह की हत्या कर दी। इस घटना के बाद अंग्रेज सरकार तिलमिला उठी। 82 गदर क्रांतिकारियों पर साजिश का पहला केस दर्ज हुआ, लेकिन बंता सिंह फरार हो चुके थे। गदर क्रांतिकारियों ने गुप्त रूप से बैठक की तथा हथियार जुटाने के लिए अमृतसर जिले के मननवाला रेलवे स्टेशन के पास वल्ला पुल पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने की योजना बनाई। इस दल का नेतृत्व बंता सिंह को करना था। 11-12 जून सन 1915 की रात को बंता सिंह ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया और 6 सर्विस राइफल्स और 200 कारतूस अपने अधिकार में ले लिए। इस हमले में उन्होंने 2 सिपाहियों फूल सिंह और चतर सिंह को मार दिया। वहीं जेलदार कपूर सिंह की हत्या की कोशिश में भी उनका नाम आया। इस घटना के बाद ब्रिटिश शासन में हड़कंप मच गया। ब्रिटिश सरकार ने बंता सिंह पर भारी इनाम घोषित किया। बंता सिंह को पकड़ने के लिए चारों ओर जाल सा बिछा दिया गया। गांव-गांव में उनकी तलाश शुरू हुई। बंता सिंह उस समय अपने गांव के आसपास गुप्त रूप से रह रहे थे, लेकिन अब भी वो अपने साथियों से संपर्क बनाए हुए थे। वो लगातार भविष्य की योजनाओं पर विचार कर रहे थे, लेकिन उनके एक निकट संबंधी ने धन के लालच में आकर अंग्रेज अधिकारियों को उनकी सूचना दे दी। इस मुखबिर के विश्वासघात का परिणाम हुआ कि बंता सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के तहत उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। पूरे मुकदमे के दौरान बंता सिंह जरा भी घबराए नहीं और पूरी निर्भीकता के साथ अपने क्रांतिकारी विचारों को अदालत के सामने रखा और देश के लिए अपनी निष्ठा जताई। बताया जाता है कि गिरफ्तारी से लेकर फांसी की सजा तक उनका 11 पौंड वजन बढ़ गया था। 12 अगस्त सन 1915 को लाहौर के सेंट्रल जेल में उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। नमन ऐसे अमर बलिदानी को। शहीद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है wataNKARAAG@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: کی خاص خبروں کا۔
1: भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भाग लेगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में 550 प्रशिक्षुओं के अभिमुखीकरण समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ ही अकादमिक लैब का अवलोकन कर मुख्यमंत्री प्रशिक्षुओं से संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल मैहर में कहा कि मां शारदा लोक के निर्माण से मैहर में धार्मिक तीर्थाटन में वृद्धि होगी, जिससे जिले में स्थानीय लोगों के लिए रोजगारों का सृजन होगा। मुख्यमंत्री ने यहां विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज से 10 सितम्बर तक समरसता संकल्प अभियान और समरसता यात्रा का आयोजन दौरान सीपीवी नरहुना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में आज विमुक्त घुमंतु एवं अर्धघुमंतु समुदायों के सर्वांगीण उत्थान, आजीविका संवर्धन और सामाजिक सुरक्षा के लिए एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। और FIH विश्व कप में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले हमने आपके लिए चुना है सावन तो आने दो फिल्म का वो गीत, जिसे आवाज दी है जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा ने।
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:02 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

सूचनाओं, समाचारों और नगमों के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आज के इस खुशनुमा मौसम का बेहद ही मनोरंजक तरीके से आप इंजॉय कर रहे होंगे और अपनी सुबह को और ख़ास बना रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो दिन है, उन आवाज़ों के नाम हम कर रहे हैं जो बिना किसी तार के हमारे घरों तक पहुंचती हैं। हम आज का दिन उन कहानियों के नाम करते हैं जिन्होंने हमें जोड़ा और उन गीतों के नाम जिन्होंने हमें इस सफ़र को और सुरीला बनाने में मदद की, और उस अद्भुत माध्यम के नाम जिसने सूचना, शिक्षा और मनोरंजन को हर घर तक पहुंचाया। जी हाँ, आज का ये जो दिन है ये बड़ा ख़ास है। आज है 20 अगस्त और आज के ही दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय रेडियो दिवस। श्रोताओं, रेडियो केवल एक उपकरण नहीं है, रेडियो एक एहसास है, एक ऐसी आवाज़ है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन सुनकर उससे जुड़ सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप हमसे जुड़ चुके हैं। ये रेडियो कभी समाचार के रूप में, कभी संगीत के रूप में और कभी किसी कहानी के रूप में और कभी किसी अनजान आवाज़ के रूप में, ये रेडियो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। आज रेडियो दिवस हम मना रहे हैं। ये नेशनल रेडियो दिवस के अवसर पर आइए जानते हैं कि इस अद्भुत माध्यम का सफ़र आखिर शुरू कैसे हुआ। दोस्तों, रेडियो का आविष्कार किसी एक व्यक्ति की देन नहीं माना जाता। इसके विकास में दुनिया के अनेक वैज्ञानिकों और आविष्कारों का योगदान रहा है। जर्मन वैज्ञानिक हेनरिक हर्ट्ज ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व को सिद्ध किया। महान आविष्कारक निकोला टेस्ला ने वायरलेस संचार से जुड़ी तकनीक को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और फिर आए इटली के वैज्ञानिक गुग्लियेल्मो मार्किनी, जिन्होंने वायरलेस टेलीग्राफी को व्यवहारिक रूप दिया। दोस्तों, 12 दिसंबर 1901 में मार्किनी ने अटलांटिक महासागर पर इस अटलांटिक महासागर के पार रेडियो सिग्नल भेजकर संचार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ दिया। 1906 में अगर हम देखें तो रेजिनाल्ड ने आवाज़ और संगीत का प्रसारण करके रेडियो को मनोरंजक और जनसंचार के दिशा में भी एक नया आयाम दिया। यानी अब रेडियो केवल संदेश भेजने का माध्यम नहीं था बल्कि लोगों को अपनी आवाज़ सुनाने वाला माध्यम भी बन चुका था। दोस्तों, धीरे धीरे रेडियो स्टेशनों का विकास हुआ और 1920 के दशक में नियमित प्रसारण शुरू होने लगे। लोगों के घरों में रेडियो पहुंचने लगा और दुनिया की खबरें पहली बार बड़ी संख्या में लोगों तक एक साथ पहुंचने लगी। रेडियो ने केवल मनोरंजन की ही नहीं बल्कि संकट के समय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समुद्री यात्राओं में वायरलेस संचार जीवन रक्षक साबित हुआ। 1912 में टाइटैनिक के संकट संकेत के प्रसारण ने वायरलेस संचार के महत्व को दुनिया के सामने और स्पष्ट कर दिया। और दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो रेडियो ने हमारे देश में भी जनसंचार की तस्वीर बदल दी। नाटक और मनोरंजन, रेडियो ने देश के कोने कोने तक अपनी पहुंच बनाई। और जब बात भारतीय रेडियो की होती है तो आकाशवाणी का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। आकाशवाणी की आवाज़ कई पीढ़ियों की साथी रही है, सुबह की शुरुआत से लेकर रात के समाचार तक।
संगीत से लेकर साहित्य तक और लोक संस्कृति से लेकर राष्ट्रीय घटनाओं तक रेडियो ने भारत समाज के जीवन में अपनी एक खास जगह बनाई है। रेडियो की सबसे खूबसूरत बात तो यह है शायद कि इसमें आवाज़ दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। एक रेडियो उद्घोषक की आवाज़ कभी हमें हंसाती है, कभी सोचने पर मजबूर करती है और कभी जानकारी देती है और कभी पुराने गीतों के साथ हमें यादों की दुनिया में ले जाती है। प्रसिद्ध रेडियो होस्ट ईरा ग्लास ने रेडियो की खूबसूरती को बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। रेडियो में आपके पास दो उपकरण होते हैं, ध्वनि और मौन, और शायद यही रेडियो की सबसे बड़ी कला है, सही शब्द, सही आवाज़ और सही समय। ये आज की तकनीकी का युग है। हमारे हाथ में स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, पॉडकास्ट है और अनेक डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, फिर भी रेडियो की प्रासंगिकता कम नहीं हुई, क्योंकि माध्यम बदल सकते हैं। जीवन में बहुत सारे पड़ाव आने के बाद मानवीय आवाज़ से जुड़ने की हमारी आवश्यकता कभी खत्म नहीं होती। तो आइए आज

0: इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल सबसे पहले सुन लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं।
1: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
6: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
5: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
6: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
5: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
6: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
5: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
6: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
5: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।

श्रोताओं, कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज का जो ये दिन है बड़ा ख़ास है। आज है 20 अगस्त और आज का दिन भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान भी रखता है। दोस्तों, आज की तारीख ऐसी तारीख है जो हमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जयंती की याद दिलाती है। साथ ही यह दिन सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं, इस जगह में राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था। उनके पिता फिरोज गांधी और माता श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और आप जैसा जानते ही हैं कि वे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाती थे। और लेकिन राजीव गांधी का जो राजनीतिक जीवन है, एक दिलचस्प बात से शुरू होता है। दोस्तों, ये एक ऐसे परिवार से आने के बावजूद जिसकी कई पीढ़ियां राजनीति और राष्ट्रीय सेवा से जुड़ी थी, राजीव गांधी की राजनीति में आने की शुरुआत देर से हुई और वे प्रारंभ में राजनीति में आने के इच्छुक बिल्कुल भी नहीं थे। उनका झुकाव तकनीक और विमानन की ओर था और वे एक प्रशिक्षित पायलट के रूप में भी कार्य कर चुके थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया और आगे चलकर वे देश के प्रधानमंत्री बने। 31 अक्टूबर 1984 को अपनी माता तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने देश की जिम्मेदारी संभाली। उस समय उनकी उम्र केवल 40 वर्ष थी और वे भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, उन्होंने 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1979 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। राजीव गांधी के कार्यकाल को अक्सर भारत में आधुनिक तकनीक और संचार के विस्तार के दौर के रूप में याद किया जाता है। वे भारत को 21वीं सदी की ओर ले जाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण मानते थे। कंप्यूटर और दूरसंचार जैसी तकनीकी को विस्तार रूप देने का जो कार्यकाल था, इस कार्यकाल में विशेष जोर इन्होंने दिया। ग्रामीण क्षेत्रों तक संचार सुविधाओं को पहुंचाने की दिशा में भी प्रयास हुए और उनके समय में शिक्षा और तकनीकी विकास को लेकर भी कई महत्वपूर्ण पहल सामने आई। दोस्तों, उनकी सोच का एक महत्वपूर्ण पक्ष था युवा भारत और आधुनिक भारत का निर्माण। लेकिन आज की तारीख केवल राजीव गांधी जी की जयंती के कारण महत्वपूर्ण नहीं है। 20 अगस्त को हम मनाते हैं सद्भावना दिवस। सद्भावना अर्थात दूसरों के प्रति प्रेम, सम्मान, भाईचारा और गुडविल की भावना। भारत विविधताओं का देश रहा है दोस्तों। यहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग परंपराएं हैं और अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। फिर भी हमारी सबसे बड़ी पहचान है कि हम सब भारतीय हैं। सद्भावना दिवस का उद्देश्य भी यही संदेश देता है कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या किसी भी अन्य भिन्नता के बावजूद भी हम सभी एक दूसरे के लिए हमेशा प्रेम की भावना

भावना रखें, हम सभी के बीच राष्ट्रीय एकता हो, भाईचारे और सौहार्द की भावना मजबूत हो। ऐसे तो सरकारी स्तर पर इस दिन सद्भावना प्रतिज्ञा भी दिलाई जाती है, जिसमें भावनात्मक एकता और आपसी मतभेदों को संवाद एवं संवैधानिक तरीके से सुलझाने का संकल्प शामिल होता है। लेकिन ज़रा सोचिए, हमारे विचार अलग हैं तो क्या हम एक दूसरे का सम्मान नहीं कर सकते? अगर हमारी भाषा अलग है तो क्या हमारी भावनाएं भी अलग हो जाती हैं? अगर हमारी संस्कृति अलग है तो क्या हमारे देश का बंटवारा हो सकता है, या क्या हम देश के एक मिलकर नहीं रह सकते? नहीं, यही तो भारत की खूबसूरती है, अनेकता में एकता। और सद्भावना हमें सिखाती है कि मतभेद होना स्वाभाविक है। हम भाई बहनों के बीच ही हो जाता है एक परिवार में, लेकिन मतभेद को बढ़ाना आवश्यक नहीं, इसे इग्नोर भी किया जा सकता है और हम प्रेम से इसे सुलझाकर एक रास्ते पर प्यार से रह सकते हैं। हम एक दूसरे को सुन सकते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर सकते हैं और हमें एक दूसरे को सम्मान भी देना चाहिए और संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान करना चाहिए। यही सद्भावना की सच्ची भावना है। तो आइए, आज राजीव गांधी जी की जयंती पर हम उन्हें स्मरण करते हुए उनके आधुनिक और तकनीक आधारित भारत के विचारों को याद करें और सद्भावना दिवस पर हम यह संकल्प लें कि हम अपने आसपास प्रेम, शांति और भाईचारे का वातावरण बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। क्योंकि दोस्तों, देश केवल सीमाओं से नहीं बनता, देश बनता है उसके लोगों के बीच विश्वास से। तो आइए आज हम एक छोटा सा संकल्प लें, न भाषा के नाम पर भेदभाव करेंगे, न धर्म के नाम पर दूरी बनाएंगे, न क्षेत्र के नाम पर किसी को छोटा समझेंगे और हम संवाद को अपनाएंगे, एकता को मजबूत करेंगे और सद्भावना को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाएंगे। इसी संदेश के साथ हम अपने पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को उनकी जयंती पर श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और आप सभी श्रोताओं को सद्भावना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।

श्रोता, जो ये खुशी है ये वाकई में एक आशिया सा बना देती है जीवन को, और साथ ही चलते चलते आपको एक छोटी सी जानकारी और देते चलते हैं कि आज जब हम बात करते हैं मन की उलझनों की, मन के परेशानियों की, तो हम कहीं ना कहीं समाधान के लिए सुनते हैं आसपास तो मेडिटेशन की बात होती है। तो हम आपको बता दें कि ये जो ध्यान है, साधना है, जो हमें केवल बाहरी संसार की ओर नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने की कला सिखाती है।

है, और ऐसी ही एक कला है विपश्यना। जी हाँ, विपश्यना का मतलब है कि सत्य को उसी रूप में देखना और उसी रूप में समझना। विपश्यना संस्कृत के वि और पश्य से बना हुआ है, जिसका सरल अर्थ है विशेष रूप से देखना, अर्थात चीज़ों को जैसी वास्तव में है उसे वैसा ही देखना। विपश्यना बौद्ध परंपरा की एक प्राचीन ध्यान पद्धति है। भावना और अपनी जो मन की हलचल को संतुलन में करने की एक विधि। भगवान बुद्ध ने स्वयं गहन ध्यान और आत्म अवलोकन के माध्यम से सत्य का अनुभव किया और बुद्धत्व प्राप्त किया था। उनकी शिक्षाओं में विपश्यना का विशेष महत्व है। विपश्यना का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि अपने वर्तमान क्षण में जीना। तो दोस्तों, हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी बीता हुआ कल या आने वाले कल की चिंता छोड़कर वर्तमान में ही जिए, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और इसी संदेश के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। अनुमति दीजिए अपनी दोस्त स्मिता को। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सूचनाओं, समाचारों और नगमों के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सलमान खां का सारंगी वादन। राग है अहीर भैरव और आपके साथ तबला पर संगत कर रहे हैं महेश विशोपिया। आइए सुनते हैं सलमान खां का सारंगी वादन।

0: है बुरहानपुर जिले की चिट्ठी। आलेख गणेश कुमार बाविस्कर का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। बुरहानपुर जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया और जगह जगह पर समारोह आयोजित किए गए। उस उपलक्ष्य में निजी और शासकीय संस्थाओं सहित घर घर तिरंगा लहराया गया। आजादी के इस महापर्व पर पूरा जिला देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। बुरहानपुर शहर की पहली डाक कांवड़ यात्रा ने भक्ति और जोश का अनोखा रंग दिखाया। महाजना पेठ स्थित बागेश्वर महादेव मंदिर समिति के 25 उत्साही सदस्य ओंकारेश्वर से नर्मदा का पवित्र जल लेने रवाना हुए। सुबह 6 बजे नर्मदा का जल लेकर कांवड़िये लगातार दौड़ते हुए महज 9 घंटे में ओंकारेश्वर से बुरहानपुर पहुंचे। बुरहानपुर जिले भर में सावन मास को लेकर हर तरफ भक्ति का उल्लास है। शिवालयों में महादेव के दर्शनों की होड़ लगी हुई है। ऐतिहासिक प्रसिद्ध प्राचीन किला असीरगढ़ पर मौजूद अश्वत्थामा वाले गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए दूर शहरों से भक्त पहुंच रहे हैं। बुरहानपुर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दूध एवं दुग्ध उत्पादों सहित अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निरीक्षण और जांच की जा रही है। विभाग ने कार्रवाई करते हुए 1 मार्च से 78 किलो घी जब्त किया। वहीं मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत पिछले दिनों परेठा गांव में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर योजनाओं की जानकारी दी और समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेशव्यापी मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान संचालित किया जा रहा है। बुरहानपुर जिले में 19 अगस्त को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिला पंचायत में आयोजित रोजगार मेले में अलग अलग कंपनियों द्वारा सहभागिता की गई। इस मेले में शासकीय विभागों द्वारा युवाओं को जानकारी प्रदान की गई और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए। इसके साथ ही कौशल विकास प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी भी छात्रों को प्रदान की गई। इस अवसर पर जिले के 208 युवाओं ने पंजीयन कराया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की 7 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर अभ्यर्थियों का साक्षात्कार और प्राथमिक चयन किया। इस दौरान 110 युवाओं का प्राथमिक स्तर पर चयन कर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप के अवसरों की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। इस पहल से जिले के युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सहायता मिली। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल के निर्देशानुसार बुरहानपुर जिले में 12 अगस्त से HIV एड्स जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है, जो कि 12 अक्टूबर तक चलेगा। जिसके तहत जिले के महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को HIV और एड्स सहित सिफिलिस और TB से संबंधित जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में बीते दिनों जीजामाता शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला चिकित्सालय और STD परामर्शदाता राजू पवार ने विद्यार्थियों को HIV एड्स सिफिलिस और TB के प्रमुख लक्षणों बचाव और जांच के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। श्री पवार ने विद्यार्थियों से कहा कि जागरूकता अभियान का उद्देश्य केवल स्वयं तक जानकारी सीमित रखना नहीं बल्कि सही जानकारी को परिवार और आसपास के लोगों तक पहुंचाना भी है। प्रदेश सरकार ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत बुरहानपुर जिले के 18 स्वसहायता समूहों की 22 दीदियां राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमता एवं प्रबंधन संस्थान NIFTEM कुंडली सोनीपत हरियाणा में 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटी हैं। इस प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को केले के रेशे से मूल्य संवर्धित उत्पाद निर्माण, आधुनिक फूड प्रोसेसिंग तकनीकी, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग एवं लेबलिंग, ब्रांडिंग, विपणन, व्यवसाय प्रबंधन और उद्यम स्थापना की व्यावहारिक जानकारी प्रदान की। इसके साथ ही उत्पादों को बाजार की मांग के अनुरूप तैयार कर बेहतर आय अर्जित करने के उपायों से भी अवगत कराया गया। प्रशिक्षण के उपरांत दीदियों ने बताया कि इस प्रशिक्षण से उन्हें स्थानीय स्तर पर केले के रेशे से नए उत्पाद विकसित करने, आय में वृद्धि करने इत्यादि के संबंध में सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। वे अपने अपने स्वसहायता समूह के माध्यम से इस तकनीक का उपयोग कर अन्य महिलाओं को भी जोड़ेंगी, जिससे समूहों की आय में वृद्धि होगी। बुरहानपुर जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे बुरहानपुर जिले की चिट्ठी। आलेख था गणेश कुमार बाविस्कर का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था।
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आपके अपने पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त स्मिता। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है जुर्माना। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने, आवाज़ लता मंगेशकर की है। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता साथी, जो हमें लिखते हैं मैसेज। मुकाम पोस्ट फुल चिंचोली तालुका पंडरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, बानू बी मुलानी, बादशाह मुलानी और समस्त मुलानी परिवार। यही गीत सुनना चाहते हैं ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सैयद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी, समस्त अब्बासी परिवार और कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खां, फैजी फरोज़, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा फराज। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म जुर्माना से।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपने पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म साजन का घर से। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत रचना नदीम श्रवण की है, आवाज़ें हैं साधना सरगम और कुमार सानू की। इस गीत को सुनना चाहते हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाला, कमला रानी, गीतिका खोरवाला और भानु प्रकाश। सहाबर रोड गुंज डुंडवारा से मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद कलीम अंसारी, शामसुल कमर राही। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। गांव खारिया ठाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजलारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू और नाव्या। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म साजन का घर से।

श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत। इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता साथी गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंघेल और नंदनी जंघेल। साथ में है धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल। ग्राम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम, कुसुम नेताम। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मारवी, प्रमीला मारवी, नेहा मारवी, पुष्पराज मारवी, ऋषभ मारवी। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जैसे को तैसा से। आनंद बख्शी के लिखा गीत है और संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में फिल्म जैसे को तैसा का ये प्यारा सा गीत।

0: सो योर प्लेस और माइन।
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम
1: तो क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म क्रिएचर का गीत। इस गीत को सुनने की फरमाइश की थी ऑरेंज सिटी नागपुर से विट्ठल जाधव, अनुसुईया जाधव, पवन राजे जाधव, छत्रपति संभाजी नगर से मंगलेश इंगले, संध्या इंगले, स्वराज और विराज, सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोड़ाना, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा और राबिन राणा, कोपरगांव से सुरेश मोलादे और वर्षा, शेवगांव से श्रीराम गोंधली और उषा गोंधली। श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं अपनी ही पसंद के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का। आकाशवाणी ग्वालियर आपकी सेवा में है।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
0: श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म अनाड़ी से। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने, आवाज़ें हैं उदित नारायण और साधना सरगम की। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है ग्राम संदलपुर आंतरी से कालीचरण यादव, दीपक कुमार यादव, चांदनी यादव और उर्मिला देवी, मुरार ग्वालियर से गुड्डू मिश्रा और निशा मिश्रा, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफ़र हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी, फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, टिवानसी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, आरबी खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और समस्त खेड़ा परिवार। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म अनाड़ी से।

ले रहे हैं अपने ही पसंद के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का। और ये अगली फरमाइश हमारे पास आई है, ये गीत हमने लिया है फिल्म मंजिल से। योगेश के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने, आवाज़ किशोर कुमार की है। इस गीत को सुनना चाहते हैं गोला बाजार बक्सर से श्रद्धा नंद आर्या, अभय नंद आर्या, परमानंद आर्या, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। छाबड़ा राजस्थान से आशिफ अली सिद्दीकी, वालिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। नयापारा भिरई से श्री बसंत कुमार सूर्यवंशी, श्रीमती सरोज सूर्यवंशी, ईश्वर राज सूर्यवंशी, चंद्रकांत सूर्यवंशी, कुमारी प्राची सूर्यवंशी और ट्यूशी सूर्यवंशी। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म मंजिल से।

श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म चुपके चुपके से। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

और इस गीत को संगीत से सजाए हैं एसडी बर्मन ने, आवाज़ लता मंगेशकर की है। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता साथी बीड शहर से, महाराष्ट्र से हमें लिखते हैं प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल और रामनिवास अग्रवाल। शकीला बानो, शहनाज बानो और इस्लामुन निशा संजय नगर ऐशाबाग से, यूपी से हमें लिखते हैं ये पत्र। अजीत नगर मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और रौनक दीप कौर। मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमीला गंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से, बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिक्का, बलविंदर बीरक, जैतेग बीरक और मिक्का बीरक, हरदेव मिक्का बलविंदर और रंगीनी। छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म चुपके चुपके से।

सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म दो बदन से। शकील बदायूनी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है रवि ने, आवाज़ है आशा भोसले की। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में इस फिल्म का ये गीत।

इस गीत के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: गृहमंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर आज पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। वे उत्तर बंगाल में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे और प्रशासनिक बैठकों में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सिंगापुर में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोक से मुलाकात की। इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में 550 प्रशिक्षुओं के उन्मुखीकरण

0: कार्यक्रम में शामिल होंगे। और एंटीगा सिंगापुर इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन में मोहित जागलान और लक्षिता जागलान की जोड़ी वॉकओवर मिलने के बाद मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
2: नमस्कार, फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी नीरजा। कार्यक्रम में आज का विषय है भोजन की बर्बादी कैसे रोकें। इस विषय पर हम जानेंगे आपके विचार, साथ ही आप सुनेंगे हमारी पसंद के सुमधुर गीत। तो आइए बिना देर किए जल्दी से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हेलो।
3: हेलो
2: जी, नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
3: हाँ, हम मैं समाधान नाम जो आइनर से बोल रहा हूँ, तहसील कुलपहाड़ जिला महोबा।
2: कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है?
3: हाँ दीदी, सब बढ़िया है, हाल चाल ठीक है, सब लोग अच्छे हैं।
2: तो आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि भोजन की बर्बादी कैसे रोकें।
3: उसको जो है सीमित करना चाहिए कि हम लोग कितना आदमी है, कितने हिसाब से हमको काम करना चाहिए। तो उसमें बर्बादी वाला काम नहीं होना चाहिए।
2: बिल्कुल। आपके घर में खाना किस तरह से बनाया जाता है, कितनी मात्रा में, क्या सोचकर बनाया जाता है कि इतने लोग खाएंगे खाना?
3: हम लोग इस समय अभी तीन लोग हैं, तो अपने तीनों लोग के हिसाब से अपना आराम से अपना जितना अपने को खाना है उतना उस हिसाब से खाना बना लेते हैं।
2: अच्छा।
3: नहीं होता है क्योंकि अपने पास में जानवर भी नहीं है।
2: अच्छा।
3: भाई बच जाए तो उसको खिला दें, इसलिए जो है सीमित ही खाना बनाते हैं। कम पड़ जाएगा तो फिर अपना दोबारा अपना थोड़ा बहुत बना लेते हैं।
2: पशु होते हैं, जानवर होते हैं, तो वहाँ तो खाना इस्तेमाल हो जाता है उन्हें खिलाने के लिए। हाँ, लेकिन हाँ, आपके यहाँ जानवर नहीं है तो आप उसका कुछ दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, है ना?
3: हाँ, तो उसको हम अपने हिसाब से अपना जो है बनाते हैं।
2: और जैसे कभी कभार अगर खाना बच जाता है तो उसका क्या करते हैं आप?
3: तो जैसे जो जानवर निकलते हैं उनको खिला देते हैं।
2: यानी रास्ते से अगर कोई जानवर निकल रहा है, दिखाई देता है, तो आप खिला देते हैं, तो उसका भी भला हो जाता है और आपको भी अच्छा लगता है, खुशी मिलती है।
3: मेरे घर में जो है मेरी लड़की है रोहिणी नामदेव, तो उनका भी नाम लेना चाहता हूँ मैं।
2: बिल्कुल लीजिए।
3: हमारी बेटा भी है पुष्पेंद्र नामदेव और शशि नामदेव बहू है
2: जी।
3: हाँ, ये लोग दिल्ली में काम करते हैं, तो वो दिल्ली से आए थे यहाँ पे गांव में
2: जी।
3: हाँ, तो दीदी मैं उनका भी नाम
2: ठीक है
3: बताना चाहता हूँ आपको
2: जी। और बताइए मौसम के क्या हाल हैं आपके यहाँ?
3: हाँ, सब बड़ी अच्छे हैं। मौसम जो है पानी जगह पानी बरस रहा है अभी इस समय, अच्छा पानी बरस रहा है, कल ही से पानी गिर रहा है।
2: अच्छा।
3: और अभी भी पानी बरसा हो रही है।
2: ठीक है। क्षमाधर जी, आप कार्यक्रम से जुड़े, धन्यवाद, नमस्कार।

0: हाँ नमस्कार दीदी।
1: नमस्कार
0: जी, मैं ग्रामा पोस्ट गोना कुसमाड़ थाना सोजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका अपना रेडियो मित्र दीपक कुमार नामदेव बात कर रहा है। दीदी
1: दीपक कुमार नामदेव।
0: जी जी,
1: कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है?
0: बस दीदी बढ़िया है, सिलाई मशीन चला रहे थे, साथ में आज बारिश भी तेजी से हो रही है तो बारिश का आनंद ले रहे थे, आपका कॉल भी लगा रहे थे।
1: अच्छा,
0: और फिर इसके बाद 11 बजे से आपके रेडियो का भी आनंद लेंगे।
1: ठीक है, तो दीपक जी आज कार्यक्रम का विषय है भोजन की बर्बादी कैसे रोकें।
0: जी दीदी, बफर सिस्टम कहलाता है। सबसे ज्यादा बर्बादी तो उसमें होती है क्योंकि लोगों को उसमें कम से कम 10-20 प्रकार के आइटम मिल जाते हैं और खाना है थोड़ा थोड़ा और ले लेते हैं ज्यादा, इसके बाद उन्होंने थोड़ा खाया और वो उसमें कचरा दानी में सरका दी थाली अपनी।
1: यानी उतना ही खाना लो जितना आपको खाना है।
0: जी जी, सबसे पहले हमारी विनम्र निवेदन है सभी श्रोताओं से कि जितना खाना है उतना ही थाली में खाना लीजिए, क्योंकि बर्बाद ना हो सके, क्योंकि आदमी की इच्छाएं तो अनेक होती हैं, लेकिन आज पेट में बने या ना बने, लेकिन आदमी ले लेते हैं कि हमें ये खाना है वो खाना है, फिर एक दो कौर खा और फेंक दिया, क्योंकि अन्नदाता हमारा एक किसान है। अगर किसान इसका उपयोग गलत करे, जैसे हमारे के देहातों के सिस्टम तो ये है, जो देहात होती है उसमें तो नहीं फेंकता है, लेकिन सिटी लेवल में फेंकता है, क्योंकि ये बफर सिस्टम शादी वगैरह में हो चुके हैं, तो थोड़ा छोटा सा फंक्शन करना है और बड़ा फंक्शन कर लिया।
1: हाँ।
0: और इस समय लोग देखो बीमारी से जूझ चुके हैं, क्योंकि कोई जैसे है तो ब्लड की बीमारी हो जाती है किसी के लिए, किसी कुछ बीमारी, इसलिए लोग तेल वगैरह मिठाई वगैरह

0: तो कम खाते ही हैं और बनवा अधिक देते हैं, इसलिए ये भी बर्बाद हो जाता है।
1: यानी खाना उतना ही बनाओ जितनी ज़रूरत हो और उतना ही प्लेट में लो जितना खाना है, उससे ज़्यादा नहीं, प्लेट नहीं भरनी है।
0: भोजन से एक रोटी कम खाओ, जैसे आपको चार रोटियों की भूख लगी तो 3 या 3.5 रोटी खाओ, जिससे स्वस्थ शरीर भी रहता है और खाना भी नहीं फेंकता है।
1: यानी जितनी भूख लगी हो उसे थोड़ा सा कम ही खाना खाओ, है ना?
0: जी जी जी, जिससे स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। जब जैसे हमको खाना 3 रोटी और खाली 4 वो एक एक्स्ट्रा खाली, तो बीमार नहीं होंगे तो बीमार हो जाएंगे,
1: ओवर ईटिंग हो जाती है। और दीपक जी, जैसे आपके घर में खाना बनता है तो कभी कभार अगर खाना बच जाता है तो उस खाने का उपयोग आप किस तरह से करते हैं?
0: देखो ऐसा है कि खाना हम लोग बनवाते हैं 3-4 टाइम है तो गर्म ही बनवाते हैं, अगर जैसे बच जाता है तो जो अपनी गौ माता है उसके उपयोग में ले आते हैं।
1: यानी पशु पक्षी जो होते हैं उन्हें हम खाना दे सकते हैं जो खाना बचता है। और कुछ खाने से नई डिश बनाई जा सकती है, जैसे कि मान लो रोटी बच गई रात को तो उससे कुछ नया बनाया जा सकता है?
0: हाँ हाँ, जैसे रोटी बच गई आप लोगों की, हम लोगों की, तो उसको बढ़िया उसको फ्राई करके और उसको बढ़िया तल के, मतलब जिस प्रकार अपन पोहा बनाते हैं बिजी वगैरह डाल के,
1: हाँ,
0: तो पोहा भी बन जाता है रोटी का। अगर जैसे बच गए तो उसको बिल्कुल बिल्कुल नानी फिलाई कर ली बिल्कुल महीन,
1: हाँ,
0: तो उसको लिया आपने और गैस सिलेंडर पर ले जाके बढ़िया मिर्ची और प्याज वगैरह से तल के बढ़िया उसमें बिजी वगैरह डाल दी है, काजू किशमिश डाल के बढ़िया पोहा भी बन जाता है, उसका भी उपयोग कर लेते हैं।
1: दीपक जी आपने तो एक बहुत अच्छी डिश बता दी, है ना?
0: जी जी,
1: यानी पोहे बनाए जा सकते हैं जो रात को रोटी बचती है तो फेंकने के बजाय उसका एक अच्छा इस्तेमाल हो सकता है और हेल्दी भी होती है इस तरह की चीजें।
0: जी जी जी जी जी। और आज हमारी बात है, किस दीदी से हो रही है?
1: मैं आपकी रेडियो साथी नीरजा बात कर रही हूँ।
0: जी जी जी, काफी सुंदर बात की आपने, काफी अच्छा लगा खुशनुमा होकर।
1: ठीक है दीपक जी, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, धन्यवाद
0: जी। नमस्कार दीदी।
1: नमस्कार दीपक जी।
0: एक दो श्रोताओं के नाम ले सकते हैं?
1: बिल्कुल लीजिए
0: जी। हमारे भोरदा जिला ललितपुर से हैं बालचंद चड़ार जी और चंद्रेश गोहर जी, सागर मध्य प्रदेश से जयपाल यादव जी हैं, लोहेड़ी मध्य प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर हैं, और कैलाश नारायण नामदेव जी हैं गोना कुसमाड़ से, लखनलाल नामदेव जी हैं। जी दीदी
1: ठीक है, बिल्कुल
0: जी। नमस्कार दीदी।
1: नमस्कार।

0: जी नमस्कार।
1: हाँ दीदी नमस्ते।
0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: बिल्कुल दीदी बिल्कुल सही जगह लगा है आकाशवाणी भोपाल।
0: नाम जानना चाहेंगे आपका?
1: हम आपके नियमित श्रोता भागचंद्र साहू जी, राजेंद्र नगर गंज वासोदा जिला दीदी का।
0: तो भागचंद्र जी, आज हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम में कि भोजन की बर्बादी कैसे रोकें। जो अन्न होता है, खाना खाते हैं, वो क्या होता है, जरूरत से ज्यादा बना लेते हैं और वो फेंकना पड़ जाता है।
1: जैसे जितना अपन खाना है उतना खाना अपन ले, क्योंकि बर्बाद ऐसा है कि अपन बेफजूल में ज्यादा खाना ले लेते हैं, फालतू फेंक जाता है। ऐसा ना करें हमारा श्रोता बंधु, बिल्कुल कोई ना करे, जितना खाने की योग्य हो उतना ही खाना ले। आजकल शादियों में देखने आ रहा है जो बफर का सिस्टम रख दिया है, खा रहे हैं कुछ फेंक रहे हैं, ऐसा ना करें।
0: शादी पार्टी में जाते हैं तो जरूरत से ज्यादा प्लेट में ले लेते हैं, तो क्या तरीका, क्या उपाय होना चाहिए?
1: उसका ऐसा है देखो, जैसे खाना बच रहा है, जैसे पर्याप्त खाना आपने ले लिया है, तो वो खाना इधर उधर ना फेंके, एक डस्टबिन में डालें। उसको क्या है, जैसे अपन कहीं, वैसे अपन गौ माता है उसको खिला सकते हैं।
0: और अलग से भी खाना बचा सकते हैं, अगर बच जाता है तो जो जरूरतमंद लोग हैं, जैसे रोटी बैंक वगैरह होते हैं जहाँ पर ऐसे लोग जिन्हें जरूरत होती है खाने के लिए लेकिन नहीं मिल पाता, उनके लिए रख सकते हैं खाना, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल दीदी सही बात है, सही बात है।
0: और भागचंद्र जी, जैसे परिवार में जब खाना बनता है तो उसकी मात्रा किस तरह से तय करते हैं आप?
1: नहीं वो तो ऐसा है, जैसे खाना अपन खा रहे हैं तो भाई उतना पर्याप्त में उतना खाना ले जितना अपने खाना है, और खाना अगर शाम के बचा है, अगर थोड़ा बहुत बचा है तो उसको उपयोग में ले लें।
0: और अगर कभी घर में कुछ रोटियां वगैरह बच जाती हैं तो आप उनसे कुछ नया बनाते हैं, कुछ नई डिश बनाते हैं, या कोई भी दाल वगैरह बच जाए?
1: पोहा बना ले बढ़िया, उसको सेक के बढ़िया, एक नंबर।
0: यानी एक नई डिश बन सकती है, है ना?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बन क्यों नहीं बन सकता, उससे बन सकता है।
0: बिल्कुल, बताइए भागचंद्र जी, आपके यहाँ मौसम के क्या हाल हैं?
1: मौसम तो दीदी गंज वासुदा में फिलहाल अभी बदल हो रहे हैं, संभावना है पानी की।
0: अच्छा,
1: अब गिर सकता है, कल शाम तक गिर सकता है।
0: अच्छा, चलिए भागचंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप कार्यक्रम से जुड़े।
1: नाम जानना चाहते थे हम।
0: मैं आपकी रेडियो साथी नीरजा हूँ।
1: दीदी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमें बहुत अच्छा लगा।
0: मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
1: हाँ दीदी, हम तो आपके नींव में सोता है, पत्र भी डालते रहते हैं आपकी फरमाइश वगैरह में।
0: जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम से जुड़ते हैं।
1: ठीक है दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो, नमस्कार।
1: जी नमस्कार। कहाँ? आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं
0: बिल्कुल, आकाशवाणी भोपाल।
1: जी। गोपाल बोल रहे थे दमोह से, गोपाल ठाकुर, दमोह बजरिया वार्ड 6। जी
0: कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है?
1: हम ठीक हैं और ईश्वर से कृपा करते हैं कि आप लोग, आपका पूरा स्टाफ अच्छा रहे और खुश रहे। कुछ
0: जी धन्यवाद।
1: दिन आज का क्या कैसा है रिकॉर्डिंग का?
0: आज बात कर रहे हैं कार्यक्रम में कि भोजन की बर्बादी कैसे रोकें।
1: भोजन की बर्बादी कैसे रोकें? दीदी,
0: कैसे रोकें?
1: भोजन की बर्बादी तो बहुत ज्यादा है, बफर के सिस्टम में बहुत ज्यादा होती है। तो अपन को इतना ध्यान रखना चाहिए कि भाई, हमको जितना खाना है उतना हम अपनी प्लेट में निकालें, जितनी फिर जरूरत पड़े तो दोबारा फिर से ले लें।
0: तो घर में भी जो अन्न बर्बाद होता है, जरूरत से ज्यादा बन जाता है, तब क्या करना चाहिए?
1: 4 व्यक्ति है या 10 व्यक्ति है या 2 व्यक्ति है, तो बनाने वाले को इतना नॉलेज रहना चाहिए कि हमको कितना हमेशा लगता है उतना उनको बनाना चाहिए।
0: यानी अगर 4 लोग हैं घर में तो 4 लोग जितना खाते हैं उतना ही बनाओ खाना, एक सही मात्रा में। और अगर खाना बच जाता है तो फिर क्या करना चाहिए?
1: जैसे खाना बच जाता है तो यदि कोई अपना वाला आ गया तो खाना है तो उसको खिला दूं, यदि कोई खाने वाला नहीं है, अपनी गाय है,

0: कुत्ते वगैरह हैं उनको खिला दो।
1: बिल्कुल खाना फेंको मत, किसी को दे दो,
0: हाँ
1: जरूरतमंद को दे दो खाना।
0: क्योंकि दीदी देखो अपन खाना ही के लिए अपन मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, तो दीदी खाने के लिए तो अपन करते हैं और खाने को अपन उसकी इज्जत नहीं करेंगे, दैनिक
1: बिल्कुल
0: सम्मान नहीं करेंगे, तो
1: खाने का सम्मान
0: कभी
1: करना
0: ना कभी
1: चाहिए।
0: फिर अपन को भूखा मरना पड़ेगा।
1: हाँ, और जो बच्चे होते हैं घर में उनको शुरू से ही भोजन का महत्व कैसे बताएं कि ये खाना जो है इसे बर्बाद नहीं करना है।
0: समझाना चाहिए और उनको भैया जितना तुमको चाहिए बेटा उतना लो, अपने
1: हाँ
0: हाथ से निकाल के दो उनको, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको अपन अपने हाथ से निकाल के थाली में या प्लेट में जो मैं भी अपन खिला रहे हैं उतना दो जितना उनको खाना है, और उनको जरूरत पड़ जाए तो उनको फिर से दे दे दोबारा दे दे। लेकिन दीदी मैं आपका आकाशवाणी भोपाल सुनता हूँ, सुबह 6 बजे से भक्ति गीत आते हैं, फिर रामायण आती है, उसके बाद
1: हाँ
0: फिर गाने आते हैं, समाचार आते हैं।
1: जी,
0: दीदी रात के 10 बजे तक सुनता हूँ मैं मोबाइल से। जी
1: यानी आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है रेडियो सुनना।
0: दीदी मैं बहुत छोटा था, जब 10-12 साल का था तो ट्रांजिस्टर चलते थे बाजे,
1: हाँ
0: तो मैं जैसे पहले तो पेटी खवास नहीं टांग लेते थे कांखरी में,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ऐसे कांखरी में दबा के कहीं हार जा रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं या गांव में घूम रहे हैं, मतलब लेके घूमते थे और अच्छे गाना बजाना सुन रहे हैं और
1: यानी
0: चीजें।
1: बहुत पुराना याराना है आपका आकाशवाणी के साथ
0: जी
1: और आज भी वो दोस्ती बनी हुई है।
0: हाँ दीदी, और जब तक जीवन रहे तब तक रहे,
1: वो
0: क्योंकि दीदी
1: हाँ
0: एक से एक अच्छी चीजें आपके यहाँ से सुनने को समझने को, अच्छी ज्ञान की बातें भी मिलती है, समझदारी की भी बातें भी मिलती हैं, प्रकार का और अपना मनोरंजन भी होता है दीदी।
1: और हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है।
0: जी जी जी
1: ठीक है गोपाल जी, आप कार्यक्रम से जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार दीदी, नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो
0: नमस्कार।
1: जी मैडम। मंजिला जिला स्वागत है तहसील बंडा से। मैं दशरथ अहरवाल बात कर रहा हूँ मैडम।
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया मैडम।
0: क्या हाल चाल है मौसम के वहाँ?
1: रेम जम रेम जम बारिश हो रही है मैडम अभी यहाँ पे।
0: आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि भोजन की बर्बादी कैसे रोकें।
1: जो अपन खाना बनाते हैं तो उसको बराबर बनाना चाहिए, फिक्स ज्यादा नहीं बनाना चाहिए, तब वो वेस्ट हो जाएगा। बच जाता है मैडम तो फिर वो जो खराब हो जाए तो उसको गाय को खिला देते हैं।
0: और जैसे शादी में जाते हैं वहाँ भी तो खाने की बर्बादी होती है, उस बारे
1: जी
0: में क्या
1: मैडम।
0: कहना चाहेंगे?
1: मैडम वो क्या है, जितना अपन खा सकें उतना ही ले, बर्बाद ना करें खाना ना। कोई कोई क्या करते हैं, ज्यादा ले लेते हैं, उतना खुपता तो है नहीं है तो वो क्या बर्बाद हो जाता है, फेंक देते हैं अपन डस्टबिन
0: यानी
1: में।
0: खाना खिलता नहीं है लेकिन हम खाना बहुत ज़्यादा ले लेते हैं प्लेट में।
1: जी जी जी
0: घर में अगर खाना बच जाता है उससे कोई नई रेसिपी डिश बनाई जा सकती है?
1: बनाई जा सकती है, जैसे अपने चावल बच जाते हैं तो उनको अपन फ्राई कर सकते हैं।
0: चावल को फ्राई कर सकते हैं जो बचे हुए
1: जी
0: हैं।
1: वहाँ से चावल हो जाते हैं, उनको फ्राई करके भी खा सकते हैं।
0: ठीक है दशरथ जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद।

0: हेलो, नमस्कार
1: हाँ नमस्कार दीदी।
0: जी।
1: दीदी मैं ग्राम चताहारी तहसील नरवर जिला शिवपुरी से आपका भाई नियमित श्रोता प्रमोद शर्मा बात कर रहा था। दीदी
0: नमस्कार प्रमोद जी, कैसे हैं आप?
1: दीदी मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं दीदी?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। क्या हाल है मौसम के आपके यहाँ?
1: दीदी यहाँ पर तो अभी धूप निकली हुई है, बारिश नहीं हो रही है, अभी
0: बारिश नहीं हो रही?
1: बिल्कुल भी बारिश नहीं है दीदी।
0: बाकी हर जगह तो काफी ज्यादा बारिश हो रही है।
1: हाँ
0: उम्मीद करते हैं प्रमोद जी कि आपके यहाँ जल्दी से बारिश हो।
1: थैंक यू दीदी।
0: और
1: दीदी आज फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम है क्या?
0: नहीं, आज है बात आपके गीत हमारे।
1: हाँ दीदी तो क्या प्रश्न है आज का?
0: बिल्कुल, हमारे कार्यक्रम में जो विषय है आज का वो है भोजन की बर्बादी कैसे रोकें।
1: हाँ दीदी ये बहुत अच्छी बात है कि कैसे रोकें, क्योंकि भोजन पहली बात तो उतना ही बनाना चाहिए जितना अपन प्रयोग कर सकें, और दूसरी बात अगर खाना बच जाता है तो ये गरीबों में बांट दे, या मतलब ऐसी जगह गौ माता को दे दें कि वेस्ट ना जाए। दीदी
0: यानी खाना किसी को दे दो लेकिन फेंको नहीं।
1: फेंको नहीं दीदी, क्योंकि फेंकेंगे तो वो खाना वेस्ट होगा, और खाना वेस्ट होगा तो वो ना हमारे काम का है ना किसी और के काम का है, इसलिए बच जाता है तो उसे दीदी दान कर दो, किसी को दे दो तो उसके खाएगा तो वो धन्यवाद तो करेगा दीदी।
0: हाँ, कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो बचे हुए खाने को हम अगर उन्हें देते हैं तो वो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाती हैं। रोटी बैंक वगैरह होते हैं,
1: हाँ दीदी सही बात है ये।
0: और शादी पार्टी में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर खाने की बर्बादी, अन्न की बर्बादी कैसे रोकी जा सकती है?
1: वहाँ उतना ही लो ना जितना अपन खा सकें, दूसरों को सलाह भी देना चाहिए कि वो ये खाना वेस्ट मत करो, उतना लो जितना आप खा सको, जरूरत हो।
0: प्रमोद जी, आपके घर में खाने की क्या व्यवस्था है? भोजन की किस तरह से, किस मात्रा में आप बनाते हैं? क्या सोचकर कि इतना खाना हमें उपयोग में आएगा?
1: उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ मैं कि जैसे आप चार रोटी खाते हैं तो चार रोटी का ही आटा लगाएं, और अगर तुम 12 रोटी खाते हैं तो 12 ही का आटा लगाएं, क्योंकि
0: क्योंकि
1: ज्यादा बना लेंगे तो वो खाना वेस्ट होगा, वेस्ट होगा तो वो फेंकेगा,
0: बिल्कुल
1: किसी का ना तुम्हारे मतलब का है ना हमारे का है ना और किसी का है।

0: यानी उन्हें बताओ कि ये मेहनत की कमाई है, इसे
1: हाँ
0: फेंकना
1: दीदी,
0: नहीं है।
1: हाँ
0: फेंको मत खाने को, उसका आदर करो, सम्मान करो।
1: हाँ सम्मान करो दीदी।
0: बिल्कुल प्रमोद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप कार्यक्रम से जुड़े, धन्यवाद।
1: धन्यवाद दीदी। पर नाम क्या है दीदी?
0: मैं आपकी रेडियो साथी नीरजा बात कर रही हूँ।
1: थैंक यू दीदी, आज पहली बार बात हो रही है दीदी।
0: अच्छा,
1: हाँ दीदी आपसे।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके प्रमोद
1: और
0: जी।
1: दीदी आपको और सभी आकाशवाणी परिवार को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी श्रोता भाई बहनों को।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रमोद जी।
1: थैंक यू दीदी,
0: चलिए, नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नाम जानना चाहेंगे आपका?
1: हाँ, नाम मेरा है गोविंद सह चंदेल
0: गोविंद सह चंदेल,
1: जी, दमोह
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: एमपी
0: जी गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: जी।
0: कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है आपके?
1: बहुत बढ़िया है बस। और आप लोगों के क्या हाल चाल है?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज कार्यक्रम में हम आपको विषय दे रहे हैं कि भोजन की बर्बादी कैसे रोकें।
1: जी,
0: बताइए, आप क्या जानते हैं इस बारे में?
1: इस बारे में ये है मैडम कि खाना उतना लिमिट से लेना चाहिए कि मतलब थाली में खाना ज्यादा बचना ही नहीं चाहिए, और लिमिट से खाना लेना चाहिए कि जितना खा सकें तो खाना बर्बाद होगा नहीं।
0: और जैसे शादी में जाते हैं तो वहां भी खाने की काफी ज्यादा बर्बादी होती है।
1: हाँ, वो तो बहुत ज्यादा होती है मैडम, ये बर्बादी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपन लोग तो ऐसा है कि चलो ठीक है चल जाता है, लेकिन जो गरीब लोग हैं जो खाने के लिए बेचारे तरसते हैं या कितनी कितना वो करके इसके बाद खाना उनको मिल पाता और शादी में कितना बर्बादी करते हैं, तो उसमें भी खाना बफर सिस्टम से रहता है, तो उसमें खाना लिमिट से उतना ही लेना चाहिए जितना कि आप खा सकें, चाहे भलाई एक बार ले लो, दो दो बार ले लो, तीन बार ले लो। ज्यादा लोग तो फिर बचेगा तो वो तो फेंकेगा ही, इसलिए खाना खाने की लिमिट से लेना चाहिए और बर्बादी नहीं करना चाहिए।
0: और बताइए गोविंद जी, आपके घर में जब खाना कभी बच जाता है, कभी कभी बच ही जाता है, ऐसा होता है, तब आप क्या करते हैं उस खाने का?
1: खाने का भाई ये है कि जैसे भाई सुबह टाइम का भी बच गया तो बार चलो भाई, बच्चे लोग तो चलो 4 बजे मान लो खाना खाते हैं डबल से तो वो खा भी लेते हैं, और यदि नहीं खा पाते बच्चे तो फिर दूसरे दिन गाय को खिला देते हैं या जानवरों को खिला देते हैं।
0: बिल्कुल। और आपके घर में जैसे आपने बताया बच्चे हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि बच्चों को अन्न का महत्व समझ आए और वो खाने की बर्बादी ना करें?
1: बस मैडम, मैं तो यही कहना चाहता हूँ बच्चों को कि हमेशा लिमिट, बस लिमिट में खाना लें कि बर्बाद ना हो, बचे ना। और बाकी है कि यदि मान लो खाना बच भी जाता है तो उसको भाई 2-4 घंटे बाद यदि बच्चे फिर रिपीट मांगते हैं घर पे तो वो खाना खा लेना चाहिए, कोई उससे वो नहीं है कि खाना नहीं खा सकते।
0: बिल्कुल गोविंद जी।
1: मैं तो मैडम रेडियो का बहुत शौकीन हूँ
0: अच्छा
1: बचपन से ही,
0: अच्छा अच्छा
1: और हमको तो टेलीविजन से अच्छा मोबाइल लगता है, ये टेलीविजन से अच्छा रेडियो लगता है।
0: आप
1: हाँ,
0: बचपन से
1: इसलिए है
0: सुनते
1: कि
0: हैं।
1: अपना ये अपना रेडियो चालू कर दो, अपना कोई भी काम करना, लिखा पढ़ी करना, कुछ करना, पेपर भी पढ़ना या कुछ भी करना, तो अपना करते रहते हैं और अपना मनोरंजन होता रहता है। ज्ञानवर्धक चीजें भी आप लोग देते रहते, बीच बीच में समाचार भी आते हैं, न्यूज आती है, हर चीज रेडियो पे मिलती है। मेरे को रेडियो तो बहुत ही पसंद है मैडम।
0: जी बहुत अच्छा लगा आपके विचार जानकर कि आप बहुत पसंद करते हैं आकाशवाणी को गोविंद
1: जी
0: जी।
1: हाँ, हम तो
0: तो
1: हाँ आकाशवाणी को बहुत पसंद करते और शुरू से बचपन से ही रेडियो बहुत बहुत सुना है मैडम हम लोग ने
0: अच्छा
1: बहुत, और आज भी मैं पसंद करता हूँ रेडियो को, क्योंकि अभी अभी भी हमारा देखिए रेडियो चल ही रहा है
0: अच्छा
1: जी। हाँ, लेकिन मैडम लगता नहीं पहली बार मेरा फोन लगा, मेरे को बहुत खुशी हो रही है बात करके,
0: मुझे
1: बहुत
0: भी
1: खुशी हो
0: बहुत
1: रही है।
0: अच्छा
1: ओके,
0: लगा।
1: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: हम हीरो डीलर से ऋतिक यादव बात कर रहे हैं। ठीक
0: कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है?
1: है मैडम,
0: आज कार्यक्रम का विषय है भोजन की बर्बादी कैसे रोकें।
1: उसे रोकने के लिए मैडम जैसे कि जरूरत से ज्यादा लेना नहीं चाहिए, जिससे कि वो फिट सके। इतना ही लेना चाहिए जितना अपने को आवश्यकता हो।
0: आप जब शादी में जाते हैं
1: शादी
0: वहाँ
1: में जाते हैं तो जैसे अपन बफर में जाते हैं तो वहाँ पे लोग 50% खाना फेंक देते हैं और बाकी आधा खाते हैं, इसलिए उसे बचने के लिए इतना ही लेना चाहिए जितना उसको आवश्यकता हो।
0: यानी प्लेट भर के खाना नहीं लेना है, जितना चाहिए उतना ही खाना लो, एक एक चीज ट्राई करो, पूरा खाना मत लो एक साथ, है ना? और बताइए ऋतिक जी, घर में क्या होता है, खाने का सिलसिला किस तरह से मैनेज करते हैं आप लोग?
1: मैम घर में तो सही भी तरह से ठीक रहता है, बाकी वहाँ तो नहीं फिकता। घर में जैसे शादियां है, फंक्शन है, इसमें फिकता है। घर में प्रॉब्लम नहीं आती है, हमेशा गांव में उतना ही बनता है।
0: अच्छा
1: और बाकी यहाँ जानवर अपने गाय रहती है, अपन उनको दे देते हैं।

0: वेस्ट नहीं जाने देते। जी
1: बहुत अच्छी बात है ये तो ऋतिक जी,
0: जी
1: बताइए मौसम के क्या हाल है आपके यहाँ?
0: मौसम आज तो खुला हुआ है।
1: खुला है, धूप है।
0: हाँ आज तो अच्छी हवा चल रही है, मौसम साफ है, बाकी पानी आ नहीं रहा है आज।
1: ठीक है ऋतिक जी, आप कार्यक्रम से जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके मैडम,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर आज पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। वे उत्तर बंगाल में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिसमें प्रशासनिक बैठकें भी शामिल हैं। वे सीमा सुरक्षा से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सिंगापुर में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने राजीव गांधी की राष्ट्र के प्रति सेवा और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में 550 प्रशिक्षुओं के अभिमुखीकरण समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ ही अकादमिक लैब का अवलोकन कर प्रशिक्षुओं से संवाद करेंगे। संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज से 10 सितंबर तक समरसता संकल्प अभियान एवं समरसता यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली आपत्तिजनक टिप्पणियां करने और अदालत के आदेश का पालन न करने के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। और एंटीगा सिंगापुर इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन में मोहित जागलान और लक्षिता जागलान की जोड़ी वॉकओवर के बाद मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत हमने आपके लिए चुन लिया है। आपके पत्र भी हमारे हाथों में है। ये गीत है फिल्म कन्यादान से। मोहम्मद रफी की आवाज, नीरज के शब्द और संगीत है शंकर जयकिशन का। पसंद आप सब श्रोताओं की है। गौतम नगर नांदेड़ से इस गीत को सुनना चाहते हैं प्रभाकर जोंदले और आरती जोंदले। इसी गीत को पसंद किया है चंडीगढ़ मोहाली के श्रोताओं ने। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवीन राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। साथ ही इस गीत को पसंद किया है कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने। तो आइए सुनते हैं इन सब की पसंद पर कन्यादान फिल्म का ये गीत।

और अब आपको सुनवा रहे हैं मेरा साया फिल्म का वो नगमा जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। राजा मेहंदी अली खां की शब्द रचना है, संगीत मदन मोहन का है। पसंद आप सब श्रोताओं की। पटियाला से बत्ता परिवार के सदस्य इस गीत को पसंद कर रहे हैं। ये हैं मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। इनका साथ दिया है हार्दिक ने भी। इसी गीत को पसंद किया है यवतमाल के श्रोताओं ने। राहुल अनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और स्वीटी के साथ बेबी प्रियांशी इस गीत को सुनना चाहती हैं। घंटा घर चौक खंडवा के श्रोताओं की भी यही पसंद है। पत्र लिखने वाले श्रोता हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। फरमाइशी पत्रों की फहरिस्त में एक और श्रोताओं का समूह है जो इस गीत को सुनना चाहते हैं। ये हैं सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता माला

कलाकार मुस्कान और जीतेंद्र के साथ धर्मेंद्र मालाकार। तो आइए हम सब सुनते हैं मेरा साया फिल्म का ये मधुर गीत।

राम तेरी गंगा मैली, इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आवाज लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की है, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। ग्राम खकल कोच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अंशराज सिंह गुर्जर और समस्त गुर्जर परिवार इस गीत को पसंद कर रहे हैं। इसी गीत को सुनना चाहते हैं अमरावती महाराष्ट्र से आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब, साइमा। इसी गीत को पसंद किया है पोत्रा के श्रोताओं ने। ये हैं मुस्तबा खान, आफिया खान, राउफ और शहीद। अकोला के श्रोताओं की भी यही पसंद है। अकोला से पत्र लिखने वाले श्रोता हैं रमेश कनटकर, वैशाली कनटकर। तो आइए सुनते हैं इन सब की पसंद पर राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गीत।

अब आपको सुना रहे हैं खेल खेल में फिल्म का वो गीत जिसे गाया है शैलेंद्र ने, गुलशन बामरा के बोल हैं, संगीत आर डी बर्मन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश और राशि और शीतल राजेश इस गीत को सुनना चाहती हैं। डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, इनका पत्र हमें मिला है पटेल नगर मलोट पंजाब से, बागपत उत्तर प्रदेश के।

श्रोताओं की भी पसंद यही गीत है। पत्र लिखने वाले श्रोता हैं संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया। धामड़ी मानोरा के श्रोताओं का पत्र हमें मिला है। ये हैं तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण, प्रज्वल और अनुत डेरे। तो आइए इन सब की पसंद पर सुनते हैं खेल खेल में फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत, जिसे पसंद किया है हमारे श्रोताओं ने। पसंद करने वाले श्रोता हैं जय किसान रेडियो श्रोता संघ कोटड़ा बहादुर से, ये पत्र हमें मिला है मंदसौर ज़िले से, तूफान डांगी, नेपाल डांगी, राहुल डांगी, पप्पूलाल डांगी और विक्रम डांगी इस गीत को सुनना चाहते हैं। इसी गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और इनके साथी। गोला बाजार बक्सर से पत्र हमें मिला है श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और कान्हा आर्य का। ये सुनना चाहते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म का वो गीत जिसे गाया है उदित नारायण, अलका याग्निक और सपना अवस्थी ने। समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: राजा हिंदुस्तानी फिल्म के इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम इस छोटे से अंतराल के बाद होगा।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानी हम सुनते आए

0: अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक जमुनिया। आज सुनिए इसकी दूसरी कड़ी।

0: मेरे भैया जमुनिया की करनी गुनो मेरे भैया।
1: पिछले अंक में आपने सुना कि जमुनिया और उसका पति रतन सरकार द्वारा दिए जाने वाले जमीन के पट्टे को लेकर बहुत उत्साहित हैं।

उधर रतन का छोटा भाई करण शराबी और आवारा किस्म का निठल्ला व्यक्ति है, जिसे गांव का जमींदार दीवान अपने फायदे के लिए पटाता है। अगली सुबह रतन और जमुनिया सरकारी दफ्तर जाते हैं। अब आगे।

0: भैया इधर आओ, अरे चालू आया नहीं
1: है। अरे सुनो भाई, सुनो सुनो, अरे सुनो, अरे सुनो भाई, सुनिए सुनिए, आप लोग सुनिए, थोड़ा सुनिए, आगे आइए, आगे आइए रतन राम
2: जी, जी।
1: ये भैया यहाँ अंगूठा लगाइए आप, यहाँ पे
2: दस्तखत कर दू।
1: पढ़े लिखे हो?
2: हाँ
1: पढ़े लिखे हो तो दस्तखत कर दो इसमें
2: जी।
1: और ये लो अपने कागजात
2: जी जी,
1: जमीन के हैं, जमीन के
2: जी,
1: संभाल के रखना, बहुत जरूरी कागजात हैं ये
2: जी जी,
1: ठीक है
2: जी।
1: अरे रतन कौन है भाई? रतन
3: जी मालिक हम हैं।
1: अरे रतन यहाँ आगे आओ, आगे
3: आगे। हाँ मालिक,
1: ये यहाँ करो दस्तखत।
3: साहब हम दस्तखत नहीं कर पाएंगे, हम अंगूठा लगा दे।
1: अंगूठा लगाओ भाई, अंगूठा लगाओ
3: जी, अंगूठा लगा देते हैं साहब।
1: इस वाले हाथ का, इस हाथ का।
3: अच्छा ये
1: शाही में लगाओ और यहाँ लगाओ, यहाँ।
3: हाँ हाँ जी साहब।
1: अब ये देखो अंगूठा लग गया
3: जी,
1: और ये लो अपने कागजात, ठीक है?
3: हाँ साहब,
1: संभाल के रखना इसे।
3: अरे साहब संभाल के रखेंगे, बक्सा में रख देंगे, बक्सा में साहब, तारा लगा देंगे,
1: ठीक है भैया। राम राम राम राम राम राम भैया, राम राम।

0: अरे ये क्या कर रहे हो? कपास से पाथर तोड़ रहे हो?
1: ठीक कह रही हो जमुनिया। अरे हमारा सर ही किसी काम का नहीं, ना इतना कड़ा है कि पत्थर तोड़ सके, ना इतना समझदार कि कुछ कम मेहनत का काम मिल जाए।
0: अरे हम तो मजाक में बोले, आओ थोड़ा आराम कर लो, छा लो, पसीना सूख जाएगा तो दोनों मिलकर थकाएंगे, ठीक है? शायद बिना तोड़े काम बन जाए।
1: हम समझ रहे हैं कि तुम हमसे हंसी कर रही हो, अकेले नहीं धका पाए तो सोचा कि टुकड़े उकड़े करके इसे खेत से बाहर फेंक दें। देखो देखो तो सही, खेत के बीचों बीच पड़ा है।
0: अरे एने लिया पाथर है, जल्दी फूटता भी नहीं।
1: ला भाई पानी पिला दे।
0: ये लो पानी।
1: सरकार ने जमीन तो दे दी, पर इसमें फसल काटना इतना आसान भी नहीं।
0: देखो जी, अभी से हार मानोगे तो फसल कैसे काटेंगे? हाँ हिम्मत रखो, हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो फिर हरियाली जरूर आएगी, अनाज पैदा होगा, हम भूख भगा पाएंगे।
1: तू तो नेताओं जैसी बात करती है री।
0: मौका मिलेगा तो वो भी करके दिखा दूंगी, आप साथ देना।
1: अरे साथ तो देने के लिए ही हमें ऊपर वाले ने एक किया है, पर और भी खरपतवार वाली जमीन तो थी, ये ऊसर पाथर ही हमारा।

0: हमारे हिस्से आया, क्या करें, ये नसीब की बात है, नसीब ही कुछ ऐसा है हमारा।
1: अब नसीब को तो मत कोसो, जो मिला है उसे ही सोना बना देंगे, हिम्मत रखो।
0: चल भाई, करते हैं कोशिश। पर ये क्या देख रहा हूं?
1: कहाँ देख रहे हो जी?
0: अरे वो देखो, वो उधर, अरे मेरे सामने वहां, ये करण कैसे दिख गया आज खेत पर?
1: अरे हाँ, ये तो देवर जी हैं। अच्छी बात है, ये खेत पर? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है।
0: अरे कैसी गड़बड़? कुछ पहले ही गड़बड़ नहीं करके आ गई?
1: तुम तो भाई की पैर भी करोगे ही हैं? मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करके आई। आ गए हैं तो खुद ही पूछ लेना, पूछो पूछो।
0: ठीक है, अभी चुप रहो। अरे आओ करण, आओ बैठो बैठो। खेत पर कैसे?
2: कुछ खास नहीं भैया, आज ऐसे ही मन किया कि चलो देखें भैया क्या कर रहे हैं खेत में, तो आ गया।
0: चलो अच्छा है, मैं भी किसी की ताक में था। वो जो वो पत्थर देख रहे हो ना?
2: हाँ।
0: वो पत्थर जरा भारी है, तीनों मिलकर उठाएंगे तो खेत के बाहर फेंक देंगे, क्या ख्याल है?
2: भैया बात तो ठीक है, पर मेरी कमर में थोड़ा दर्द है, उठाने लायक नहीं हूँ, पर कोशिश जरूर करूंगा।
0: अरे तो फिर रहने दे, दर्द और बढ़ गया तो मुसीबत होगी।
2: हाँ,
0: हम ही कोशिश करते हैं, लगता है बात बन जाएगी। तू बैठ, आराम कर।
2: ठीक है भैया, जैसा तुम कहो।
0: चल उठ जमुनिया, हम दोनों ही कोशिश करते हैं।
1: हाँ चलिए।
0: वाह वाह जमुनिया, वाह, तुमने तो दिखा दिया आज के औरत मर्द के कंधे से कंधा मिलाकर चले तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को मात दे दे। आखिर पत्थर हट ही गया।
1: अब चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ, पत्थर को दखेल तो आपने ही दिया था, मैंने तो बस आपका साथ दिया है। हाँ।
0: अच्छा भाई, ठीक है ठीक है।
1: अब मैं चलती हूँ, घर पर भी बहुत सारा काम है। भाई अपने देवर जी को तो काम देखते ही कमर टूटने लगती है। अब आप दोनों करो गुटरगू, मैं चलती हूँ।
2: वाह भैया वाह, आपने तो कमाल कर दिया, पत्थर हटाकर ही छोड़ा।
0: अपनी मुसीबत अपनों को ही हल करना पड़ती है।
2: हाँ सही बात कही भैया, वो भाभी कुछ कह रही थी शायद मेरे बारे में।
0: अरे छोड़, ये औरतों की बात है। हाँ तू बता, कुछ खास बात है क्या जो आज यहाँ आया है तू?
2: कुछ खास तो नहीं, पर कहो तो बात करूं।
0: अरे बोल भी, इतनी देर से उलझा रखा है।
2: मैं कहता हूं, एक पत्थर हटाने में इतनी मेहनत लगी, इतना टाइम लगा, और सब कुछ मेहनत से ही तो नहीं होगा ना। पानी कहाँ से आएगा, बीज खाद कहाँ से लाओगे?
0: मतलब
2: साफ है, इन सब के लिए पैसा चाहिए, चाहिए कि नहीं बताओ।
0: हाँ चाहिए तो सही, सरकार ने तो बैंकों को भी लगा रखा है कर्ज देने के लिए। कुछ इंतजाम हो ही जाएगा।
2: अरे हो तो जाएगा ही, पर इन सब में

0: क्या कहा? दीवान जी से पैसा लेगा?
1: हाँ बिल्कुल, अरे उन्होंने तो खुद ही कहा था, जरूरत समझो तो पैसे ले लेना। उनका ट्रैक्टर भी, ट्यूबवेल भी है, अरे अपना काम फटाफट हो जाएगा, कम मेहनत कम दौड़ भाग।
0: वो तो ठीक है, पर इस दीवान से डर लगता है, मेरा तो जी घबराता है, कब ना जाने क्या कर दे, गलत सही।
1: अब तुम तो फालतू में डरते हो भैया, ऐसी बात नहीं है। अब कोई पैसे ले ले और डकार जाए तो भाई देने वाला वसूल करेगा ही ना, और अगर पैसा लिया और लौटा दिया तो फिर काहे का डर।
0: तो ठीक है भाई, बात करके देख ले।
1: ठीक है भैया। जयराम जी की मालिक।
2: आओ आओ करण, कैसा है तू?
1: ठीक हूँ मालिक, बस आपसे मिलना था सो आ गया।
2: अच्छा किया, बोल क्या खास बात है?
1: वही मालिक, हमें खेत तो मिल गया है पर जोतना, बोना, पानी, खाद बीज के लिए पैसा चाहिए था।
2: हाँ तो ले जाना पैसा। अरे पहले ही तुझे बता चुका हूँ, जब चाहे ले जा पैसा।
1: तो अभी दे दे मालिक, भैया भी खुश हो जाएंगे कि छोटा भाई कुछ तो काम आया, खाली आवारा नहीं है।
2: अब इतनी हड़बड़ी भी मत मचा, थोड़ा अच्छे से सोच समझ ले। अरे भाई रुपए पैसे का मामला है, फिर आना, अपने भाई से भी बात कर लेना।
1: मालिक वो बात कर ली है, सोच समझ कर ही आया हूँ, उनकी भी हाँ है।
2: उसकी भी हाँ है तो फिर वो आया क्यों नहीं?
1: अब एक ही बात है मालिक, वो आए या मैं आया।
2: एक ही बात कैसे है करण? तुम निरे भोले निकले। अरे भाई रुपए पैसे का मामला है, थोड़ा जिम्मेदार आदमी चाहिए। अच्छा अगर तुम पैसे ले गए और उसे कहीं और खर्च कर दिया तो फिर मैं क्या करूंगा?
1: जी
2: है ना सोचने वाली बात। सुन
1: जी,
2: कल मेरा ट्रैक्टर खाली है, रतन से कहना कल आके ले जाए ट्रैक्टर, और हाँ उससे ये भी कहना कि मैं इस जुताई के पैसे भी नहीं लूंगा।
1: कह दूंगा मालिक, पर मैं उधार के पैसे कहीं और नहीं उठाऊंगा, भरोसा रखो मालिक।
2: चल किया भरोसा तुझ पर, अब बता कैसे लौटाएगा पैसे?
1: अरे खेती से कमा कर लौटा देंगे मालिक।
2: दिमाग मत खराब कर मेरा, ये करेंगे काम और खेती। जाओ जाओ दारू के अड्डे पर जाकर दारू पियो। अब ऐसे क्या देख रहा? पैसे के लिए कुछ साख रखनी होती है और वो रतन के पास है, उसके पास जमीन है, जमीन, उस पर भरोसा कर सकता हूं।
1: ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी।
2: ठीक है जा, और हाँ
1: जी
2: रतन को जरूरत हो तो भेज देना।
1: जी अच्छा मालिक।
2: और हाँ
1: जी
2: ट्रैक्टर का बोल देना उसे।
1: जी मालिक।

0: भाई वाह, इसे कहते हैं मशीन। क्या जरा देर में देखते ही देखते खेत खोद कर रख दिया। फावड़ा चलाते तो महीना लग जाता महीना, और इतनी अच्छी जुताई भी नहीं होती। वाह मालिक वाह।
1: अरे वाह मालिक वाह, किसको कह रहा हो रतन? अपने दीवान जी को?
0: अरे नहीं भैया, हमारे लिए आप भी मालिक हैं और एट

0: एक्टर भी।
1: देखो अब ज्यादा बनो मत रतन भाई, और ना बनाओ। तुम्हारा खेत फ्री में जोतने को मुझको मालिक ने कहा, वो मैंने कर दिया। अब कम से कम एक गिलास पानी तो पिलवा दो।
0: अभी लो भैया।
1: लो, हो गए ना हम मालिक से भैया।

0: की मालिक।
1: अरे रतन आओ आओ आओ भाई, तुमने तो वाकई जंगल ऊसर को चमन बना दिया भाई, शाबाश, तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए कम है।
2: बस आप ही के सहार सब हो रहा है मालिक।
1: अब तुम तो थोड़ी देर चुप ही बैठो करण, रतन को बोलने दो, बोलो।
0: बस साहब, हार तोड़ रहे हैं, आपकी मदद से खेत जुत गया।
1: अरे भैया, हमारी मदद तो हमेशा तुम जैसे लोगों के लिए हाजिर है। अरे भाई, हम तो खुद चाहते हैं कि गांव के सब गरीब गुरबा अच्छे से कमाएं खाएं।
0: सच बात है मालिक, आज ट्रैक्टर देने के लिए आपका धन्यवाद।
1: धन्यवाद? अच्छा तो पूरा धन्यवाद देकर बरी हो लिए रतन है? अरे जरा इधर देखो भाई, ये रतन हमको धन्यवाद दे रहे हैं। ये ससुर धन्यवाद की बीमारी यहां भी आ गई है।
0: कौनों गुस्ताखी हो गई दीवान जी?
1: अब जाओ यहां से, तुम हमारी खोपड़ी मत घुमाओ, अभी हम अच्छे मूड में रहना चाहते हैं। और हाँ, पैसों की जरूरत हो तभी इधर आना, समझे?
0: जी जी मालिक।
1: जाओ।

0: एजी, सुना है दीवान को तुमने नाराज कर दिया? क्या हुआ था?
1: क्या बतावें जमुनिया, हमको बात करने की तमीज नहीं है। कहाँ, कब, कैसे बोलना है आता ही नहीं। ना जाने क्या मुंह से निकल गया कि वो एकदम से बौखला गया। हमने तो खाली धन्यवाद कहा था, इसमें ऐसा क्या हो गया अभी तक समझ में नहीं आया हमारी।
0: चलो उठो, खाना खाओ। अब जो हुआ सो हुआ। वैसे धन्यवाद देने की भी औकात हम में है या नहीं, सोचना पड़ेगा।
2: हम सब सुन रहे हैं। अरे दीवान जी को सब लोग जी मालिक कहते हैं। आपसे इतना भी तो नहीं हो पाया, उनके पास जाकर धन्यवाद दे रहे हैं। अब तो वो देने से रहा पैसे, उसे बड़ी मुश्किल से मना के आया था।
1: कोई जरूरत नहीं मनाने जुनाने की, ना पैसे देता हो तो नहीं सही, मर नहीं जाएंगे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा।
2: अब कोई और रास्ता निकाल कर नई मुसीबत मत मोल लीजिए। अरे हमें गांव में रहना मुश्किल कर देगा। आखिर भैया ऐसी लड़ाई से क्या फायदा जिसमें हारना ही हारना है।
1: अब लड़ने से पहले ही हथियार डालना है तो फिर हारना तो तय है।
2: देखो भैया, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, दीवान से माफी मैं मांग लूंगा। आप तो चलो पैसे उठाओ और चले आओ।
1: तुम तो गए थे ना लेने, क्या हुआ?
2: वो तो तुम्हें याद कर रहे थे। अरे पैसे तो दे रहे थे, पर मैंने सोचा ये शुभ काम तुम्हारे ही हाथों से हो तो ज्यादा अच्छा है।
1: मैं दीवान को जानता हूं करण, पर ठीक है, तेरी जिद है तो चलता हूं।
2: ठीक भैया। अब मालिक, वो रतन भैया आ गए हैं।
3: अच्छा। अरे कोई है, देखो रतन जी आए हैं।
4: जी मालिक।
3: अरे भैया इनकी आरती उतारो। हमारा ट्रैक्टर लेकर अपना खेत जुतवाए हैं, हम पर एहसान किया और उल्टा धन्यवाद भी दे गए। और क्या करें आपके लिए रतन साहब।
2: अब बस भी करिए मालिक।
3: तू बीच में मत बोल करण।
1: गुस्ताखी के लिए माफी दे दे मालिक, हमें आप जैसन से बात करने नहीं आता मालिक।
3: जेल, तुम तो एकदम ही सीरियस हो गए भैया। अरे भैया थोड़ा मजाक कर रहे थे तुमसे। अरे हंसो हंसो, काहे घबरा रहे भैया। बोलो पैसा वैसा तो नहीं चाहिए ना? हाँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ
1: कुछ दे दीजिए मालिक।
3: कुछ माने कितना? रुपया ठन्ने की बात तो नहीं है ना?
1: नहीं मालिक, 5,000 काफी होगा अगर आप ठीक समझे तो।
3: बिल्कुल ठीक नहीं समझेंगे हम 5,000 रुपया। अगर हमारी बात मानो तो कम से कम 25,000 तो होना ही चाहिए।
1: अरे नहीं मालिक, इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे, और इतने की जरूरत भी नहीं है। आप तो बस 5,000 दिलवा दीजिए।
3: जैसी तुम्हारी मर्जी भैया, हम तो तुम्हारे भले की कह रहे हैं। भैया क्या है कि पैसे बार बार मांगना ठीक नहीं होता है ना, इसलिए एक बार और सोच लो।
1: तो फिर 10 कर दीजिए बस, इससे आगे बढ़ने की मेरी हिम्मत नहीं है।
3: ठीक है 10,000 सही। सुना भाई कोई है?
4: जी मालिक।
3: हाँ, इन रतन जी को 10,000 रुपया देकर इनका अंगूठा लगवा लेना।
4: आओ मालिक।
3: अरे भैया बुरा मत मानना रतन, पैसों के लेन देन में लिखत पढ़त जरूरी है, समझ गए ना?
1: जी मालिक।
4: आ भैया इधर आ जाओ, आ भैया लो। ये लो, पूरे 10 हैं, गिन लो।
1: आओ आओ।
4: अरे और सुनो, आओ इधर आओ, ये यहां, हाँ अंगूठा लाओ, यहां लगा दो अंगूठा। हाँ बस मालिक, लगवा लो अंगूठा।
3: बहुत अच्छा किया।
1: कर्ज के ही सही, पर एक साथ 10,000 रुपए अपने पास आ गए, सोच कर ही बहुत अच्छा लगता है।
2: अच्छा तो तब लगेगा जब छोटे भाई को 100 रुपया दे दो खर्च करने के लिए, वो भी अपने मन से।
1: कैसी बात करता है, ये पैसे लौटाने हैं मुझे। चल अच्छा जलेबी ले चलते हैं, सब लोग खा लेंगे, सबका मुंह मीठा हो जाएगा।
2: छोड़ो भैया, जलेबी से मुझसे क्या मतलब है? आपको तो पता है मुझे क्या चाहिए।
1: अच्छा चल नाराज मत हो, ये ले 50।
2: अरे अरे मेरे अच्छे भैया।
0: अच्छा किया जलेबी ले आए, घर भर मगन है।
1: कर्ज की ही सही, पर खुशी बनी रहे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत जमुनिया का दूसरा भाग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:58 होने को है। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर आज पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। वे उत्तर बंगाल में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिनमें प्रशासनिक बैठकें भी शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सिंगापुर में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे। भारत सिंगापुर त्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में हो रहा है। इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहा है। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में 550 प्रशिक्षुओं के अभिमुखीकरण समारोह में अकादमिक लैब का अवलोकन कर प्रशिक्षुओं से संवाद करेंगे। संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज से 10 सितंबर तक समरसता संकल्प अभियान और समरसता यात्रा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। राजधानी भोपाल के आरसीवीपी नरोना प्रशासन और प्रबंधकीय अकादमी में आज विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के सर्वांगीण उत्थान, आजीविका संवर्धन, सामाजिक सुरक्षा के लिए एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:01 हैं। ये समय होता है महिला कार्यक्रम का। आज का महिला कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है। सुनते हैं महिला कार्यक्रम।

श्रोता बहनों नमस्कार। बारिश की रिमझिम फुहारों के साथ हम लेकर आए हैं खास आपके लिए आपका अपना पसंदीदा चहेता कार्यक्रम महिला सभा। बहनों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका कार्यक्रम में। आज आपके साथ हूँ मैं आपकी सखी सुधा मिश्रा। बहनों बारिश का मौसम हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन बारिश के ये दिन अपने घरों में सफाई भी बहुत मांगते हैं, तो हमारा काम भी निश्चित रूप से बढ़ता है। सफाई अगर न हो तो इस मौसम के जीव जंतु हमें परेशान करते हैं और तमाम तरह की बीमारियों के हम शिकार हो जाते हैं। और इसी समय खास प्रजाति जो मच्छरों की है ये भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मच्छर हमें काटते भी बहुत बुरा हैं और बीमारियाँ भी बड़ी बड़ी दे जाते हैं। इसी से याद आया बहनों कि आज विश्व मच्छर दिवस भी है, तो मच्छरों से बचाव के उपाय तो करके ही रखिए बहनों, वरना तो बीमारियों को घर बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। बहनों कहते हैं ना, बीमारी बताकर नहीं आती, और अगर आपने अपने स्वास्थ्य के लिए अलग से

बजट नहीं बनाया है तो परेशानी बहुत बढ़ सकती है। तो बहनों, आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसी ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना की, जिसका उद्देश्य है देश के ज़रूरतमंद परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, और अगर किसी को गंभीर बीमारी है तो उसकी आर्थिक चिंता को कम करना। बहनों, होता भी है ना कि अगर कोई अचानक बीमार पड़ जाए या अस्पताल में भर्ती होना पड़े तो इलाज का खर्च एकदम बोझ बन सकता है। ऐसे में आयुष्मान भारत योजना पात्र परिवारों के लिए बड़ा सहारा बनती है। तो चलिए पहले हम थोड़ा समझें कि आयुष्मान भारत योजना क्या है। बहनों, आयुष्मान भारत भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पात्र परिवारों के सदस्यों की संख्या या उनकी उम्र पर सामान्यतः कोई सीमा नहीं है। यानी अगर परिवार में कई सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं, तो वो इस योजना के दायरे में आ सकते हैं। पात्र परिवारों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा मिलती है। अब 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक, उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसी भी हो, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कवरेज के पात्र हैं। इस योजना की एक खास सुविधा है कैशलेस उपचार। बहनों, जब भी हम इस सुविधा के लिए आवेदन करें तो इस बात का भी खास ख्याल रखें कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने दस्तावेज या OTP बिना सोचे समझे ना दें। योजना की जो भी हमको जानकारी चाहिए उसके लिए आधिकारिक माध्यमों का ही हम उपयोग करें। बहनों, स्वस्थ रहना हम सभी की पहली प्राथमिकता है। सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सही समय पर सही जानकारी किसी भी परिवार के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। इसीलिए हमारा प्रयास होता है हम आपको सभी समसामयिक जानकारियों से अवगत कराते रहें। तो बहनों, बातें बहुत की हमने, अब समय है एक खूबसूरत से गीत का। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: बहनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य वार्ता। आज की हमारी इस भेंट वार्ता का विषय है खूबसूरत चेहरा और आपके दांत। इस विषय पर विषय विशेषज्ञ डॉक्टर साकेत जैन से बातचीत कर रही हैं डॉक्टर आशा पारे। तो सुनते हैं यह भेंट वार्ता।
1: तू बोल या ना बोल, तेरे न बोलने का गम नहीं, बस एक बार मुस्कुरा दे, ये बोलने से कम नहीं। तो बहनों, आपकी भी यही ख्वाहिश है कि हमारे चेहरे के साथ साथ हमारी मुस्कुराहट भी बहुत खूबसूरत लगे, लेकिन उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि दांतों की खूबसूरती को बरकरार रखा जा सके। और आपकी दांतों की खूबसूरती बरकरार रहे, इसीलिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर साकेत जैन को। आप दांतों के स्पेशलिस्ट है और ख़ास तौर पर टेढ़े मेढ़े दांतों के सुपर स्पेशलिस्ट है। तो आप हमारी बहनों को बताएंगे किस तरह से दांतों को खूबसूरत रखा जा सकता है। डॉक्टर साकेत जैन, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि चेहरे की खूबसूरती में दांतों का बहुत योगदान है, तो इनकी खूबसूरती को हम कैसे कायम रख सकते हैं?
2: जैसे कि मैडम, कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि हमें ब्रश दिन में दो बार करना है चाहिए। रात में ज़्यादातर ब्रश लोग नहीं करते हैं। रात में ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं रात भर में कीटाणु वो सारी चीज़ें खराब कर चुके होते हैं। सवेरे ब्रश करना तो है ही है, लेकिन रात में ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उंगली का प्रयोग ना करें, ब्रश ही यूज़ करें, क्योंकि पायरिया जैसी बीमारी जो होती है, जैसे मुँह से खून आता रहता है, दांतों के बीच से खून आता रहता है, वो प्रॉब्लम ज़्यादा, वो परेशानी ज़्यादा इसलिए होती है कि हम उंगली का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें एक ब्रश ही यूज़ करना चाहिए और हर 3 महीने में बदलते रहना चाहिए।
1: तो क्या उंगलियों का प्रयोग करने से कुछ इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है?
2: जी मैडम, उंगलियों से प्रॉब्लम ये है कि उंगली हर जगह पहुंच नहीं पाती है।
1: अच्छा।
2: तो पीछे के दांत की सफाई अच्छे से नहीं हो पाती
1: जी,
2: है। पायरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोई दर्द नहीं रहता, सिर्फ दांत हिलने लगते हैं उम्र के साथ साथ और खून आने लगता है।
1: जी हाँ। अब डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है कि दांतों के बारे में ज़्यादातर लोगों का ध्यान तब जाता है जब या तो बच्चों के दांत खराब हो चुके रहते हैं या फिर उनमें कीड़ा लग जाता है। तो बच्चों के लिए भी हम यही जानना चाहते हैं कि किस आयु में दांतों पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए।
2: जी देखिए, जब से दूध के दांत निकलने शुरू होते हैं
1: जी,
2: तब से हमें दांतों के बारे में सावधानी बरतनी चाहिए। और
1: अच्छा।
2: दूसरी बात है कि जैसे दांत अगर आड़े तिरछे जाने लगे हों, लोगों की धारणा होती है कि जब ये पूरे पक्के दांत आ जाएं उसके बाद ही कराएं, ऐसा नहीं है। 7 साल की उम्र से हम ये दांतों के बारे में, हमारा जो तरीका है उसको ठीक रखने का, ये करने का, हम शुरू कर सकते हैं।
1: अच्छा, मतलब बच्चों को बचपन से ही हम सही आदत डालें
2: जी जी
1: दांतों के बारे में,
2: और उनको नियमित चेकअप कराते रहें। एक
1: अच्छा।
2: सिंपल उदाहरण ऐसा है, एक सादा उदाहरण कि जैसे हमारी गाड़ी है, हम उसको हर 3 महीने 4 महीने में सर्विसिंग कराते हैं, लेकिन हम अपने दांतों के प्रति कभी ध्यान नहीं देते।
1: हाँ, जब तक
2: तकलीफ ना हो
1: तक,
2: जब तक हम दवाइयां हम लेते रहते हैं मेडिकल स्टोर से खरीद के, जब बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो तब हम जाते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
1: बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। तो मतलब हर आयु

0: में दांतों का ध्यान रखना जरूरी। हम ये देखते हैं कि छोटे बच्चों के दांत कई बार बहुत बड़े निकल रहे हैं या टेढ़े मेढ़े निकल रहे हैं, तो क्या उसी समय उसका इलाज जरूरी है?
1: देखिए, पहले तो उसका कारण होना पता होना चाहिए। टेढ़े मेढ़े दांत इसलिए निकलते हैं कि आज के समय में जो हम खाना खाते हैं वो बिल्कुल पहले के ज़माने में, जैसे पहले गन्ना चबाते थे, ये करते थे, वो चीज़ें अब नहीं रहती हैं। अब सारा रिफाइंड खाना खाया जाता है जिसमें हमें ज़्यादा मुँह चलाना ना पड़े। और एक हेरिडिटरी फैक्टर जिसे हम कहते हैं वो होता है, जैसे अगर माँ के दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो बच्चे के टेढ़े मेढ़े होंगे ही होंगे।
0: अच्छा,
1: एक कारण ये है। दूसरा ये होता है कि जिस टेढ़े मेढ़े दांत बच्चा बोले, माँ बोलेगी कि बचपन में तो दांत एक से लाइन से थे लेकिन बड़े में आगे पीछे हो गए। उसका भी कारण ये है कि जबड़े का साइज और दांत का साइज मैच नहीं करता है।
0: अच्छा।
1: तो हम उसका ट्रीटमेंट अगर हम जल्दी शुरू कर दें, 7 साल की उम्र से अगर हम चालू कर दें तो बहुत अच्छे से हो सकता है और उसके बाद में इतना कुछ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: सामान्य तौर पर लोगों का ये सोचना होता है कि बच्चे के दूध के दांत है ये तो टूट जाएंगे और इसकी जगह पर दूसरे जो दांत आएंगे वो शायद अच्छे आए, इसलिए भी ट्रीटमेंट में देर करते
1: हैं। हाँ, वो एक धारणा बनी रहती है, लेकिन अगर हम दूध के दांत को ही अगर सही डायरेक्शन में आगे आने दें और हम उस समय से ही जगह बना के रखें पक्के दांत के लिए, तो दांत जो है पक्के वाले बहुत अच्छे आएंगे।
0: मतलब दूध के दांतों से ही सुरक्षा का प्रबंध शुरू कर देना चाहिए।
1: दूध के दांत में अगर जैसे कीड़ा लगा है तो वही कीड़ा फैलते फैलते पक्के दांत को खराब कर देता है।
0: अच्छा अच्छा, मतलब शुरू से ही दांत फिर खराब ही आते हैं।
1: जी,
0: बहुत सही जानकारी दी, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम लोग इस तरह की भ्रांतियों का शिकार रहते हैं और सही देखभाल नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात ये देखी गई है कि कई बार हमारी बहनों के दांत जो है टेढ़े मेढ़े रहते हैं और उन्हें बोलने में और मुस्कुराने में भी बहुत तकलीफ होती है, ऐसा लगता है कि कहीं दांत दिख गए तो चेहरा खराब दिखने लगेगा, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है?
1: जी देखिए, अब ये जो तार का दांतों पे अगर हम तार लगाने का या तार कसवाने का जो लोग बोलते हैं इसको ब्रेसेस बोलते हैं, ये लगाने की कोई उम्र नहीं है।
0: अच्छा,
1: आज के ज़माने में हम 50 साल 55 साल की महिलाएं जो कभी अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाई उनका भी ट्रीटमेंट करते हैं।
0: अच्छा।
1: और उम्र इसलिए अब नहीं फैक्टर है या इम्पॉर्टेंट वो कारण नहीं बचा है, क्योंकि अब नई जो टेक्नोलॉजी आ गई है वो इतनी एडवांस है कि उनको कोई तकलीफ नहीं होती और ये किसी भी उम्र में किया जा सकता है।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि कई बार ये होता कि उम्र के ही झिझक के कारण कि अब इस उम्र में क्या ट्रीटमेंट लेना, इसलिए महिलाएं नहीं जा पाती। तो बहनों, ये आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी है कि किसी भी उम्र में आप जा सकते हैं डॉक्टर के पास में, अपने दांतों की खूबसूरती के लिए। अब डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक बात और मैं जानना चाहूंगी कि जैसे आपने जो तार कसने वाली बात बताई, तो ये तार क्या बाहर निकले हुए दांतों के लिए ही कसना जरूरी है या जैसे दांतों के बीच में बहुत गैप है उसके लिए भी है?
1: नहीं, गैप के लिए तो और ज्यादा जरूरी। देखिए, निकले हुए तो एक चीज है कि जो बाहर दिख रहा है, हमारे अंदर कई ऐसे लोग होते हैं जो खाना को बराबर से चबा नहीं पाते क्योंकि दांतों में जो गैप है उसमें खाना फंसता है, तो उसके लिए भी ये तार लगाना बहुत जरूरी है। आज के जमाने में इतना एडवांस हो गया है, तार ऐसे वाले आ गए हैं जो दिखे ही ना, जो 4 फीट के दूरी से अगर कोई देखेगा तो उसको समझेगा ही नहीं कि तार लगे हुए हैं।
0: अच्छा।
1: ये खासकर उन लोगों के लिए जो काम करते हैं या जो जिनको लगता है कि नहीं, तार अभी इस उम्र में लगाए तो थोड़ा सा शर्म आती
0: अच्छा
1: है,
0: नहीं दिखेगा।
1: जी, उनके लिए अब दांत के कलर के तार आ गए हैं।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। और डॉक्टर साहब, जो आपने कहा कि गैप वाली जगहों पर, तो क्या गैप वाली जगहों पर भरने के लिए फिर दूसरे दांत लगाए जाते हैं?
1: नहीं, ये तार की मदद से हम क्या करते हैं, दांत को, ये ट्रीटमेंट जो चलता है तार का, ये कम से कम 1 से 1.5 साल के बीच चलता है।
0: अच्छा।
1: पेशेंट को या उनको सिर्फ 1 महीने में 1 बार डॉक्टर के पास जाना होता है इसको टाइट करने के लिए, वायर को टाइट करने के लिए, और धीरे धीरे धीरे हम ये दांत के गैप को बंद करते चले जाते हैं।
0: अच्छा।
1: बिना कोई नकली दांत लगाए हुए, बगैर कोई, ये बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से ट्रीटमेंट होता है और इसमें कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बहुत धीरे होता है क्योंकि प्राकृतिक है इसलिए धीरे करना पड़ता है।
0: जबड़ों में कसाव आता
1: है। जी जी, ये इसलिए 1.5 साल लगता है, ये 1 मिलीमीटर दांत 1 महीने में मूव होता है, हिलता है।
0: थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन खूबसूरती तो बढ़ेगी। जी, अब डॉक्टर साहब, एक मुख्य बात जो आती है वो व्यय की आती है कि कितना खर्च आएगा इस पे?
1: जी देखिए, पहले लोगों के बीच में धारणा थी कि ये बहुत ही खर्चीला है या ये सिर्फ बड़े शहरों में ही हो सकता है, पर अब ये गांव-गांव हम जाते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए और इसमें खर्चा भी अब आज के जमाने के हिसाब से बहुत ही कम हो जाता है और इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है, जैसे आप महीने का अपन 500 रुपए ले लें तो महीने के 500 रुपए किसी को अखरता नहीं है। अगर हम बोलें कि आप एक बार में 15,000 दीजिए तो वो उनको नहीं जमता।
0: जी, जी।
1: तो ₹500 महीने के ऐसे इंस्टॉल, क्योंकि ट्रीटमेंट लंबा चलता है साल
0: जी
1: भर 1.5 साल,
0: जी
1: तो
0: हाँ
1: उस हिसाब से इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की जा
0: जी,
1: सकती है।
0: मतलब बहुत आसानी से दांतों को खूबसूरत बनाया
1: जी
0: जा सकता
1: जी
0: है।

0: ये तो बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब, और निश्चित ही हमारी बहनें इसका लाभ उठाएंगी। और इसके अलावा कोई ऐसी बात जो?
1: नहीं, मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि एक तो पायरिया का विशेष ध्यान रखें, हर 6 महीने में आप अपने दांत के डॉक्टर को जरूर दिखाएं, 6 महीने में एक बार इलाज कराना या 6 महीने में एक बार चेकअप कराना जरूरी है,
0: जी,
1: उससे
0: जी.
1: हमें पता चलेगा, और दांत की सफाई बराबर रखें।
0: जी डॉक्टर साहब, एक बात और मेरे ध्यान में बार बार आ रही है कि कई लोगों के दांत जो बहुत ज्यादा बाहर निकले रहते
1: जी.
0: हैं, तो उन दांतों के लिए क्या किया जा सकता है?
1: देखिए क्या होता है, हमारे मुंह में उपदाड़ करके होती हैं, जो 8 उपदाड़ें होती हैं, उन उपदाड़ों का कोई ज्यादा विशेष प्रयोग नहीं होता, ना खाने में ना कुछ।
0: जी.
1: जब ये दांत बहुत ज्यादा बाहर हों तो हम एक एक उपदाड़ हर जगह से निकाल के ये आगे के दांत पूरे पीछे ले लेते हैं। जो ट्रीटमेंट ये चलेगा ये 1 से 1.5 साल चलता है।
0: अच्छा,
1: और ये पूरे के पूरे दांत अंदर हो सकते हैं, उनकी
0: निकालने की आवश्यकता नहीं होगी?
1: नहीं,
0: अच्छा,
1: ये पूरी जगह भर जाएंगी, उनकी जो हंसी है या जो मुस्कुराहट है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी उसके बाद, उनको शर्म नहीं आएगी कि मुंह बंद करते हैं तो अलग से दिखता है।
0: जी जी डॉक्टर साहब, एक बात और देखने में आई है कि कई बार दांतों के ऊपर दांत चढ़े रहते हैं
1: जी,
0: उसके कारण भी मतलब कहीं ना कहीं खूबसूरती प्रभावित होती
1: हाँ,
0: है। कई बार ये लोगों का ये सोचना रहता है कि बहुत भाग्यशाली रहते हैं जिनके दांत पे दांत चढ़े होते हैं, इसलिए वो उपचार नहीं करवाते, तो ये भी एक भ्रांति है, तो इसका निवारण कैसे हो सकता है?
1: देखिए दांत के ऊपर दांत जब होते हैं तो पहले जमाने कहा जाता था, लेकिन अभी इलाज कराना जरूरी है। उसका कारण एक ये है कि वहां पे अच्छे से सफाई नहीं हो सकती। जब दांत आड़े तिरछे होंगे तो पायरिया की प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाएगी, और ये परेशानी से अगर पूरा तरह से निजात पाना है तो दांत दिखने के लिए भी नहीं और सफाई के उससे भी अच्छे होने चाहिए। तो वो तार लगा के एक से करे जा सकते हैं, एक लेवल पे करे जा सकते हैं।
0: अच्छा, मतलब जो ऊपर चढ़े हुए दांत है उनको लेवल में ला सकते हैं?
1: जी बिल्कुल,
0: उनको निकालने की आवश्यकता
1: कोई जरूरत
0: नहीं
1: है। आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है मैडम इस फील्ड में, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है इसको हम लोग ऑर्थोडोंशिया बोलते हैं। ऑर्थोडोंशिया का मतलब जरूर समझिएगा हमारी बहनें, क्योंकि ऑर्थो मतलब होता है स्ट्रेट सीधा, और डोंशिया मतलब दांत। तो आज के जमाने में कोई भी परेशानी हो, दांत बाहर हो, आगे पीछे हो, ऊपर नीचे हो, हम उन सबको बराबर कर सकते हैं।
0: जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है डॉक्टर साहब, और निश्चय ही हमारी बहनों को इन सब का बहुत ही लाभ मिलेगा। तो बहनों, आपकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए और उसको और अधिक बढ़ाने के लिए डॉक्टर साहब ने जो जो बातें बताई है उसको मनन कीजिए, खर्च की चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपको एक साथ नहीं किश्तों में व्यय करना है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अपने दांतों पर अवश्य ध्यान दीजिए। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत ही सुंदर ढंग से आपने हमारी बहनों की दांतों से संबंधित समस्याओं का निवारण किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैम।
2: बहनों, अभी आपने ये भेंटवार्ता सुनी, विषय था खूबसूरत चेहरा और आपके दांत। इस विषय पर डॉक्टर साकेत जैन से बातचीत कर रही थी हमारी सहयोगी आशा पारे। बहनों, हमारा देश विविधताओं का देश है। हमारे यहाँ अलग अलग धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग रहते हैं, और सभी अपने अपने पर्व त्योहार पूरी श्रद्धा और पूरे उत्साह उल्लास से मनाते हैं। इनमें से ही एक है पारसी समुदाय का एक महत्वपूर्ण पर्व खोरदाद साल, जिसे खोरदाद जयंती के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। खोरदाद का संबंध पूर्णता, समग्रता और स्वास्थ्य से माना जाता है। खोरदाद साल के अवसर पर पारसी समुदाय के लोग विशेष रूप से अग्यारी और आतिश बहराम जैसे अग्नि मंदिरों में जाकर प्रार्थना करते हैं। इस समय कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं और समुदाय के लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। पारसी समुदाय में अग्नि को पवित्रता और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस पर्व पर अग्नि के समक्ष प्रार्थना और धार्मिक विधियों का विशेष महत्व होता है। खोरदाद का संदेश केवल धार्मिक आस्था तक ही सीमित नहीं है, यह हमें जीवन में शुद्ध विचार, अच्छे कर्म, स्वास्थ्य और संतुलन का महत्व भी याद दिलाता है। पारसी धर्म की प्रसिद्ध शिक्षा अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म मानव जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। बहनों, अपने देश में पारसी समुदाय संख्या में भले ही छोटा है, लेकिन देश के सामाजिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास में उसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अपनी समृद्ध परंपराओं और मूल्यों को संजोते हुए पारसी समुदाय ने भारतीय समाज की विविधताओं को और अधिक समृद्ध किया है। तो बहनों, खोरदाद साल के पावन अवसर पर हम भी यही संकल्प लें कि हम अपने विचारों में सकारात्मकता, अपनी वाणी में मधुरता और अपने कर्म

0: चोर
1: भूल गए
2: जानी मेरा नाम
1: अच्छा
2: चोरी मेरा काम जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडल बाज
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: चार का मौसम
1: बेशरम

और बहनों, इस गीत के साथ ही समय हो गया है आपसे विदा लेने का। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, साथ ही साथ जागरूक और सचेत रहिए। समय की मांग के अनुसार ही अपने विचारों में परिवर्तन लाते चलिए। आज बस इतना ही। अनुमति दीजिए सुधा मिश्रा को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
4: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
5: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
3: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
4: आकाशवाणी है ना,
6: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
4: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
3: शाम सुहानी हो,
7: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
4: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
3: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
4: सफर में
3: आपके साथ
4: आकाशवाणी।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:30 होने को हैं और ये समय होता है लोक संगीत के कार्यक्रम का। आज के लोक संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है। कलाकार हैं दिव्या तिवारी और साथी।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे दिव्या तिवारी और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी और अगला कार्यक्रम यानी सुगम संगीत का कार्यक्रम, ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है। कलाकार हैं दीप्ति मिश्रा और उनके साथी।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। कलाकार थीं मिश्रा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2 बजे हैं और लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक गीत जिसको हमने लिया है आपके दीवाने से। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, राजेश रोशन का संगीत है, सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्ती है बड़ी, दोस्तों दोस्ती के लिए शुक्रिया, तुमको खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ।
1: अगला गाना लिया है हमने फिल्म कस्मे वादे से, एक बार आवाजें किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की हैं। गुलशन बावरा ने इस गाने को लिखा है, आर डी परमन का संगीत है। सुनिए ये गीत।

0: कस्मे वादे फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:10 होने गए। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रदेश में किसानों को रबी सीजन के लिए खाद उपलब्ध कराने और कृषि योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एग्रीस्टिक पंजीयन, पैक सदस्यता और अग्रिम खाद उठाव अभियान आज से शुरू हो गया है। यह अभियान 15 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान किसानों की फार्मर आईडी बनाई गई और सुधारी जाएगी, पैक्स की सदस्यता बढ़ाई जाएगी, किसानों को पहले से खाद लेने की सुविधा दी जाएगी, साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड बनाने और 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी की जाएगी। कृषि विभाग के अनुसार खाद बीज लेने, फसल बीमा, कृषि यंत्रों पर अनुदान और ई मंडी में फसल बेचने के लिए फार्मर आईडी जरूरी है। किसानों से अभियान का लाभ उठाने की अपील की गई है। सीहोर में प्रतिबंध के बावजूद एनालॉग पनीर बनाए जाने का मामला सामने आया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने बुधवार देर रात पचामा गांव स्थित एक डेयरी पर कार्रवाई कर करीब 25 क्विंटल एनालॉग पनीर जब्त कर सील किया। जांच में पनीर के पैकेट पर कंपनी और उत्पाद का नाम नहीं होने सहित लेबलिंग में कई अनियमितताएं मिली हैं। मौके से बड़ी मात्रा में नमक और शक्कर भी बरामद हुई। अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में 12 अगस्त से एनालॉग पनीर के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध है। टीम ने पनीर के नमूने लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत सती गेट से गोपाल मंदिर तक मार्ग चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कंठाल चौराहा और सती माता मंदिर द्वार के प्रस्तावित विकास कार्यों की डिजाइन भी देखी। मुख्यमंत्री ने भगवान श्री चिंताहरण गणेश के दर्शन कर आशीर्वाद लिया।
1: और उज्जैन में हमारे अपने धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से जो बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं, उनके प्रबंधन की दृष्टि से मार्ग चौड़ीकरण भी देखने जा रहा हूं। साथ साथ सिंहस्थ 2028 में जब कुंभ मेले का सिंहस्थ का आयोजन होगा, ऐसे में 30 से 40 करोड़ लोग जो आने वाले हैं, उनके प्रबंधन के लिए जो जिस प्रकार से यहाँ तैयारियाँ की जा रही है, मैं अपनी तरफ से जनता से भी इस बात के लिए जनता का आभार मानना चाहूँगा, जिन्होंने स्वेच्छा से अपने बड़े बड़े चौड़ीकरण के लिए प्रस्तावित मार्गों पर अपने स्वयं के निवास, व्यवसाय के संस्थान इत्यादि स्थान से अतिक्रमण हटाते हुए सभी धर्मों के लोगों ने जो सहयोग किया, मैं उनका आभार भी मानता हूँ।
0: कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने उन्हें निर्माण कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव पद पर पुनः निर्वाचित होने पर मध्य प्रदेश के अधिवक्ता प्रज्ञा बघेल को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रज्ञा बघेल 18 अगस्त को नई दिल्ली में हुए चुनाव में सचिव पद पर निर्वाचित हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पद पर दोबारा निर्वाचित होने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला अधिवक्ता के रूप में उन्होंने प्रदेश का मान बढ़ाया है। उन्होंने प्रज्ञा बघेल के सफल कार्यकाल की कामना की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज धार जिले के पीथमपुर के सागौर में प्रताप समूह के एडवांस ऑप्टिकल फाइबर और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन और निरीक्षण किया। प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय है। अगले 24 घंटों में टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 8 इंच तक बारिश हो सकती है। दतिया, भिंड, निवाड़ी, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, कटनी, मैहर और सतना में भी भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग के अनुसार 20 से 24 अगस्त के बीच बारिश का असर मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर पड़ सकता है। भारी बारिश के कारण सतना के चित्रकूट में गुप्त गोदावरी की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की बैठक शहडोल में आयोजित की गई। बैठक में जिले की भौगोलिक परिस्थितियों, जनसंख्या, क्षेत्रफल सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। शहडोल में बीते 3 दिन से लगातार पानी गिर रहा है। कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश का असर आम जनजीवन पर पड़ा है। नदी नाले उफान पर हैं। आगरमालवा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कल हुई जिला पोषण समिति की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिले को कुपोषण मुक्त बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जबलपुर में 3 दिवसीय पारंपरिक दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन 2 शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तमिलनाडु के कोवलम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जौली तथा गायत्री गोपीचंद BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमे ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमे और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: श्री सिंह ने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है।
1: हमारी मेरीटाइम लाइफलाइंस बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इंपरेटिव भी है। इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है, इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है।
0: श्री कोइजुमे ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक जहाज में चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है, जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों नेताओं ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्र समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु के कोवलम में शुरू हो गई है। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की जल्द जांच और सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चौथी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति के पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय इसके केवल दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह संसद से पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्रविरोधी है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टिकरण का रास्ता अपना रही है।
3: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
0: वंदे मातरम पर कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 1937 से वंदे मातरम का गायन करती आ रही है। नई दिल्ली में श्री वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए भावना का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जन कल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव यशवीर सिंह ने कहा है कि भारत के निर्यात में प्रगति मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी इस्तेमाल, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, आपूर्ति श्रृंखला को देश में विकसित करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने ये बात भारतीय उद्योग विनिर्माण संघ के तीसरे सम्मेलन में कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
4: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलकर दिल्ली के अंदर 70 लाख पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
0: कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया।
5: एक पेड़ माँ के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50 लाख पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है। हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
0: जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 2 मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और 1 सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व तथा पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए जातीय संसद में मतदान हो रहा है। मतदान 5 बजे तक चलेगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद से होगा। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
6: नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। खेल के बाद मीडिया से बातचीत में गायत्री और त्रिशा ने कहा कि वे मैच के शुरुआती 2-3 अंकों में ही विपक्षी खिलाड़ियों की रणनीति समझ गई थी। उन्होंने बताया कि पहले गेम के दूसरे हिस्से में उन्होंने आक्रामक खेल अपनाया और यही रणनीति दूसरे गेम में भी जारी रखी, जिसका उन्हें फायदा मिला। सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सिंधु का सामना चीन की वांग झी यी से होगा। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनेदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी चीन के गुओ शिन वा और चेन फांग हुई से खेलेगी। और हॉकी में FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलेगी। ये मैच अम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा।
0: घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में तेजी बनी रही। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 668 अंक बढ़कर 77,577 जबकि निफ्टी 169 अंक की बढ़त के साथ 24,248 पर कारोबार कर रहा था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु के कोवलम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अंतर्राज्यीय विवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जॉली तथा गायत्री गोपीचंद BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश में मैं हूं आपके साथ जावेद खान। और पहला गाना हमने लिया है, फिल्म का नाम है ललकार, और आवाजें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, लिखने वाले हैं कालका से शुभचंद्र बजाज, चंद्रमोहन, इंद्रमोहन, बिट्टा बजाज और उनके परिवार के दूसरे सदस्य, सेक्टर 67 मोहाली पंजाब से टीएस मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, लिखने वाले हैं अभिजीत गायकवाड़ राही, सरिता गायकवाड़, प्रिंस एकांश गायकवाड़, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गायकवाड़, प्रतीक, प्रणीता गायकवाड़, अर्जुन गायकवाड़ टुक टुक, आकार हाइट्स बहादुरपुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गायकवाड़, सुमित गायकवाड़, कुमारी ध्वनि और उनके परिवार के सदस्य। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म मधुमति से, आवाज़ें हैं मुकेश और साथियों की, शैलेंद्र ने इस गाने को लिखा है, सलील चौधरी का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है नेपाल पैलेस सागर से, तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषि का रॉबिन और उनके परिवार के दूसरे सदस्य, डोगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजबिये और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। और इसी गाने को पसंद किया है जयराज प्लॉट राजेश कोर्ट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट ने।

अगला गाना लिया है हमने किशोर कुमार की आवाज़ में, और दूसरी आवाज़ है इसमें लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है खुददार। इस गाने को पसंद किया है आसिफ अली सिद्दीकी छबड़ा राजस्थान से, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो ने, और गौतम नगर ज़िला नादेड़ से प्रभाकर जौंदले, आरती जौंदले और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया ने। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म खुददार से, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। गुलशन बावरा ने इस गाने को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है शाहू नगर यवतमाल से, राहुल मनवर, सल्ला मनवर, विशाल मनवर, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, स्वीट बेबी प्रियांशी। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून, डोंगराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा दानिश अंसारी, और सरीमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, जेल रोड दिल्ली से बाबूलाल दीवाना और दिव्या भारती। सुनते हैं ये गीत।

आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म धर्मवीर का एक गाना, आवाजें हैं मुकेश और मोहम्मद रफी की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, और इस गाने को पसंद किया है दतरंगी छत्तीसगढ़ से लिखने वाले हैं भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू और उनके सदस्य, ग्राम राजोनिया जिला जालौन यूपी से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श चंसोलिया सार्थक और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। कबाई बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, हेमलता श्रीवास्तव, हेमानी हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव और उनके परिवार के दूसरे सदस्य।

0: इसी गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:58 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय

0: मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज धार जिले के पीथमपुर के सागौर में प्रताप समूह के एडवांस ऑप्टिकल फाइबर और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन और निरीक्षण किया। प्रदेश में किसानों को रबी सीजन के लिए खाद उपलब्ध कराने और कृषि योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एग्रीस्टेक पंजीयन पैक सदस्यता और अग्रिम खाद उठाव अभियान आज से शुरू हो गया है। यह अभियान 15 सितम्बर तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत सती गेट से गोपाल मंदिर तक मार्ग चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कंठाल चौराहा और सती माता मंदिर द्वार के प्रस्तावित विकास कार्यों के डिजाइन भी देखी। सीहोर में प्रतिबंध के बावजूद एनालॉग पनीर पाए जाने का मामला सामने आया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने बुधवार देर रात पचामा गांव स्थित एक डेयरी पर कार्रवाई कर करीब 25 क्विंटल एनालॉग पनीर जब्त किया है। और प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय है। अगले 24 घंटों में टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर और दमोह में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। आइए हम आपको बता दें शाम की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। शाम 5:02 पर आप सुनेंगे युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी। आज की युवाणी आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं 5:33 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा 6:00 और 6:30 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। 7:30 पर आप सुन सकते हैं किसान वाणी और 7:25 पर आप सुनेंगे बुंदेली समाचार। 8:00 के समय है कार्यक्रम सुर्खियों में और 8:15 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत 9:30 पर भी आप सुन सकते हैं और आपकी फरमाइश कार्यक्रम रात 10:00 होगा। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में आज हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर प्रभा आत्रे का गाया ख्याल गायन, राग होगा मधुमती। समय है 10:30। ये थे आज की शाम की सभा में प्रसारित होने वाले आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल के मुख्य कार्यक्रम।

हम आपको याद दिला दें, इस वक्त हमारी घड़ी में 3:01 हो चुका है। अब हमारा मीडियम वेव पर प्रसारण कुछ देर के लिए बंद होता है। अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 5 बजे से आप मीडियम वेव पर प्रसारण पुनः सुन सकते हैं। इस बीच डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

टीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सभी का स्वागत है और लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत के कार्यक्रम में दिव्या तिवारी और साथियों के गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

अभी आप लोक संगीत और सुगम संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थे। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण।

इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी, और दूसरी आवाज़ है लता मंगेशकर की। दोनों की आवाज़ का एक बहुत ही खूबसूरत गाना अनुराग फिल्म का ये गाना है। एसडी बर्मन का संगीत है, आनंद बख्शी का संगीत है। सुनिए ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने मुकेश की आवाज़ में, इसको हमने लिया है फिल्म आंगन से। सुलक्षणा पंडित की आवाज़ भी इस गाने में है। इंदिवर ने इस गाने को लिखा है। सोनी कोमी का संगीत है, सुनिए ये गीत।

ये गीत था बीवी हो तो ऐसी फिल्म का गाना, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। साहिर ने इस गाने को लिखा था, सोनी कोमी का संगीत था। अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म बॉम्बे टू गोवा का। राजेंद्र कृष्ण ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत है। सुनिए ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है चौकीदार। राजेंद्र कृष्ण ने इस गाने को लिखा है, मदन मोहन का संगीत है, सुनिए ये गीत।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं पुरानी धड़कन फिल्म का एक गाना, आवाज मोहम्मद रफी की है। रवि ने इस गाने को लिखा है और रवि का ही संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक बार मुस्कुरा दो फिल्म का एक गाना। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों की, एस एच बिहारी ने इस गाने को लिखा है, ओपी नैयर का संगीत है। यह है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण डीटीएच के ऑडियो चैनल पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 3:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अशोकनगर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में सहभागिता कर किसानों को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी साझा की। प्रदेश में किसानों को रबी सीजन के लिए खाद उपलब्ध कराने और कृषि योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एग्रीस्टेक पंजीयन पैक सदस्यता और अग्रिम खाद उठाव अभियान आज से शुरू हो गया है। यह अभियान 15 सितंबर तक चलेगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे गणेश उत्सव के दौरान धार्मिक पंडालों और झांकियों में बिजली साज सज्जा नियमानुसार ऑनलाइन अस्थायी कनेक्शन लेकर ही करें। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को प्रवेश का एक और अवसर प्रदान किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए अतिरिक्त कॉलेज लेवल काउंसलिंग सीएलसी चरण की अवधि 21 से 31 अगस्त बढ़ा दी है। और नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा ओकी और नाका निशी को सीधे सेटों में 21-16, 21-12 से हराया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नाटक, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक बुनियाद। लेखक हैं आजम अजीमुद्दीन और प्रस्तुतकर्ता

0: जापान की रक्षा मंत्री शिंजीरो कोई जूमी के बीच आज नई दिल्ली में बैठक हुई। दोनों नेताओं ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सिंगापुर में प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के प्रारूप के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह चेन्नई के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। वे आज पश्चिम बंगाल में कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। दिल्ली के उप राज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने राजधानी में आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी मोर्चों पर निर्बाध बहु एजेंसी समन्वय और समयबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में निर्मित 2,35,000 मकानों की चाबी लाभार्थियों को सौंपी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रुपये से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की। सड़क और परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 अन्य घायल हो गए। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड का सामना करेगी। मैच भारतीय नियमानुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार और अब हम आपको लिए चलते हैं अपने अगले कार्यक्रम की ओर, जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: नंदन वंदन अभिनंदन आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के इस अंक में हार्दिक अभिनंदन है। मैं गीतिका ओनियाल आप सभी का स्वागत करती हूं और आपसे वादा करती हूं कि हर बार की तरह आज का हमारा ये कार्यक्रम आपके दिलों में एक नई उम्मीद जगाने वाला है, क्योंकि हमारे लिए कोई कहीं मुस्तैद है, कार्यरत है, जो अपनी जान को अपनी हथेलियों में लेकर चलता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देश की सेवा में सर्वत्र अपना सर्वत्र न्योछावर किए आगे बढ़ रहा है, हर दिन हर रात। आपसे साझा करना चाहेंगे कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं शिव शंकर कुमार जी, जो इंस्पेक्टर हैं जनरल ड्यूटी सहस्त्र सीमा बल में, आजकल गैंगटॉक में कार्यरत हैं और इन्हें गैलेंट्री मेडल से भी सम्मानित किया गया है। और सबसे प्यारी और खूबसूरत बात आज के अंक की ये है कि ये सीधा गैंगटॉक से यहाँ पहुँचे हैं आकाशवाणी के स्टूडियोज में आपको अपनी यात्रा से अवगत कराने के लिए, रूबरू कराने के लिए। हर सिपाही हर ऑफिसर की अपनी यात्रा होती है, लेकिन उस यात्रा का गंतव्य सिर्फ देश सेवा होती है। तो देश सेवा को समर्पित हमारे आज के मेहमान शिव शंकर कुमार जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। शिव शंकर कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार SSB की ओर से आप सभी श्रोताओं को जय हिंद कहना चाहूँगा। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी से जुड़ने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं ऑल इंडिया रेडियो टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। SSB का मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुरक्षा को बनाए रखना है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारे SSB के सभी कार्मिक दिन रात पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपना काम कर रहे हैं। SSB हमारी इंडो नेपाल बॉर्डर, इंडो भूटान बॉर्डर के साथ साथ इलेक्शन ड्यूटी, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी को भी बखूबी अंजाम दे रही है। एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी टीम का।
0: जी इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी, आपने जिस तरह से व्याख्या की यहाँ पर SSB की, इससे ये साबित होता है कि आप देश के साथ साथ अपनी सेवाओं से, सेनाओं से कितना प्रेम करते हैं। और आज आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सहस्त्र सीमा बल का, उन तमाम सैनिकों का, उन तमाम अधिकारियों का जो कहीं ना कहीं अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी, आप कहते हैं ना कि अपने आत्मनोबल या आत्मबल तो हमें हमारी सेवाएं सेनाएं देती हैं, पर हम किस तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं वो भी सेनाओं के माध्यम से काबिल तारीफ है। अगर आपके व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो नन्ना मन
1: जी,
0: लंबी उड़ान, छोटे छोटे पंख, आपका जो जीवन है खासतौर पर आपके बचपन की बात की जाए तो किस तरह के बच्चे थे आप? क्या शैतान थे? और पढ़ाई में कितना मन लगता था? कैसा माहौल था घर में?
1: बचपन तो मेरा बिहार में सीतामढ़ी, जो एक बाजपट्टी पड़दौरा गांव है, वहाँ बिता है। मेरा परिवार का माहौल बहुत खुशनुमा माहौल था और हमेशा इनकरेजिंग मिलता था काम करने के लिए। शरारती बच्चे तो थे ही, लेकिन हमारे परिवार से हमें मेहनत और अनुशासन के प्रति हमेशा सजग रहने को सिखाया गया है
0: जी।
1: और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करने का भी एक हमारे पिताजी सिखाते थे कि पूरी ईमानदारी से कोई भी काम को करना है तो पूरी ईमानदारी से करना है, लगन के साथ करना है। तो वो हमारे अंदर हमेशा के लिए रह गया और आगे चल के हमारे जब भी हमारे प्रोफेशन लाइफ में भी वो काम किया है
0: जी। कहते हैं कि हमारा जो परिवेश है, हमारा जो परिवार है, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे विकास में। आज हम जो कुछ भी हैं अपने परिवार की वजह से और जो भी संस्कार आपको प्राप्त हुए वो देश सेवा में निहित है, नज़र आ रहे हैं। और आज जब आप अपनी वर्दी पहने यहाँ FM रेनबो के स्टूडियोज़, आकाशवाणी के स्टूडियोज़ में बैठे हैं, तो आपके माता पिता जिस वक्त आपको सुन रहे होंगे, घर परिवार वाले सुन रहे होंगे, वो इस बात की मिसाल दे रहे होंगे कि हाँ, हमारे बच्चे

0: ने अपने लिए नहीं अपने देश के लिए जो बेड़ा उठाया है काबिले तारीफ है। तो शिव कुमार जी, आप शिव शंकर कुमार जी, आप हमें ये बताइए कि कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको देश सेवा में इस पथ पर चलना है और SSB ज्वाइन करने का फैसला कैसे लिया?
1: मेरे लिए वर्दी हमेशा सम्मान और जिम्मेदारी की प्रतीक रहा है। मन में हमेशा ऐसी इच्छा थी कि फौज के प्रति, देश के प्रति कुछ करना है, तो ऐसा काम करे जो देश और समाज में अपना योगदान भी दे सके। इसी सोच को जब हमने ग्रेजुएशन पास किया तो सुरक्षा बल में जाने का फैसला किया। उसके बाद SSC की फॉर्म आई, उसमें मैंने पास करके और फिर SSB को ज्वाइन किया है। एक SSB एक ऐसा माध्यम रहा, एक ऐसा अवसर रहा जिसके देश सेवा के साथ साथ देश सेवा करने का पूर्ण मौका मिला
0: जी। और ये मौका आपके जीवन में एक सुखद अनुभूति लेकर आया, वर्दी पहनना, फिर देश सेवा में जितने भी ऑपरेशंस में आप कार्यरत रहे उनके माध्यम से कहीं ना कहीं ये अनुभूति ज़रूर हुई होगी कि अगर मैं सेना ना ज्वाइन करता तो ये मौका मुझे कहाँ मिलता, कहाँ मैं अपने देश का परचम लहरा पाता। तो ये सौभाग्य की बात है कि सेनाओं ने आपको चुना और सशस्त्र सीमा बल आपको बल दे रहा है आज, और आप इस बल से देश सेवा कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो ये बताइए कि आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के उपरांत आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, क्या प्रक्रिया रही, कैसे पहुंचे और कितने अटेम्प्ट्स किए, कितने अटेम्प्ट्स में आपको यह हासिल हुआ, क्या कुछ और भी करने की सोच रहे थे साथ साथ, या सिर्फ ये था कि फ़ौज में ही जाना है?
1: ठीक, ये मेरी पहली अटेम्प्ट ही थी और मैंने 2012 में ये SSB को ज्वाइन किया था और इसकी जो फॉर्म थी SSC के थ्रू आई और 2010 में इसका प्रोसेस शुरू हो गया था। पूरी भर्ती जो होती है वो फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, रिटेन होता है, इंटरव्यू होता है, सारी प्रक्रिया के चयन करने के बाद, पास करने के बाद मेरा चयन हुआ था। इसमें फिजिकल टफनेस के साथ साथ मेंटल टफनेस की भी परीक्षा होती है इसमें। अगर वो सारा चीज़ आप पास कर जा रहे हैं तो फिर आपका चयन हो जाता है। उस समय एक ही बात मन में था कि अगर मौका मिले तो मैं भी अपने इस काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ ये करूँगा
0: जी। तो वो कौन सा वर्ष था जब आपका चयन हुआ और चयन होने के बाद जब ये खबर आप अपने परिवार तक ले गए तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी?
1: ये 2012 में हुआ है। 2012 में हमें SSB ज्वाइन करने का मौका मिल गया था। परिवार के लिए तो ये बहुत खुशी और गर्व का विषय था, लेकिन एक छोटा सा वो भी था कि फौज में जा रहा है तो फौज में घर से दूर रहेगा। उनके मन में एक था कि घर से दूर रहेगा, लेकिन उनका हमेशा सपोर्ट रहा है कि हाँ चलो जो भी करना है अपने मन से ईमानदारी से करते रहना है, मुश्किल परिस्थितियों में भी ड्यूटी करना है तो उसके लिए भी परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने हमेशा साथ किया है, दिया है
0: और उसी साथ के चलते आप आज यहाँ तक पहुँच गए। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर तक का सफ़र आपने पूरा किया, इसके बारे में चर्चा ज़रूर करेंगे। ये भी बताएं कि जब आप घर परिवार के साथ साथ जब जिस जगह से आप संबंध रखते हैं, आपके नाते रिश्तेदार दोस्त, उन तक जब ये बात पहुंची कि हमारा दोस्त या हमारा परिवारजन अब SSB ज्वाइन करने वाला है, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? क्या कभी किसी ने ऐसा कहा कि आप जैसा बनना चाहते हैं, हम भी SSB ज्वाइन करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं देश की?
1: सभी के लिए ये, हमारे गांव वालों के लिए भी ये गर्व की बात था कि हमारे बीच का एक लड़का कोई जाकर फौज में भर्ती हो रहा है, वो सब के लिए गर्व की बात था। और एक तो आइडल बन ही जाता है गांव समाज के लिए कि हाँ कोई भी जाए तो वो उसके जैसा बनना है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि मेरे जैसा ही बनना है, सब अपने अपने क्षेत्र में काम करे वो ज़्यादा जरूरी है
0: जी। पर ऐसा तो ज़रूर होता होगा कि जब आप अपने घर जाते होंगे तो आपके अपने, आपके दोस्त, आपके परिवारजन, एक जमावड़ा सा लग जाता होगा और कहते होंगे सुनाओ ना कुछ किस्से कहानियाँ, क्या कुछ होता है SSB में, जहाँ जिस बटालियन के साथ जाते हो क्या कुछ खास हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बहुत उत्सुकता रहती है कि हमारे जो देश के जो वीर हैं ना कैसी ज़िंदगी जीते हैं। हम आम जनमानस बस आपके किस्सों को दोहराते हैं, लेकिन जब आपकी ज़ुबानी उनको सुनते हैं ना तो गर्व से सीना फूल जाता है। आज जिस कार्यक्रम के माध्यम से भी जितने लोग हमें सुन रहे हैं, संदेश आने हम तक पहुंच चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मन में जिज्ञासा रहती है कि कैसा जीवन जीते हैं। ये तो जानते हैं कि मुस्तैद रहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कोई ज़िंदगी ऐसी होती होगी जो हम नहीं जी पाते, और यही कारण है कि आज देश के युवा, भावी पीढ़ी फोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ऐसा होता होगा आपके साथ?
1: ये होता है, फौज ऐसी संस्था है जो एक जॉब नहीं देती, एक लाइफ देती है
0: जी,
1: ये पूरा जीवन देती है हमको। आप अगर आप इसमें जीना चाहते हैं तो पूरी लाइफ जो है वो देती है। और किस्से कहानियां तो चलते रहते हैं, घर पे जाते हैं तो जो भी किस्से कहानियां वो चलते रहते हैं, सभी उत्सुक रहते हैं कि कुछ तो बताए फौज में कैसे चलता है, क्या होता है नहीं होता है, ये सब तो चलते रहता है। और ड्यूटी के टाइम में ड्यूटी, और ड्यूटी जब नहीं रहती है तो हम लोग भी रिलैक्स होके रहते हैं और काम करते हैं
0: जी। लेकिन लक्ष्य, जिस लक्ष्य के लिए, जिसकी प्राप्ति के लिए आपने मेहनत की, वो लक्ष्य आपको प्राप्त हुआ, और लक्ष्य प्राप्ति के साथ साथ जैसे ही आप अपना एग्ज़ाम क्लियर किया, हर चरण में आप उत्तीर्ण हुए, पास हुए, उसके उपरांत तो ट्रेनिंग जो एक अहम हिस्सा रही, तो ट्रेनिंग का सफ़र कैसा रहा, कहाँ ट्रेनिंग हुई, और क्या आप ये मानते हैं कि इस ट्रेनिंग ने आपको पूर्ण रूप से तैयार कर दिया था सेवा देने के लिए?
1: मेरी पोस्टिंग सबसे पहले 2012 में हुई, जब मैं बेसिक ट्रेनिंग करने के लिए CTC सलोनीबारी असम में है वहाँ गया। वहाँ से एक सिविलियन को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक फौज में आने के लिए, फौजी बनने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया 13 महीना का जो बेसिक ट्रेनिंग था उसमें। इससे ये होता है कि हमारा सिविल लाइफ और फौज के लाइफ थोड़ा डिफरेंस होता है, मतलब फौज में कैसे किससे बात करना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, सारा चीज़ को वो 13 महीने के अंदर में हमें हमारे इंस्ट्रक्टर लोग ने, हमारे जो भी अधिकारी लोग हैं उन्होंने हमें सिखाया, उसको पूरी तरह से मजबूत बनाया, फिजिकल टफनेस से लेके मेंटल टफनेस तक सभी चीज़ को हमने सिखाया गया उसी दौरान। उसके बाद हमारी पोस्टिंग आगे होती चली गई। उसके बाद मेरी पोस्टिंग सबसे पहले 53 बटालियन फालाकाटा में हुई, जो इंडो भूटान बॉर्डर को मैन करती है, वहाँ पे ड्यूटी करती है। उसके बाद 2018 में मेरी पोस्टिंग सीतामढ़ी 51वीं बहनी है, वहाँ पे जो इंडो नेपाल बॉर्डर को ड्यूटी करती है, मैन करती है, वहाँ पे हमारी ड्यूटी हो गई। वहाँ से होने के बाद हमें 2021 में ANO जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस है वो 16वीं वाहिनी जमुई बिहार में हमारी पोस्टिंग हो गई, वहाँ पे हमने दी। और फिलहाल मैं SHQ गैंगटोक में अपनी सेवाएं एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक ऑफिस ड्यूटी के रूप में दे रहा हूँ।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। तो हम यही कहेंगे कि ये सफ़र, ये कारवां यूं ही जारी है और जारी रहेगा। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बने हमारे शिव शंकर कुमार जी, और आज इंस्पेक्टर के रूप में हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो इनके सफ़र के बारे में और चर्चा करेंगे। और आप सभी श्रोता जो संदेश भेजना चाहते हैं 9868107070, इस नंबर के माध्यम से आप संदेश भेजिए और अपनी भागीदारी निभाइए। इस बात का प्रतीक चिन्ह बनिए कि हम देशवासी अपने देश से कितना प्रेम करते हैं। सेवाओं के माध्यम से हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो नित्य प्रति कार्यरत रहते हैं और जिनके लिए सिर्फ देश सेवा ही सर्वोपरि है, उनको सलाम करते हैं संदेश के माध्यम से।

0: लक्ष्य प्राप्ति किसे कहते हैं ये तो हम अपने फौजियों से ही सीखते हैं। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, कर्तव्य निष्ठा और देश के प्रति प्रेम ने हमेशा इन्हें लक्ष्य प्राप्त करना ही तो सिखाया है और इस लक्ष्य प्राप्ति की वजह से हमारे देश भारत ने हमेशा परचम लहराया है अपने फौजियों की वजह से और इनके देश प्रेम की वजह से। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार सहस्त्र सीमा बल से। और जैसे कि मैं साझा कर चुकी हूँ कि आजकल ये गैंगटॉक में कार्यरत हैं और सीधे गैंगटॉक से यहाँ आकाशवाणी के स्टूडियो आए हैं। यही इनकी कर्तव्य निष्ठा है, यही देश प्रेम है। और सहस्त्र सीमा बल ने जैसे ही इन्हें कहा कि आपको जाना है और पहुँचना है, देखिए ये तुरंत कल चले और आज यहाँ पहुँच गए। आपसे ये जानना चाहते हैं हम शिव शंकर कुमार जी, एक लंबा सफ़र तय करता है एक फौजी। 2012 में आपकी नियुक्ति हुई, आप सब इंस्पेक्टर बने, फिर 2018 में इंस्पेक्टर बने। ये सफ़र कितना चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदारियों से भरा हुआ था। पदोन्नति अपने आप में हमें सुखद अनुभूति कराती है, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां और जिम्मेदारी लेकर आती है।
1: यह सफ़र मेरे लिए बहुत सीखने वाला रहा है। 2012 में मैं सब इंस्पेक्टर नियुक्त हुआ था, उसके बाद एक प्रक्रिया है, अगर वैकेंसीज हो और आपका सर्विस रिकॉर्ड ठीक हो तो आपको एक डिपार्टमेंट आपको प्रमोशन देती ही देती है
0: जी।
1: उसके साथ जब 2018 में मुझे इंस्पेक्टर बनाया गया था, रैंक बढ़ने के बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ती है
0: जी।
1: इस दौरान मैंने अपने जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखा और जो हमारे सहपाठी है, कार्मिक है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि एक सिविलियन होकर आकर फौज में ट्रेनिंग के बाद अगर ऑन ग्राउंड जो ड्यूटी करता है उसको सीखने के लिए जो पहले से जो भी काम कर रहे हैं उनसे सीखने को मिलता है, वो हमारे दिनचर्या में शामिल हो जाता है
0: जी। जी, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है और आप उस ज़िंदगी को जीने लगते हैं और लगने लगता है हम इसी के लिए बने थे और जिसके लिए बने थे आज उसके लिए कार्यरत है, आपकी रग रग में शामिल हो जाता है। शायद सेनाएं आपको इस तरह से तैयार करती हैं कि बस आपके रगों में, आपके खून में सिर्फ सेनाएं और देश प्रेम रह जाता है
1: जी।
0: अच्छा, हमें ये भी बताएं कि जब आप सेनाएं ज्वाइन करते हैं, जब आपने SSB ज्वाइन की तो निश्चित परीक्षण के अंतर्गत आपको फिर आगे पोस्टिंग्स मिली, लेकिन प्रशिक्षण का सिलसिला फौज में जाने के बाद कभी ख़त्म नहीं होता, वो तो बरकरार रहता है ना। तो क्या आपको लगता है कि जो भी ट्रेनिंग्स आपने बीच बीच में की या करते आ रहे हैं, इसने आपका निर्माण किया है, इसने आपको पूर्ण रूप से एक फौजी होना भी सिखाया है और कैसे चुनौतियों से लड़ा जाए ये भी बताया है।
1: प्रशिक्षण ही किसी को बेटर बनाती है। पहले हमने बेसिक ट्रेनिंग किया, उसके बाद समय समय पर ऑर्गेनाइजेशन हमको कोर्सेज कराती रहती है, इन प्रोफेशनल कोर्सेज हो और ट्रेनिंग भी हो वो कराती रहती है। जैसे आपको प्रमोशन भी मिलता है तब भी आपको कोर्सेज करने पड़ते, कोर्सेज क्वालिफाई करने पड़ते तब आपको प्रमोट किया जाता है। उसी तरह से हर कोर्स के लिए, हर ड्यूटी के लिए अलग अलग कोर्सेज है जो आपको प्रोफेशनली साउंड बनाने के लिए कराए जाते हैं। जिस प्रकार से कोई भी कोर्सेज हो, जंगल वारफेयर का कोर्सेज हो, जंगल में कैसे रहना है उसकी ट्रेनिंग कराना हो, जैसे बॉर्डर पर ड्यूटी करना है, इंडो नेपाल बॉर्डर को कैसे मैन करना, इंडो भूटान बॉर्डर को कैसे मैन करना, उसकी भी ट्रेनिंग, ये अनवरत जारी रहता है। और फौज, मैंने पहले भी बताया, एक लाइफ है, तो इसमें अनवरत जारी रहेगा कोर्सेज कराना, जिससे कि आप और टफ हो सके और अपने काम को अच्छे तरह से कर सके, इसीलिए ट्रेनिंग हमेशा जरूरी है
0: जी। और ना शब्द तो कभी होता ही नहीं आपकी डिक्शनरी में, क्योंकि सेनाएं आपको हमेशा यही सिखाती हैं,
1: ना तो है ही नहीं,
0: इम्पॉसिबल तो है ही नहीं। बस जैसा कि हमने कहा कि लक्ष्य प्राप्ति ही आपका अल्टीमेट गोल है, जिस काम को आपको दिया गया उसको आपको पूर्ण करना है, यही आपकी जिम्मेदारी है।
1: और हम लोग उस जिम्मेदारी को पूरी तरह बखूबी निभाते भी है
0: जी, निभाते हैं। और एक बात व्यक्तिगत पूछना चाहूँगी, एक फौजी होने के नाते घर भी है, परिवार है, तमाम रिश्ते हैं और एक तरफ देश प्रेम है, तो इस कहते हैं कि एक फौजी के मन में कभी कोई जंग नहीं होती उसके वक्त, उस मतलब परिवार और देश को लेकर उसके मन में सिर्फ देश प्रेम होता है कि बस अब देश के लिए समर्पित है, माना कि घर है, परिवार है, भावनाएँ हैं, तो इस चीज़ को आप किस तरह से अपने जीवन में समाहित करते हैं?
1: थोड़ा मुश्किल है, लेकिन परिवार का अगर सहयोग मिलते रहे तो ये सब आसान हो जाता है। परिवार और नौकरी के बीच में ये सामंजस्य बैठाना, अगर परिवार से साथ मिलता है तो ये एकदम आसान हो जाता है। सुरक्षा बल की नौकरी में कई बार परिवार के जो महत्वपूर्ण अवसर होते हैं उसमें भी हम लोग नहीं आ पाते हैं, तब भी एक परिवार का जो सहयोग होता है अगर वो मिलते रहता है तो सारा आसान हो जाता है।
0: जी, सब कुछ आसान हो जाता है। घर परिवार से आपको ये कहा जाए कि जाओ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करो, जाओ अपने कर्तव्यों को पूर्ण करो, क्योंकि हमारा सम्मान तुम्हारे सम्मान में है, क्योंकि जब जब तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओगे तब तब हम गर्व से कहेंगे कि हमारा बेटा जो है देश प्रेम में है और देश के लिए कार्यरत है। तो यही तो जज्बा है जो हमें हर वक्त अपनी ओर आकर्षित करता है, और कितने ही युवा ये चाहते हैं कि हम फोर्सेस ज्वाइन करें और देश का नाम ऊंचा करें। तो मिट्टी के रखवालों को हमारी ओर से सलाम है।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। सशस्त्र सीमा बल से इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और इनकी यात्रा, इन्हीं की जुबानी सुनने में जो सुखद आनंद प्राप्त हो रहा है, ना जाने कितनों के लिए ये प्रेरणा स्रोत बन रहा है। बहुत सारे संदेश हम तक पहुँच रहे हैं, आप सभी के नाम हम ज़रूर लेंगे, लेकिन इससे पहले इनकी यात्रा जिसको हम सुनने के लिए इतने ललायत हैं कहीं भी छूट न जाए। दिल चाहता है इनसे बार बार बहुत सारे प्रश्न किए जाएं। जितना हमें आपके बारे में पता लगा है कि आपको नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कई बार तैनात किया गया है, आपको तैयार किया गया है, कभी महसूस होता है कि अगर आपको ये कार्यभार ना सौंपे गए होते तो आप जो आज हैं वो आज ना होते।
1: जी, ऐसे क्षेत्रों में सबसे जरूरी होता है हमेशा सतर्क रहना। हमारी अपनी ट्रेनिंग और जो हमारे ऑफिसर्स के निर्देशों के अनुसार हम लोग काम करते हैं, ड्यूटी के लिए हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना पड़ता है। टीम के साथ साथ एक टीम के भावना के रूप में काम करते हैं, टीम का कम्युनिकेशन एक दूसरे के प्रति ठीक रहना चाहिए और एरिया के बारे में जानकारी होना चाहिए जहाँ पर हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, तो कोई भी काम आसान हो जाता है।
0: जी, कोई भी काम आसान हो जाता है, लेकिन आसानी से पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा तैयार करना होता है और आपकी तीक्ष्ण बुद्धि, आपकी कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्यों का पालन करने की जो आप में गुण निहित हैं, इसकी वजह से ही आपको शायद ऑपरेशन जोश के लिए भी चयनित किया गया, जहां पर आपने अपनी टीम के साथ मिलकर दमखम स्थापित किया और उस कहते हैं कि उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया।
1: जी, ये 8 जून की घटना है, 8 जून 2022 की घटना है। ये मेरे टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन था। ये बिहार राज्य के जमुई ज़िले की घटना है जिसमें हम एक ऐसे सफल ऑपरेशन के बारे में आज बात करेंगे जिसमें हमारी टीम ने एक हार्डकोर नक्सल को न्यूट्रलाइज किया था और उसमें भारी मात्रा में गोला बारूद और अन्य सामग्री भी बरामद किया गया था।
0: जी,
1: ये सफलता मेरी नहीं, पूरी टीम की सफलता है जिसमें आपसी तालमेल हो, सही समय पे जो मिली सूचना को परिणाम था कि हमने ये ऑपरेशन सफल किया। उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन, उसके बाद पूरी तैयारी के साथ टीम ने कार्रवाई की और नक्सल को न्यूट्रलाइज किया था। इस तरह के ऑपरेशन किसी एक व्यक्ति की भूमिका नहीं होती है, एक पूरी टीम होती है, पूरी टीम का योगदान होता है इसमें। आसूचना मिलने प्राप्त करने से लेके ऑपरेशन को अंजाम देने तक एक सभी कार्मिकों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है और वो अपनी पूरी ईमानदारी और साहस के साथ इस जिम्मेदारी को निभाया था। एसएसबी इस ऑपरेशन के बाद जमुई ज़िले में बहुत सारे नक्सलियों ने अपने आप इस ऑपरेशन के बाद खुद ब खुद सरेंडर किया सुरक्षा बलों के सामने आकर।
0: उनके मन में इतना डर बन गया था
1: और जस्ट एक सप्ताह के अंदर ही जो ये ऑपरेशन होने के बाद बहुत सारे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों और पुलिस के सामने आके खुद ब खुद सरेंडर कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि एसएसबी के महत्वपूर्ण योगदान के कारण जम्मू ज़िला आज पूर्णतः नक्सल फ्री घोषित हो चुका है। इसमें एसएसबी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं इस अवसर पर अपनी टीम को भी, सभी साथी कार्मिकों को उनके साहस और मेहनत एवं कर्तव्य निष्ठा के लिए बधाई देना चाहूँगा। सही समय पे सही कार्रवाई करना एक ऑपरेशन के लिए सबसे जरूरी होता है, जो हमारी टीम ने उसको किया।
0: जी, एक बात और पूछना चाहूँगी, जब इस तरह के ऑपरेशंस का आप हिस्सा बनते हैं, एक टीम का हिस्सा बनते हैं, तो निश्चित रूप से अपने सहकर्मियों से भी आप बहुत कुछ सीखते होंगे।
1: काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मैंने पहले भी बताया कि ये टीम को लेकर काम करने की पूरी टीम काम करती है, जिसमें हम लोग हमेशा कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो एक टीम के साथ काम करते हैं। इसमें किसी एक की जिम्मेवारी नहीं होती, सभी की अलग अलग जिम्मेवारियाँ बांटी हुई होती है और वो सभी मिल के इस काम को अंजाम देते हैं। एक सूचना मिलने से लेके ऑपरेशन करने तक सारी की जिम्मेदारियाँ अलग अलग होती है और जब ये ऑपरेशन सफल होता है तो वो सभी के लिए उतना ही गर्व का बात है जितना अगर मैं क्या कहूँ इसको, सभी के लिए गर्व की बात,
0: हर मेंबर के लिए, जितने भी मेंबर्स हैं। अच्छा, हर मेंबर को उसका कार्यभार सौंप दिया जाता होगा और ये कहा जाता होगा कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करने पर जिस तरह से कमांड दिया जाएगा आपको उसी वक्त डिसीजन लेकर कि आपको उसको सुचारू करना है, आप उसी वक्त अपनी बुद्धि से, अपनी कहते हैं कि हमारी बुद्धि जो है हमें निर्णय लेने में मदद करती है, कमांडर आपका आपको निर्देश देता है, उसके बाद आप तैयार हो जाते हैं उस काम को करने।
1: ग्राउंड में आने के बाद सभी को ऑन ग्राउंड के हिसाब से ही काम करना पड़ता है, लेकिन पहले जो भी प्रशिक्षण मिला हुआ है उसको अपने निहित करते हुए और काम को आगे किया जाता है। हमेशा जो भी ऑपरेशन होता है तो सबसे पहले सभी का काम को बता दिया जाता है कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, और सभी अपने अपने काम को बखूबी करते हैं और उसके कारण हमें सफलता मिलती है।
0: बहुत खूब। अच्छा, यहाँ पर आकर आपको लगता होगा जब आप ऑपरेशंस का हिस्सा बनते हैं और जैसा कि हमने कहा कि आप बहुत से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आपने कार्य भी किया है, तो जो प्रशिक्षण आपने हासिल किए हैं, जो आपको प्रशिक्षण दिए हैं सशस्त्र सीमा बल ने, वो आपको लगता होगा कि वो आपके साथ बहुत अच्छा हुआ कि आपको वो ट्रेनिंग मिली, नतीजतन आप आज इतने सारे ऑपरेशंस का हिस्सा बन रहे हैं।
1: ट्रेनिंग सबसे जरूरी है, जितना टफ ट्रेनिंग होगा उतना फ़ायदा मिलेगा ग्राउंड में काम करने के लिए और कुछ बेहतर करने के लिए हमेशा काम करेगा। ट्रेनिंग सबसे जरूरी चीज़ है, टफ जितना ट्रेनिंग होगा उतना फ़ायदा हमको ग्राउंड में काम करने के लिए मिलेगा।
0: जी, और कहते हैं कि कुछ विपत्ति जो है ना बताकर आती है लेकिन कुछ अनदेखी होती हैं, उसके लिए आपको सशस्त्र सीमा बल किस तरह से तैयार करता है?
1: हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार करके रखता है। फौज ऐसा ही है कि जो कठिन परिस्थिति जब भी आए तब भी एक फौजी खड़ा रहता है वहाँ पे, उसी के लिए फौज रहती ही है।
0: जी, जैसा कि हम अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आपको आपके ऑपरेशन जोश के लिए, जिसमें आपने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर उस नक्सली प्रभावित क्षेत्र को नेस्तनाबूद किया, और अगर हम गलत नहीं हैं तो जितने भी आर्म्स और एम्यूनेशन थे उनको भी आपने जब्त किया आखिर में, और आपको 2024 में गैलेंट्री पदक से भी नवाजा गया, वो अनुभूति किस तरह की थी? सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनना अपने आप में एक अलग अनुभूति, लेकिन सम्मान मिलना आपके कार्य के लिए वो उससे भी बड़ी बात, उस वक्त कैसा महसूस हुआ?
1: ये पल तो मेरे लिए गर्व और इमोशनल भी था। जब देश की सेवा करते हुए कोई सम्मान मिलता है तो बहुत खुशी भी होती है। इस सम्मान को केवल अपना सम्मान नहीं मानता हूँ, ये पूरी टीम का सम्मान है, और मेडल आगे अपनी जिम्मेदारी को और बेहतर तरीक़ों से करने की प्रेरणा देता है, और आगे हम लोग भी और मेहनत से और लगन के साथ कार्य करते रहेंगे।
0: जी बिल्कुल, आपने सही बात की कि जब मेडल प्राप्त होता है सुखद अनुभूति होती है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां आप अपने ऊपर और लेते हैं, और ये कहते हैं अपने आप से स्वयं से बात करते हैं और कहते हैं कि अगली बार इससे भी बेहतर कर दिखाएंगे, है ना, और जितनी भी जिम्मेदारियाँ मिलेंगी उनका भी निर्वाह करते हुए चलेंगे, मन में बात ज़रूर आती होगी।
1: हमेशा कोई भी ऑपरेशंस होता है तो उसके बाद में उसकी समीक्षा होती है कि इस ऑपरेशन को और कितने बेहतर किया जा सके, तो आगे नेक्स्ट ऑपरेशन में उसको और उससे बेहतर किया जा सकता है, और करते हैं हम लोग।
0: जी बहुत बढ़िया। अच्छा, गैलेंट्री पदक के अलावा भी आपको और कई सम्मान दिए हैं SSB ने, उनके बारे में भी हमें बताएं।
1: तो उनके अलावा बहुत सारे सम्मान वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहन मिलता है, जिसे हमारे DG महोदय के द्वारा भी DG सिल्वर डिस से नवाजा गया है। एंटी नक्सल ऑपरेशंस में अगर ड्यूटी कर रहे थे वहाँ भी रिवॉर्ड्स मिले हैं, कमेंडेशन भी मिले हैं। हर सम्मान एक खुशी देता है और साथ साथ एक जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है कि और इससे बेहतर करना है कुछ।
0: जी, इससे बेहतर करना है, और देश की, चाहे फौज की बात की जाए तो चाहे वो आंतरिक सुरक्षा की बात हो, चाहे वो बाहम सुरक्षा की बात हो, और हर फोर्स अपना अपना कार्य करता है, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए कार्यरत है वो आंतरिक करते हैं, जो बाहम के लिए जिम्मेदार हैं वो बाहम सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, देश।
1: जी जी,
0: है ना, सिर्फ देश ही याद आता है और बस देश ही समझ में आता है, उसके अलावा कुछ और नहीं।
1: सबसे पहले देश है, देश के लिए कुछ भी करने के तैयार रहते हैं हम लोग।
0: जी बिल्कुल, आपने ठीक बात कही, देश के लिए तो मर मिटने तक के लिए तैयार रहते हैं। जब अपने घरों से निकलते हैं और फौज ज्वाइन करते हैं, और फौज ज्वाइन करने के बाद जिस भी ऑपरेशन का हिस्सा बनते हैं तो कभी ये नहीं सोचते कि घर भी लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, और शायद यही आपकी जो कर्तव्य निष्ठा है, यही जो आपका प्रेम है देश के प्रति, हम देशवासियों को हमेशा ये प्रेरित करता है कि आप हमें जहाँ भी मिले हम आपको सलाम करें और कहें आप हैं तो हम हैं और आप नहीं तो हम नहीं।

0: और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, और संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ हैं सशस्त्र सीमा बल से इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार, जिनकी बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं दिल में खूक उठ रही होगी आपकी, और आप भी ये सोच रहे होंगे कि हम भी फोर्सेस ज्वाइन करें और देश के प्रति अपने सम्मान को, हर कोई व्यक्ति ना यही चाहता है कि देश के लिए काश हम कुछ कर पाएं, और सेना ज्वाइन करना हर किसी के दिल में हुक ज़रूर मारता है। आज हम बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी से, इनकी यात्रा हमने इनकी ज़ुबानी सुनी। शिव शंकर कुमार जी, आपसे जानना चाहते हैं कि अलग अलग बटालियंस में आप तैनात रहे, आप अलग अलग बटालियंस का हिस्सा रहे, क्या कुछ कार्यभार आपको सौंपे गए और वो कार्यभार आपको कितने अच्छे लगे? वो तो आपकी मुस्कान से पता लग रहा है कि आपके लिए हर बटालियन दिल के करीब रही है और बहुत सारी यादें देखी गई है हर बटालियन, तो कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे अपनी बटालियंस के बारे में?
1: मेरे लिए हर वाहिनी अपने अलग अलग यादें हैं, हर वाहिनी की अलग अलग यादें हैं, वहाँ पर काम करने वाले साथी जो भी रहते हैं वो एक फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। हम अपना सारा सुख दुख जो भी है उस के इर्द गिर्द ही बुनते हैं, हम एक टीम की तरह एक टीम भावना के साथ काम करते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी जो भी कार्य किए गए हैं वो साथियों के साथ बिताए हुए छोटे छोटे पल हमेशा याद रहते रहते हैं। मैंने पहले भी बताया कि हमने सभी बॉर्डर पे काम किया है, इंडो भूटान बॉर्डर सबसे पहले हमने किया, इंडो भूटान बॉर्डर का सीनेरियो अलग, फिर इंडो नेपाल बॉर्डर पे आया, इंडो नेपाल बॉर्डर का भी अलग ड्यूटी, उसके बाद हमने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में काम किया 16 बटालियन में, जिससे हमें बहुत बड़ी सफलता भी मिली थी वहाँ पे। इसके बाद अभी हम पूरी तरह से ऑफिस ड्यूटी में है, गैंगटोक में पोस्टेड है, तो सारा काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है इसी ड्यूटी के दौरान।
0: जी, ये बहुत प्यारी बात होती है कि जब आपको अलग अलग ऑपरेशन साथ ही साथ अलग अलग तरह के कार्यभार संभालने का मौका मिलता है अपने कार्यकाल में, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। आप फोर्सेस को उतनी अच्छी तरह से जान पाते हैं कि हमारी जो फोर्सेस है क्या कुछ करती हैं, कैसे करती हैं, और यही शायद बहुत खूबसूरत बात होती है। अच्छा, ये बताइए कि हर बटालियन या हर जब जिस बटालियन में आप रहे हैं, तीन तीन साल के अंतराल के बाद आपकी पोस्टिंग बदली होगी, एक बटालियन छोड़ने के बाद, एक पोस्टिंग छोड़ने के बाद कितना दुख होता है?
1: ये काफ़ी दुख होता है, कभी लगता ही नहीं कि वहाँ से निकल के दूसरे जगह चले जाए। एक फैमिली बन जाती है, लगता है कि यहीं पे अपनी पूरी नौकरी कर ले, यहीं पे अपनी ड्यूटी कर ले।

0: ले, लेकिन एक प्रोसेस है और उसको हमको मानना पड़ता है। जब ऊपर से आदेश आ गया कि आपकी पोस्टिंग दूसरे जगह कर दी गई है, वो बिना हिचक के हम लोग अपना बैग पैक करते हैं और चल देते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए।
1: क्या बात है, जिस तरह जो भी निर्देश दिया जाता है उसी के तहत आप अपने आप को मुस्तैद करते हैं, फिर नई जगह में पहुंचते हैं और फिर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। अच्छा ये बताइए, जब किसी टीम में रहते हैं तो आपसी प्रेम तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से आप जब उस यूनिट को, उस पोस्टिंग को छोड़ते हैं तो बहुत दुख होता है, लेकिन वो 3 साल का समय कहते हैं कि बहुत आत्मीयता लेकर आता है, सारे सुख दुख एक दूसरे के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपनी यूनिट के सहकर्मियों के साथ आप साझा करते हैं। पार्टी वार्टी करते हैं?
0: पार्टियाँ होती रहती है।
1: अच्छा,
0: ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले भी बताया कि फौज एक लाइफ देती है, आप उस लाइफ को पूरी तरह से इंजॉय कीजिए। ड्यूटी है और वो लाइफ भी देती है जो जिसके लिए हम लोग भर्ती होते हैं।
1: जी अच्छा, आप कुछ देर पहले मुझसे कह रहे थे कि अगर आप यूनिट में ना भी हों, अपने घर गए हों और आपके घर में कोई खुशी का माहौल हो तो वो खुशी आपकी यूनिट में भी मना ली जाती है।
0: फौज में ये परंपरा भी है कि अगर घर में खुशी है तो फोन कर दो और यहाँ पे पार्टी पहले हो जाती है।
1: अरे वाह क्या बात है मतलब आपके जितने भी दोस्त हैं वहाँ पर अपने हिस्से की पार्टी वहाँ कर लेते हैं, आपकी खुशी में शामिल हो जाते हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं। जब आपके साथ हैं यूनिट में हैं तब भी एंजॉय कर रही हैं, तब भी मना रही हैं, एक दूसरे को सेलिब्रेट कर रही हैं, और अगर दूर भी हैं बस बताने भर से वो आपकी खुशी में शामिल हो जाते हैं।
0: फौज की ड्यूटी 24 घंटे की ड्यूटी है, हमेशा सुख दुख उन्हीं के साथ बांट के रहना है, तो उनके लिए ही सारा चीज़ समर्पित रहता है, हम अपनी टीम के लिए ही हमेशा समर्पित रहता है।
1: अच्छा ये बताइए कि जब घर आप जाते हैं तो घर से वापस जब अपनी यूनिट जाते होंगे तो माँ, घर परिवार वाले कुछ डब्बे खाने पीने का सामान देते होंगे, आपके साथ बंद कर जरूर जाता होगा।
0: वो सबके लिए होता है,
1: वो सबके लिए होता है, ऐसा तो नहीं होता ना कि एक महीने का सामान है तो एक महीने में खत्म होना है या वो उससे पहले खत्म हो जाता है।
0: नहीं, वो सबके लिए होता है, जो टीम है हमारी वो सबके लिए होता है। हाँ, वो
1: हाँ, तो मुझे लगता है कि जाते साथ सब डब्बे खाली हो जाते होंगे।
0: जरूर जरूर,
1: और बड़ी चाह होती है, अरे घर से आए हो ये बताओ क्या लेकर आए हो,
0: हमेशा रहती है चाहत रहती है कि कुछ तो लेकर आया होगा।
1: अच्छा ये बताइए, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा अपने काम में व्यस्त रहते होंगे, लेकिन आपके साथ ऐसा कौन है जो साथ चलता है, जिसको आप ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कोई ज़िंदगी में है, जिससे बात कर रहे हैं, जो चल रहा है साथ, कोई है ऐसा?
0: एक टीम रहता है वो हमेशा हमारे साथ चलती है।
1: और रेडियो?
0: रेडियो भी है, वो रेडियो एक लाइफ का हिस्सा है, वो हमेशा आपको चलते रहता है, साथ साथ चलते रहता है, दिन दिनचर्या में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो आपको बताते रहती है। हाँ, हमेशा हाँ,
1: ऐसा महसूस होता है किसी की आवाज़ कानों तक पहुंच रही है, लेकिन आप व्यस्त हैं अपने काम में मग्न हैं, लेकिन अपना साथी, वो साथी तो हैं ही, सहकर्मी तो हैं ही, लेकिन रेडियो भी साथ साथ है। अच्छी बताइए कि त्यौहार कैसे मनाते हैं आप, सारे त्यौहार मनाते हैं वहाँ?
0: अगर हम यूनिट में मौजूद है तो त्यौहार हमेशा मनता है और एक धूमधाम से सेलिब्रेट के साथ सभी चीज़ होते के साथ मनता है। अगर अगर घर पे नहीं है, अगर यूनिट में है तो यूनिट में बहुत धूमधाम से त्यौहार मनता है, जिससे किसी को ये मलाल ना रहे कि मैं इस बार घर नहीं गया हूँ। हाँ। और बहुत धूमधाम से मनता है
1: जी। और खेलने का शौक कितना है आपको?
0: हम लोग उतने बड़े खिलाड़ी तो नहीं है, लेकिन खेलते हैं, सभी गेम खेलते हैं, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, सभी खेल में रुचि है और सब समय मिलता है, खेलते रहते हैं हम लोग।
1: और खेल कहीं ना कहीं आपकी इच्छा शक्ति और आपके विकास, आपके शारीरिक विकास में एक अहम भूमिका निभाता है, जो हमेशा आपको सजीव रखता है।
0: फौज की नौकरी करने के लिए सबसे जरूरी है फिटनेस, और अगर आप खेल अपने नियमित हिस्सा रखते हैं तो आपकी फिटनेस भी बनी रहती है।
1: जी बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और आपको इतने सारे दोस्तों ने सलाम भेजा है, जय हिंद सर लिखकर भेजा है, यहाँ पर दोस्त ने अपना नाम नहीं लिखा, माफ़ी चाहूँगी दोस्त, नाम लिखते तो शायद आसान हो जाता मेरे लिए पढ़ना। संदेश टू सोल्जर्स का नियमित श्रोता हूँ, तिरुचिरापल्ली विजय कुमार ने आपको नमस्कार भेजा है, और सेना नायक इंस्पेक्टर शिव शंकर जी को जय हिंद वंदे मातरम इन्होंने कहा है, इनकी राष्ट्र सेवा के लिए हमारा हृदयपूर्ण नमस्कार। आप स्वीकार करें आप
0: सभी को। जय हिंद मेरा
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों संदेश भेजने के लिए। अच्छा यहाँ पर एक संदेश आया है, नाम इन्होंने नहीं लिखा पर ये कहा है कि अगर हम फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे हम जब डिग्निटी की बात होती है, साहस की बात होती है, समर्पण की बात होती है, ये आम जनमानस को भी हम कैसे प्रेरित करें कि वो भी अपने जीवन में आत्मसात करें, कैसे उस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को अपनी जिंदगियों में शामिल करें।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के युवाणी कार्यक्रम में और हम हैं आपके रेडियो दोस्त अलक श्रीवास्तव
1: और डिम्पी रावते आपके साथ। दोस्तों, आज युवाणी कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा के साथ गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम।
0: आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दो प्रश्नों के साथ। इनके उत्तर हम आपको देंगे कार्यक्रम के अंत में। पहला प्रश्न है, भारत में युवाओं के लिए आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा?
1: दोस्तों, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, 2026 में युवाओं को नशा मुक्ति अभियान से जोड़ने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है? आइए अब हम आपको ले चलते हैं गैर फिल्मी गीतों और गजलों की दुनिया में और सुनवाते हैं पॉप नगमा लकी अली की आवाज में।

0: और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम एक ऐसे विषय पर पहुंच रहे हैं जो हर समाज की नींव है। आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक सद्भाव और युवा की।
1: दोस्तों, सामाजिक सद्भाव का अर्थ है कि समाज में हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिले। यह केवल शांति बनाए रखने की बात नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि विविधता के बीच भी एकता बनी रहे।
0: और यही जगह युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका है। युवा केवल भविष्य नहीं है, वे वर्तमान की धड़कन भी हैं। उनकी ऊर्जा और उनकी संवेदनशीलता समाज को दिशा देती है। जब युवा भेदभाव को चुनौती देते हैं और संवाद को प्राथमिकता देते हैं, तो समाज में विश्वास और सहयोग की नींव रखते हैं। वे परंपराओं का सम्मान करते हैं और उन चीज़ों पर सवाल उठाते हैं और उन्हें समय के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं।
1: सही कहा अलक। उदाहरण के तौर पर, जब युवा अपने कॉलेज या मोहल्ले में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं जहां हर समुदाय के लोग शामिल होते हैं, तो यह केवल मनोरंजन नहीं होता, यह एक प्रतीक है कि अनेकता में भी एकता संभव है।
0: अब सवाल ये है कि सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में युवाओं के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौतियां हैं सामाजिक भेदभाव और आर्थिक असमानता, क्योंकि जाति, धर्म और भाषा की सामाजिक असमानता युवाओं को निरर्थक झगड़ों में उलझाकर आगे नहीं बढ़ने देती, तथा आर्थिक असमानता बुनियादी ज़रूरतों के साधनों की कमी से वे एक दूसरे के प्रति आक्रोशित होते हैं, जिसके कारण उनमें आपसी टकराव होता है।
1: इसलिए साथियों, समाज को संचालित करने वाले प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी है और वह इसे पूरा करने में निरंतर लगा भी रहता है कि वह सामाजिक एवं आर्थिक समानता सुनिश्चित करे और युवाओं को बेमतलब के आक्रोश और टकराव को समाप्त करके उन्हें आगे बढ़ने के सुअवसर दे। तो वह दिन दूर नहीं जब सामाजिक सद्भाव और युवा एक सुंदर, शांतिप्रिय एवं विकसित समाज की पहचान होंगे।
0: दोस्तों, इसी के साथ आइए चलते हैं गैर फिल्मी गीतों और गजलों की दुनिया में। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, बारिश में भी कुछ छुपा रहे हो, भीगी पलकों के पीछे क्या राज है, किस दर्द को हंसकर भुला रहे हो।

0: दोस्तों, संगीत हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यह केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं, संवेदनाओं और यादों को व्यक्त करने का एक सुंदर जरिया भी है। जब शब्द भावनाओं को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाते, तब संगीत उन्हें सुरों और धुनों के माध्यम से हमारे दिल तक पहुंचा देते हैं।
1: साथियों, फिल्मी गीतों से अलग गैर फिल्मी गीतों की अपनी एक विशेष पहचान और मिठास होती है। इनमें भावनाओं की सादगी, शब्दों की गहराई और संगीत की आत्मीयता देखने को मिलती है। आज की संगीतमय संध्या में हम भी आपके लिए एक ऐसा ही मधुर गैर फिल्मी गीत लेकर आ रहे हैं, जिसे आवाज दी है दर्शन रावल और नेहा कक्कड़ ने।

0: डिम्पी, अगर हमें भारत को विकसित और सशक्त राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले किस शक्ति को पहचानना होगा? युवाओं की ऊर्जा को या समाज के हर वर्ग की समान भागीदारी को?
1: अलख, मेरा मानना है दोनों को, क्योंकि युवा देश की ऊर्जा है और समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी उसकी वास्तविक शक्ति। जब ऊर्जा और समान अवसर साथ आते हैं तभी विकास की गति तेज होती है।
0: दोस्तों, अल्पसंख्यक कल्याण शब्द सुनते ही मन में एक सवाल उठता है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है?
1: साथियों, इसका अर्थ है अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को शिक्षा, कौशल, रोजगार, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक अवसर और सहयोग उपलब्ध कराना।
0: डिम्पी, तो क्या इसे किसी विशेष समुदाय को विशेषाधिकार देना समझना नहीं होगा? क्या इसका उद्देश्य दूसरों से अलग अवसर देना या उन क्षेत्रों में अवसर देना जहां कुछ लोग अब भी पीछे रह गए हैं?
1: नहीं अलग, इसे विशेषाधिकार कहना उचित नहीं होगा। इसका उद्देश्य किसी को आगे बढ़ाना नहीं बल्कि पीछे छूटे व्यक्ति को आगे लाने का समान अवसर देना है। जब हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा को पहचानने, उसे निखारने और अपने सपनों को साकार करने का मौका मिलता है तभी विकास वास्तव में समावेशी बनता है।
0: साथियों, हम युवाओं को भेदभाव से ऊपर उठकर हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करना होगा, हमारी विविधता को स्वीकार करना होगा और यह समझना होगा कि अलग अलग पहचानें भारत को कमजोर नहीं बल्कि उसकी सांस्कृतिक समृद्धि को और गहरा बनाती हैं।
1: तो आइए हम केवल विकसित भारत का सपना ना देखें
0: बल्कि ऐसा भारत गढ़ने का संकल्प लें जहां हर युवा की उड़ान को अवसर के पंख मिले और हर हाथ राष्ट्र निर्माण की शक्ति बने।
1: साथियों, जहां भिन्नताओं से दूरी नहीं संवाद हो,
0: जहां सपनों को संकोच नहीं साहस मिले
1: और जहां सफलता केवल कुछ चेहरों की नहीं पूरे समाज की कहानी बने।
0: दोस्तों, क्योंकि राष्ट्र तब महान नहीं बनता जब कुछ लोग ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं।
1: राष्ट्र तब महान बनता है जब उसकी प्रगति की रोशनी आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक भी पहुँचती है। इसी के साथ आइए वापस चलते हैं गीतों और गजलों की दुनिया में। बारिश की बूंदों में भी एक अलग सी रवानी है, युवा दिलों में आज भी कुछ कर गुजरने की कहानी है। चेहरे पर मुस्कान है, आंखों में हजारों ख्वाब, ये उम्र ही ऐसी है, हर बारिश में भी एक नई जिंदगानी है।
0: आइए इसी के साथ सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और जसवंत सिंह की आवाज में यह गजल।

0: दोस्तों, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है शुरुआत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का। पहला प्रश्न था, भारत में युवाओं के लिए आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका उत्तर है तेलंगाना।
1: दोस्तों, आज का हमारा दूसरा प्रश्न था, 2026 में युवाओं को नशा मुक्ति अभियान से जोड़ने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है? जिसका उत्तर है नशा मुक्ति। आशा करते हैं आपको आज का हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम फिर लौटेंगे एक नए विषय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी रेडियो दोस्त डिम्पी रावते
0: और अलक श्रीवास्तव को। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी की जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दादी कौन सा प्लांट है?
3: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
4: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
2: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
4: क्यों?
2: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
4: ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले, तेरी समझदारी का फल।
5: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
7: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
6: क्या, कैसे?
7: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है
8: कमाओ योजना 12th,
7: ITI 12th, ITI।
9: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से होगा।

माई नेम इज़ खान। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। राहत फ़तेह अली खान, शंकर महादेवन और ऋचा शर्मा की आवाज़ में, बोल हैं निरंजन अयंगार के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में आइए सुनते हैं सुल्तान फिल्म का गीत। संगीतकार विशाल शेखर और गीतकार इरशाद कामिल।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम और कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फैज़ अनवर का लिखा हुआ साजिद वाजिद का संगीत है। फिल्म का नाम है दबंग और खूबसूरत आवाज़ राहत फ़तेह अली ख़ान की।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं।

0: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से होगा।
1: फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
4: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
3: मतलब
4: ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से एचआईवी एड्स और अन्य संक्रमक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
3: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
5: आप भी सतर्कता अपनाएं और एचआईवी के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
6: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को एक लेख को साझा करते हुए कहा है कि ब्रिक्स की अध्यक्षता में भारत जन केंद्रित जलवायु कार्रवाई के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसके तहत झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC द्वारा आयोजित कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में आयोजित आरंभ परिचय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राज्य वित्त आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का आज भोपाल में लोकार्पण किया गया। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की उपस्थिति में आयोग के अध्यक्ष शैभान सिंह पवैया ने वल्लभ भवन में वेबसाइट का लोकार्पण किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत युवा संगम फेज 7 के लिए राज्यों की जोड़ी तय की है। इसके तहत मध्यप्रदेश को कर्नाटक के साथ जोड़ा गया है, जिसमें मध्यप्रदेश के लिए PSPA भोपाल और कर्नाटक के लिए यूनिवर्सिटी कर्नाटक को जिम्मेदारी दी गई है। और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए अतिरिक्त कॉलेज लेवल काउंसलिंग CLC चरण की अवधि 21 से 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 6 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
3: और अजीत अभी जोहार और नमस्कार। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सूर्य बिना कुछ मांगे हमें प्रकाश देता है, नदी बिना भेदभाव जल देती है, वृक्ष पत्थर खाने पर भी फल देते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने दिया, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है।
3: बड़ी खूबसूरत पंक्ति है, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, इसी प्रकार प्रकृति भी हमें बस देती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का,
2: शेरी वर्नेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलउदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी जी ने लिखा है।
3: उन्होंने लिखा है, धैर्य रखें, कठिन समय भी सरल हो जाएगा।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन और ईशांत देवांगन।
3: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सच में आप हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। स्वागत एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ज्ञान विज्ञान साहित्य भूगोल इतिहास और अनेकों ज्ञान की शाखाओं की मनोरंजक जानकारियाँ।
3: तो विमलेश जी, आज हमारी बातचीत का विषय क्या रहेगा?
2: अजीत जी, मैं सोच रही थी जानकारियाँ तो हम इस श्रृंखला में देते ही रहते हैं, लेकिन पिछले सप्ताह प्राप्त संदेशों से पता चलता है कि हमारे श्रोता प्रेरक प्रसंग भी बहुत पसंद करते हैं।
3: जी हाँ, ये तो है।
2: तो क्यों न आज और कल कुछ प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किए जाएं?
3: नेकी और पूछ, विमलेश जी आपने बिल्कुल सही कहा। जीवन में प्रेरक प्रसंगों से भी हमें बहुत सहायता और संबल मिलता है। तो बताइए जरा श्रोताओं को कि हमारा आज का प्रेरक प्रसंग क्या रहेगा?
2: अजी जी, आज बात करते हैं एक तितली के संघर्ष की।
3: क्या बात है, एक तितली के संघर्ष की।
2: श्रोताओं, आज हम आपको एक छोटी सी तितली की कहानी सुनाने जा रहे हैं।
3: जी हाँ श्रोताओं, ये कहानी लंदन की प्रसिद्ध बाल पत्रिका किड्स वर्ल्ड में छपी थी। शीर्षक था द बटरफ्लाई एंड द कुकून। ये कहानी केवल एक कीट की नहीं बल्कि हम सब के जीवन की कहानी है।
2: जी
3: श्रोताओं, कहानी कुछ इस प्रकार से है।
2: एक दिन एक व्यक्ति अपने बगीचे में टहल रहा था। उसकी नजर एक पेड़ की टहनी पर लटके एक छोटे से कुकून पर पड़ी, यानी रेशम के कोए पर पड़ी। उसने देखा कि कुकून के भीतर एक प्यूपानुमा तितली बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी।
3: श्रोता, वो व्यक्ति बड़ी उत्सुकता से उसे देखने लगा।
2: जी,
3: उसने देखा कि वो तितली एक बहुत छोटे से छेद से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार जोर लगाती और फिर रुक जाती, कुछ देर के बाद फिर पूरी ताकत से प्रयास करती। ये संघर्ष कई घंटों तक चलता रहा। विमलेश जी, आगे क्या हुआ?
2: जी जी जी, जो हुआ वो बहुत ही अजीब हुआ। उस व्यक्ति ने सोचा कि तितली थक गई है, वो बेचारी अब बाहर निकल ही नहीं पाएगी। उस व्यक्ति का हृदय दया से भर गया। उसने सोचा, बेचारी तितली कितना संघर्ष कर रही है, यदि मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर दूं तो इसका कष्ट समाप्त हो जाएगा।
3: श्रोताओं, ऐसा सोचता हुआ वो अपने घर गया, एक छोटी सी कैंची लाया और बहुत सावधानी से कुकून का छेद थोड़ा सा बड़ा कर दिया।
2: जी,
3: अब वो तितली बिना किसी कठिनाई के बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, उस व्यक्ति ने देखा उसका शरीर फूला हुआ था और उसके पंख छोटे और सिकुड़े हुए और बहुत ही कमजोर थे।
2: उसे लगा कि बस कुछ देर की ही तो बात है, कुछ ही देर में पंख फैल जाएंगे और तितली उड़ जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तितली जमीन पर ही रेंगती रही, वो कभी उड़ न सकी। कुछ ही दिनों में उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई।
3: जी हाँ श्रोताओं, उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों के बाद उसने एक और कुकून देखा जिससे तितली निकलने का प्रयास कर रही थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी।
2: जी,
3: बार बार प्रयास करती पर थक कर रुक जाती। अब की बार इस व्यक्ति ने सोच लिया था कि वो तितली की कोई मदद नहीं करेगा।
2: कई घंटों के बाद जब वो तितली बाहर आई तो उस व्यक्ति ने देखा कि वो शानदार रंगों वाली एक बेहद सुंदर तितली थी। वो थोड़ी देर रेंगी, फिर पंख फैलाकर उड़ गई।
3: श्रोताओं, उस व्यक्ति ने अपनी कहानी में लिखा, मुझे अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि प्रकृति ने तितली के लिए यह संघर्ष जानबूझकर रखा था।
2: जी।
3: जब तितली उस छोटे से छेद से बाहर निकलने का प्रयास करती है, तब मेहनत के कारण तो उसके शरीर का द्रव उसके सिकुड़े हुए पंखों में पहुंचता है। इस द्रव को हीमोलिम्फ कहते हैं।
2: और यही द्रव पंखों को मजबूत और उड़ने योग्य बनाता है। यदि तितली संघर्ष न करे तो उसके पंख कभी विकसित ही नहीं हो सकते।
3: तो विमलेश जी, इस घटना का सारांश क्या बनता है?
2: अजीत जी, जिस दया को उस व्यक्ति ने सहायता समझा था, वही तितली के जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन गई। एक विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी करता है तो रातों की मेहनत, असफलताओं का डर और लगातार अभ्यास, यही संघर्ष उसे सफल बनाता है।
3: और ठीक इसी प्रकार विमलेश जी, जब एक खिलाड़ी रोज घंटों पसीना बहाता है तो वही संघर्ष, वही अभ्यास उसे विजेता बनाता है।
2: एक किसान तपती धूप में खेत जोतता है तभी उसकी फसल लहलाती है। जी हाँ श्रोताओ, खासकर अपने विद्यार्थी मित्रों, प्रकृति का नियम है, बिना संघर्ष के न शक्ति मिलती है न सफलता। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया है वही महान बने हैं।
3: श्रोताओ, अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में जानते हैं। उन्होंने गरीबी देखी, संघर्ष किया लेकिन हार नहीं मानी।
2: जी।
3: हेलेन केलर ने जीवन भर दिव्यांगता का सामना किया लेकिन संघर्ष के कारण वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई।
2: हम सभी नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं। उन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताए लेकिन उनका संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक बन गया।
3: जी हाँ विद्यार्थी मित्रों, यदि इन लोगों के जीवन से संघर्ष निकाल दिया जाए तो शायद दुनिया इन्हें कभी याद भी न रखे।
2: जी।
3: तो प्रिय मित्रों, यदि आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है, यदि आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, यदि लगता है कि बार बार असफलता मिल रही है,
2: तो निराश मत होइए। हो सकता है शायद जीवन आपको उड़ने के लिए तैयार कर रहा हो। याद रखिए, कोयला दबाव सहकर ही हीरा बनता है, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है और तितली संघर्ष करके ही उड़ना सीखती है।
3: तो मित्रों, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। श्रोताओ, हमारा आज का प्रश्न है, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं?
3: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
3: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो प्रारूप में यानी ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहते हैं तो जाइए NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर, और इसी ऑफिशियल चैनल पर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों को सुन सकते हैं। श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी जल चक्र की कहानी।
2: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पारंपरिक भारतीय नट और नटी के तुकांत नाट्य प्रारूप में जल चक्र की कहानी को कविता और तालवाद्य की मजेदार संगत से बताया गया है और बच्चों को जल संरक्षण की प्रेरणा दी गई है।
3: पानी रे पानी जल चक्र पर कविता।

0: सोनी जल्दी उठ जा बेटी, भीड़ हो जाएगी।
1: मम्मी सोने दो ना, ये भी कोई समय है उठने का? अभी तो सुबह के 3:30 ही बजे हैं।
0: अरे बेटी, 2 दिनों से पानी नहीं आया है। हमारे सामुदायिक रेडियो पर मैसेज आया था कि मोहल्ले में आज सुबह 4 बजे टैंकर से पानी दिया जाएगा। चल तैयार हो जा, मैं भी बाल्टी ले लेती हूँ।
1: माँ भैया को भी ले चलते हैं ना।
0: अरे उसे सोने दे, भैया थका हुआ है। इन दिनों स्कूल में फुटबॉल मैच चल रहे हैं ना, कसरत करने भी तो जाता है कितनी।
1: माँ मैं भी तो स्कूल जाती हूँ और आपके साथ साथ घर का सारा काम भी कराती हूँ, क्या भैया ही थकता है बस।
0: ओहो अब चल भी, बहस मत कर।
2: नहीं माँ, इस बार मेरी बारी, अगली बार भैया की बारी, ठीक है?
0: ठीक है बाबा, ठीक है, अब चल भी, बहस मत कर।
1: ठीक है चलो।
3: तो साथियों, ऐसा दृश्य थोड़े बहुत अंतर के साथ दुनिया के बहुत से देशों में देखने को मिल जाएगा। आए दिन अलग अलग समाचार माध्यमों से सूचनाएं मिलती हैं कि जलाशय सूख रहे हैं, नदियां सूख रही हैं।
0: जी हाँ, इसी तरह सोनी के मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में अक्सर पानी की समस्या बनी रहती थी और हर बार वही क्रम चलता रहता था। वही क्रम यानी सोनी शाम को रेडियो सुन रही थी।
4: नमस्ते, हमारे कम्युनिटी रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट गौहर परवेज। शनिवार को संध्या 7 बजे हरित नगर कम्युनिटी हॉल में आप सबका रहेगा इंतजार। हम लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए एक बेहद खास प्रोग्राम, पानी रे पानी। बेहद खास इसलिए कि उस दिन आप मिल पाएंगे अपने चहेते रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी से। तो आइएगा जरूर।
0: बच्चे बहुत उत्साहित थे क्योंकि प्रोग्राम में आ रहे थे उनके प्रिय रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी। इनका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है। अरे आ गए, देखो।
5: अरे

0: तो प्यारे प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी।
1: और मैं हूँ झुमरू।
0: नमस्कार।
1: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, किस पर?
1: किस पर?
0: पानी पर।
1: पानी पर? क्यों?
0: वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
1: हाँ, बड़ी तो है। अब देखो ना, इन बच्चों को सुबह सुबह 3-4 बजे पानी लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। क्यों बच्चों, है ना यही बात?
2: हाँ, ये बात तो है,
3: पानी की समस्या तो है, हम तो परेशान हो गए हैं।
1: तो बच्चों, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा जल चक्र।
4: जल चक्र?
1: हाँ, तो आज हम खेलेंगे भाषा का खेल, जिसमें आपको करना है शब्दों का मेल।
0: तो चलो शुरू करें।
1: चलो झुमकी।
0: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ। सूरज निकला चमचमाया, धूप ने पर जल को तपाया, आगे जोड़ो झुमरू जी और वो भी ताल में।
1: हाँ हाँ, जोड़ता हूँ मैं, ये लो बात ध्यान से मेरी सुन लो। नदियों तालों का जल उड़ाया, भाप बन जल ऊपर आया।
0: झुमरू जी ने तो कमाल कर दिया। अब ये भी लीजिए, जब भाप बनी तब बादल छाए, नील गगन में झूले खाए, जब लग गए बूंदों से बादल, भारी हो गए तब बादल।
1: रिमझिम रिमझिम वर्षा आई, चहुं ओर हरियाली छाई, झरनों नदियों में बह पानी, जल चक्र की है ये कहानी।
0: इसके बाद क्या हुआ झुमरू जी?
1: बताते हैं, सुनिए। पानी फिर से सागर जाता, बार बार यही क्रम दोहराता।
0: क्या बात है। सूरज भाप बादल वर्षा का जल चक्र यूं चलता जाता। सभी बोलेंगे जल चक्र यूं चलता जाता।
1: तो बच्चों, कैसा लगा भाषा का ये खेल?
2: बहुत अच्छा।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल चक्र की कहानी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो बारिश का दिन।
6: ये कार्यक्रम एक रोचक नाटक के द्वारा वैज्ञानिक खोज की जानकारी देते हुए बताता है कि ज्वर मापी यंत्र थर्मामीटर का आविष्कार कैसे हुआ।
7: तनु माँ के साथ छुट्टियों में नाना जी के पास आई हुई है। तनु के नाना जी आजकल तनु के साथ छोटे बच्चे की तरह हो गए हैं। वैसे वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, पर अब रिटायर हो चुके हैं और सुबह शाम कुछ समय के लिए घर पर ही मरीजों को देखते हैं। नाना जी के साथ तनु रोज सैर करने जाती है, पर आज बारिश के कारण दोनों घर में बैठकर कैरम खेल रहे हैं।
8: ये मारा। हरा दिया, हरा दिया।
9: वैसे तनु, हाँ, बारिश ने तो हम दोनों को घर पर ही रोक रखा है।
2: जी,
9: पर कैरम का खेल खूब जमा। न जाने कितने समय के बाद कैरम बोर्ड को हाथ लगाया आज मैंने, फिर भी एक खिलाड़ी को हरा दिया।
4: नाना जी हा? मैं तो हार कर भी जीत गई हूँ।
9: ये कैसी अजीब बात है।
4: देखिए ना, आप चाहे हारे या जीते
9: हा?
4: हर बार आपको मुझे कहानी सुनाने का इनाम तो देना ही पड़ता है।
9: ये बात तो है। अच्छा ठीक है, ये बताओ आज कौन सी कहानी सुनोगी, परियों की या जादूगर की?
4: ना परियों की ना जादू वाली, मुझे तो वैसी ही कहानी सुनाइए जैसे हर दिन सुनती हूँ मैं आपसे।
9: अच्छा बेटा तरु, तेरे डॉक्टर नाना के पास तो बीमारी, रोगी और उनके स्वस्थ होने की कहानियाँ ही है बस।
4: लेकिन एक बात तो है, आपकी कहानियाँ परियों की कहानी से अधिक रोचक और मजेदार होती हैं।
9: अच्छा
4: हाँ, और क्या, तो सुनाइए ना।
9: हाँ,
4: जल्दी सुनाइए।
9: हाँ, बेटा
4: जल्दी सुनाइए।
9: अरे सोचने तो दो,
4: जल्दी
9: सोचिए। किसकी कहानी सुनाऊं देखो।
4: अरे जीवन काका।
9: अरे अरे आओ जीवन, क्या बात है भाई।
10: बाबूजी आज सुबह से बुखार सा लग रहा है, सिर में भी दर्द है।
9: बुखार? अरे भाई बारिश में भीग तो नहीं गए कहीं? आओ आओ अभी देखता हूँ, आओ इधर आओ।
10: जी
9: यहाँ लेट जाओ
10: जी।
9: लग रहा है बुखार। अरे बेटे तनु
4: जी,
9: जरा अंदर से थर्मामीटर तो ले आओ।
4: जी अभी लाई।
9: हाँ हाँ खांसी भी है तुम्हें, जरा जबान दिखाओ तो।
10: जी
9: पेट भी गड़बड़ है तुम्हारा तो। एक मिनट देखो, ये बारिश की वजह से हुआ है
10: जी।
9: पहली बारिश में थोड़ा सावधान रहा करो।
10: जी जी जी जी।
9: अरे बदलते मौसम का असर तो होता ही है ना भाई जीवन।
4: जी नाना जी।
9: हाँ ला बेटा ला। जीवन
10: जी
9: जरा मुंह खोलो, लो इसे जीप के नीचे रख लो।

0: डॉक्टर साहब ने थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देखा तो हल्की हरारत थी। उन्होंने जीवन काका को दवा दी और आराम करने के लिए कह दिया। जीवन चला गया। नाना जी को लगा जब वो थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देख रहे थे तो तनु कभी उन्हें और कभी थर्मामीटर को ध्यान से देख रही थी।
1: अरे तनु
2: जी,
1: क्या बात है, कोई कहानी सोच रही है अपने नाना को सुनाने के लिए है?
2: नाना जी, मैं सोच रही थी जब पुराने समय में थर्मामीटर नहीं थे तो डॉक्टर मरीज का बुखार कैसे नापते थे?
1: बेटी तनु
2: जी,
1: ये समझ लो कि इसका उत्तर अपने आप में एक मजेदार कहानी है।
2: तो फिर आज वही कहानी सुनाइए ना।
1: सुनो
2: जी,
1: जब थर्मामीटर नहीं था ना, तब डॉक्टर रोगी को छूकर ही उसके ज्वर यानी बुखार का अनुमान लगाने की कोशिश करते थे।
2: लेकिन अनुमान से शरीर में कितना डिग्री बुखार है ये पता लगाना तो कठिन होता होगा।
1: एकदम ठीक बात कही तूने बेटा।
2: दुनिया का सबसे पहला थर्मामीटर किसने बनाया था
1: ये जानने के लिए तो तुम्हें लगभग 400 वर्ष पीछे इतिहास में जाना होगा। और बिटिया, वो भी अपने देश से दूर विदेश में।
2: तो चलिए ना, मैं तो तैयार हूँ इस इतिहास यात्रा के लिए।
1: चलो। ये यूरोप के एक देश इटली की घटना है बेटा। तब वहां एक चिकित्सक थे डॉक्टर सेक्टोरियस
2: जी।
1: दुनिया का सबसे प्रथम थर्मामीटर बनाने का श्रेय उन्हीं को दिया गया है।
2: अच्छा।
1: हाँ, पहला थर्मामीटर देखने में इतना विचित्र था कि जब डॉक्टर इससे किसी रोगी का बुखार देखते तो हंसी आ जाती थी।
2: नाना जी, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे कैसा था उनका बनाया थर्मामीटर?
1: बेटे, एकदम अलग आकार था।
2: अच्छा।
1: बिल्कुल अलग आकार का था ये पहला थर्मामीटर।
2: जी।
1: उससे बुखार देखने के लिए डॉक्टर को पानी में उठते बुलबुले गिनने पड़ते थे।
2: अच्छा।
1: अर्थात ज्यादा बुलबुलों का मतलब होता था तेज बुखार। कम बुलबुले हो तो थोड़ा बुखार।
2: लेकिन पानी में उठने वाले हवा के बुलबुलों का बुखार से क्या संबंध हो सकता है?
1: बिटिया रानी, वही मजेदार बात सुनो। वो थर्मामीटर भी शीशे की एक लंबी ट्यूब या नली के आकार का था जो बीच में कई जगह मुड़ी हुई थी।
2: अच्छा।
1: हाँ बेटा, उसके एक छोर पर शीशे का एक छोटा सा ग्लोब था।
2: अच्छा।
1: हाँ, और नली का दूसरा छोर खुला हुआ था।
2: वाह, शीशे के ग्लोब वाला थर्मामीटर। लेकिन बुखार कैसे देखते थे उस थर्मामीटर से?
1: बताते हैं बेटा, बताते हैं। देखो
2: जी,
1: जिसे बुखार होता
2: जी,
1: डॉक्टर उसके मुंह में नली का ग्लोब वाला भाग रखते
2: जी।
1: उसके बाद नली का दूसरा छोर एक खुले बर्तन में भरे पानी के अंदर डाल दिया जाता।
2: फिर
1: मुंह में रखा ग्लोब शरीर के तापमान से गर्म होने लगता
2: जी।
1: अब ग्लोब गर्म होता तो उसमें मौजूद हवा भी गर्म होकर फैलने लगती।
2: अच्छा।
1: और नली के मुड़े हुए हिस्से में से होकर दूसरे छोर पर पानी से भरे बर्तन में पहुंचने लगती।
2: लेकिन बुखार?
1: ओहो बेटा, बताता हूँ, सांस लेने दे बूढ़ा आदमी। सुन ध्यान से
2: जी।
1: तो बेटा, तुम तो जानती हो कि हवा पानी से हल्की होती है ना
2: जी,
1: इसीलिए वो बुलबुलों के रूप में पानी से बाहर निकलती जाती
2: जी।
1: शरीर का तापमान जितना अधिक होता उतने ही ज्यादा बुलबुले बनते, और डॉक्टर उन बुलबुलों को गिनते रहते।
2: अच्छा।
1: और बुखार का अनुमान लगा लेते। लेकिन एक बात।
2: क्या?
1: देखो, पहले प्रयोग के समय देखा जा चुका था
2: जी
1: कि सामान्य तापमान वाले व्यक्ति के मुंह में ग्लोब से पानी में कितने बुलबुले निकलते थे।
2: यानी बुलबुलों की संख्या जितनी अधिक होती, रोगी का बुखार उतना ही तेज होता।
1: बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक।
2: लेकिन बात तो तब भी अनुमान पर ही टिकी होती ना।
1: हाँ बेटा, ये तो बात सही है, क्योंकि तापमान नापने का कोई तरीका तो तब था नहीं।
2: हाँ जी,
1: इस तरह ग्लोब और बुलबुलों वाला थर्मामीटर
2: जी
1: दुनिया का पहला थर्मामीटर माना गया।
2: अच्छा।
1: हाँ बेटा, आधुनिक थर्मामीटर जैसे आकार वाला थर्मामीटर फ्रांस में सन 1654 में बना।
2: जी
1: समझ गई ना।
2: जी,
1: पर इसमें पारे के स्थान पर अल्कोहल भरा होता था
2: जी,
1: और तापमान नापने के लिए उस पर मोती लगे होते।
2: अच्छा।
1: आज जैसे निशान नहीं होते थे बेटा।
2: वाह, मोतियों से जड़ा थर्मामीटर।
1: नहीं बेटा, वो सच्चे मोती नहीं होते थे, मोती जैसे होते थे।
2: अच्छा।
1: हाँ बेटा, और फिर 19वीं सदी के आते आते आज के उपयोग में आने वाला थर्मामीटर बना लिया गया।
2: अच्छा।
1: कल बिना पारे वाले थर्मामीटर बन गए हैं
2: जी,
1: इसे डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं।
2: अच्छा।
1: डिजिटल थर्मामीटर से बुखार कितना है ये जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती बेटा
2: जी,
1: लगाते ही डिजिटल थर्मामीटर सही तापमान बता देता।
2: अरे वाह।
1: हाँ। पर बेटा, डिजिटल थर्मामीटर महंगे होने के कारण अभी भी ज्यादा चलन में नहीं है।
2: हाँ, और इस बार जब किसी को बुखार होगा तो हम डिजिटल थर्मामीटर से ही देखेंगे।
1: हाँ, क्यों नहीं बेटा। और बेटे, अब नेत्रहीन लोगों को बोलकर बुखार बताने वाला थर्मामीटर भी बन गया है।
2: वाह, क्योंकि नेत्रहीन तो थर्मामीटर पर आई रीडिंग को नहीं पढ़ सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये थर्मामीटर तापमान दिखाता नहीं
2: जी,
1: बोल कर बतला देता है।
2: नाना जी।
1: हाँ?
2: मैंने देखा है कि छोटे बच्चों का बुखार देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लगातार अपने हाथ पैर चलाते रहते हैं।
1: सही कह रहे बेटा, लेकिन एकदम छोटे शिशु का बुखार देखने के लिए भी विशेष प्रकार का थर्मामीटर बना लिया गया है।
2: अच्छा।
1: हाँ, इसे क्या करते हैं कि बच्चे के कान में लगाकर बुखार कितना है ये जान लिया जाता है।
2: अरे वाह।
1: हाँ, और शिशु को जरा भी परेशानी नहीं होती।
2: वाह, ये तो बड़ी मजेदार जानकारी दी आपने नाना जी।
1: है ना
2: जी।
1: अरे बेटा, नाना किसका हूँ।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम वो बारिश का दिन, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
3: जगबंधु,
4: चेतना
3: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए पेश है एक बार फिर फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं बेताब फिल्म का गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में। आनंद बख्शी की रचना है और संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

अगला गीत हमने लिया है एफएम साजेंसी, कुमार सानू, एसबी बाल सुब्रमण्यम और साथियों की आवाज़ है, समीर बोल हैं और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल, अमित कुमार और साथियों की आवाज़ में जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत। धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ने और फिल्म का नाम है तेजाब।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं आनंद मिलन के संगीत से सजा हुआ गीत बोल समीर के हैं। फिल्म का नाम है बेटा और खूबसूरत आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना
1: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
1: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से होगा।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
7: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
8: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
6: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
7: आकाशवाणी है ना,
9: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
7: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
6: शाम सुहानी हो,
7: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
6: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
7: सफर में
6: आपके साथ
7: आकाशवाणी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। शाम के 7 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोसी। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति गठित की है। ये समिति दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच करेगी। समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एल आर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। अगली सुनवाई 15 सितम्बर को होगी। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने क्षेत्र की प्रगति, विकास और हितों से जुड़े साझा मुद्दों तथा प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोष, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों में सहकारी संघवाद पर बल दिया गया। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोनोबी ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और आपसी विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 2024 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवक प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण समापन समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जमीनी स्तर पर नीतियों को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीपीएन के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति चुने गए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद, जातीय संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया, जो दक्षिण पंथी बांग्लादेश जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी NCP के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट प्राप्त हुए। एम्स्टरवीन में महिला हॉकी विश्व कप में इस समय भारत का मुकाबला इंग्लैंड के साथ चल रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक दोनों टीमें गोल रहित बराबरी पर हैं। दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम 8 में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले हमारी आज की सांध्यकालीन सभा के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही पलों में यानी 7:30 पर हम प्रसारित करेंगे कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें आप सुनेंगे भेंट वार्ता। विषय रहेगा पशुओं के उत्तम स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु चारा प्रबंधन, और जानकारी देंगे डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:15 पर और 9:30 पर। रात्रि 10 बजे पेश करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा डॉक्टर प्रभा आत्रे का ख्याल गायन, राग होगा मधुवंती। और अब बारी है हमारे कल के कार्यक्रमों की। आकाशवाणी भोपाल से सुबह 7:20 पर प्रस्तुत करेंगे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा हम प्रसारित करेंगे सुबह 8:30 पर। गांधी चर्चा का समय रहेगा 9:15। फिल्म संगीत होगा सुबह 9:30 पर और 10 बजे जिले की चिट्ठी। सुबह 10:05 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला संसार में, सजीव फोन इन कार्यक्रम आओ सखी बातें करें। दस बजकर 30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में हम आपको सुनवाएंगे धानी गुंदेचा का ध्रुपद गायन, राग होगा गुर्जरी तोड़ी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में 11 बजे सुनेगा फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। दिन में 12 बजे 2:30 पर और रात्रि 10 बजे हम पेश करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा धारावाहिक जमुनिया का तीसरा भाग, समय होगा दिन में 12:30। 1 बजे होगा महिला कार्यक्रम, 1:30 पर सुनिएगा लोक संगीत का कार्यक्रम। 1:45 पर पेश करेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम और शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा वाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होंगे।

फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं शाम 5:33 पर, 6:30 पर, रात्रि 8:15 पर और 9:45 पर। शाम 6 बजे होगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा, जिसे आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत करेंगे। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में, खेल जगत कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा धानी गुंतेजा का ध्रुपद गायन, राग होगा केदार। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ब्रिक्स के जरिए पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में युवाओं से कौशल सीखकर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने पीथमपुर में 850 करोड़ रुपए की 2 औद्योगिक इकाइयों का किया शुभारंभ और प्रदेश के कॉलेजों में खाली सीटों पर 21 से 31 अगस्त तक विद्यार्थियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स की अध्यक्षता में भारत जन केंद्रित जलवायु कार्रवाई के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्सर्जन तीव्रता को कम करने और गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने में भारत की प्रगति एक सतत और हरित दृष्टिकोण को मजबूत करती है। अपने लेख में पर्यावरण मंत्री ने कहा कि भारत ने मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही वनरोपण, वन अग्नि प्रबंधन और आपदा प्रतिरोध क्षमता के साथ साथ पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित अनुकूलन को प्राथमिकता दी है। श्री यादव ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स एक ऐसे भविष्य के लिए काम कर रहा है जो सामूहिक विकास में पृथ्वी को सर्वोपरि रखता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में आयोजित आरंभ परिचय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रशिक्षुओं से संवाद करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश को कृषि के साथ साथ कौशल विकास के क्षेत्र में भी आगे ले जाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने युवाओं से कौशल हासिल कर रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। समारोह में कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री डॉ. गौतम टिटवाल और पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमी और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 11,18,937 आवासों की स्वीकृति सौंपी गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जरूरतमंद परिवारों को पक्की छत देने का संकल्प पूरा किया जा रहा है। श्री चौहान ने बताया कि वर्ष 2016 से अब तक बिहार में 50 लाख से अधिक पक्के आवास दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी लागू होगी जिससे किसानों को फसल नुकसान की भरपाई मिल सकेगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज धार जिले के पीथमपुर में 850 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित 2 अत्याधुनिक औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। प्रताप ग्रुप की इन इकाइयों में ऑप्टिकल फाइबर और लिथियम बैटरी का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक इकाइयों से क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य निवेश के साथ साथ रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इन इकाइयों में युवाओं को आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण भी मिलेगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दोनों इकाइयां आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल कनेक्टिविटी और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसके तहत झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। न्यायालय ने उन उम्मीदवारों को राहत दी है जिन्होंने परीक्षाएं पास कर ली थी और अपनी नियुक्ति को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे थे। जस्टिस दीपक रोशन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सफल उम्मीदवारों की याचिकाओं के बाद ये अंतरिम रोक लगाई। उम्मीदवारों का तर्क था कि परीक्षाओं को पूरी तरह रद्द करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की गई है। राज्य वित्त आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का आज भोपाल में लोकार्पण किया गया। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की उपस्थिति में आयोग के अध्यक्ष शैभान सिंह पवैया ने वल्लभ भवन में वेबसाइट का लोकार्पण किया। प्रदेश की उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को एक और अवसर दिया है। प्रदेश के कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की खाली सीटों पर 21 से 31 अगस्त तक अतिरिक्त कॉलेज लेवल काउंसलिंग होगी। इसमें विद्यार्थियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। वहीं एनसीटीई पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए द्वितीय अतिरिक्त चरण में 20 से 24 अगस्त तक पंजीयन और आवेदन किए जा सकेंगे। मेरिट सूची 27 अगस्त को जारी होगी और 29 अगस्त को सीट आवंटन किया जाएगा। आवंटित विद्यार्थियों को 29 अगस्त से 3 सितंबर तक निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत युवा संगम फेज 7 के लिए राज्यों की जोड़ी तय की है। इसके तहत मध्यप्रदेश को कर्नाटक के साथ जोड़ा गया है जिसमें मध्यप्रदेश के लिए SPA भोपाल और कर्नाटक के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटक को जिम्मेदारी दी गई है। युवा संगम का उद्देश्य युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति, परंपरा, विकास, तकनीक और लोगों से जुड़ने का प्रत्यक्ष अनुभव देना है। इसके तहत 5 से 7 दिन के शैक्षणिक और सांस्कृतिक भ्रमण आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर और दमोह में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 8 इंच तक बारिश हो सकती है। 20 से 24 अगस्त के बीच बारिश का असर मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। भारी बारिश के कारण सतना के चित्रकूट में गुप्त गोदावरी की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों हनुमंतिया टापू, सैलानी टापू और ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी पर संचालित नावों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने विशेष समिति का गठन किया है। कटनी में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर जिले में समरसता संकल्प अभियान और कलश वंदन यात्रा का आज शुभारंभ किया गया। वहीं छिंदवाड़ा में संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर आज समरसता संकल्प अभियान और कलश वंदन यात्रा का जिला स्तरीय आयोजन किया गया। नीमच कलेक्टर और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में CPR और फर्स्ट एड प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। झाबुआ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बालिकाओं को पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कराने के लिए सशक्त वाहिनी निःशुल्क कोचिंग शुरू की जा रही है। बैतूल में आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण और पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से जिले के चयनित क्लस्टरों और नगरीय निकायों में प्रत्येक शुक्रवार विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। सबसे पहले सुनते हैं हरिराम पुरोहित के स्वर में ये पर्यावरण गीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
1: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
4: आइए सुनते हैं रुचि शिवहरे के स्वर में ये झूला गीत।

0: आज है 20 अगस्त और हर साल 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाउत है। सो घबरइयो ने आज हम मच्छर को भगावे के आसान तरीका सोई बता है। देखो भैया बहनारो, बसकारी में और बसकारी के बाद बहुत ही मच्छर बढ़ जाते हैं। बुखार, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी बीमारी मच्छर के काट भी से ही फैलत है कि नहीं। यही से तो हम सब विश्व मच्छर दिवस मनाउत है और हम सबई को याद दिलाऊत है कि जी छोटे छोटे मच्छर बड़े बड़े रोग पैदा कर दिए थे। सो आज को दिन हम सबई के लाने बहुत ही महत्वपूर्ण रहते है ताकि हम सब जागरूक रहें, सजग रहें और सतर्कता बरतें और मच्छरों को पनपने दें। और विश्व मच्छर दिवस को संदेश भी जोई है हम सबई के लाने कि रोकथाम सबसे बड़ो इलाज है। सुनो भैया बहन भौजी काकी हरो, मच्छर भगावे के देसी जुगाड़ हम बताए देते हैं, खर्चा भी न लगे। पहलो उपाय है पानी जमाने होन दियो अपने आसपास। भैया बहन हरो, गर्मी के दिन ने कर गए सो कूलरों की साफ सफाई करके धर लियो और इतने उतने टायर फेंक दे तो उनमें पानी भर जाते है। इस समय गमलों में खूब पानी भर रहा है, बस कारो जो लगो है। सो ध्यान राखियो कूलरों में, गमलों में और टायरों में पानी जमाने हो पावे, कैसे मच्छर अंडा इतना ही देते है। और दूसरा उपाय है भैया हरो, घर के आसपास की सफाई नोनी राखियो। चारों तरफ पेड़ पौधों की झाड़ियाँ जो हो जाते हैं सो कटाई छटाई बिल्कुल रोज करते रहियो और कचरा इतने उतने फेंकियो और घर आंगन नालियों की साफ सफाई राखियो। काहे की कीचड़ में गंदगी में मच्छर सबसे ज्यादा होते है और रात में सो समय मच्छरदानी लगा के सो जाइयो। खिड़की दरवाजे पे जाली जरूर लगवा लियो और संजा बिरिया सूखी नीम की पत्तियों को धुआं जला ले हो सोई मच्छर भाग जे है। और हमारे सभी भैया बहने बेटा बिटिया रहे संजा बिरिया से ही फुलवाए की कमीज और पैजामा पेंट पहन ली में, इसे फिर मच्छर काटे न पे है। और भैया बहन हरो, सबसे महत्वपूर्ण उपाय है यदि बुखार आवे, सिर दर्द होवे, उल्टी बुखार आवे तो तुरंत ही नजदीकी अस्पताल जाके खून की जांच करवाइयो और समय पे इलाज करवा लियो ताकि स्वस्थ रहो। और हम तो विश्व मच्छर दिवस पे जय के वो चाहत है कि स्वस्थ निरोगी तन रहे, उत्तम रहे विचार, उत्तम स्वस्थ चरित्र है मानव तन को सार। भैया बहन हरो, दिन भर खेत खलियानों में मेहनत करत हो और खेती किसानी के संगे संगे पशुपालन भी करत हो और संजय वीरिया आके पशुओं की देखभाल आहार व्यवस्था को सोई ध्यान रखत हो। सो हम सब भी जो ही चाहते हैं कि हमारे किसान भैया बहने अपने पशुओं को खूब ध्यान रखें ताकि स्वस्थ रहें। मनो ई के लाने जरूरी है विशेषज्ञ द्वारा जानकारी मिलवो। सो बात तो 100% साची है भैया हरो, आज विशेषज्ञ बताए कि पशुओं के उत्तम स्वास्थ्य के लाने चारे को प्रबंधन कैसे करने हैं। सो सुनत है विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग से ज्ञानवर्धक जानकारी और नौने नौने प्रश्न पूछ रहे हैं महेश भैया।
1: आज हम ग्राम सभा में बातचीत करेंगे पशुओं के उत्तम स्वास्थ्य हेतु चारा प्रबंधन पर। हमारे साथ में है आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग जो कि अधिष्ठाता है कृषि महाविद्यालय गंज वासुदा विदिशा मध्य प्रदेश में। डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताएं कि पशुओं के उत्तम स्वास्थ्य हेतु कौन कौन सी चारा फसलों का प्रबंधन हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए।
2: पशुओं के स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए हमारे किसान भाइयों को चारे की फसलों में, जैसे चारे की फसलें तीन मौसम में लगाई जाती हैं, खरीफ में, रबी में और जायद में, मतलब गर्मी में। तो खरीफ में हमारे किसान भाइयों को लोबिया है, नेपियर ग्रास है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है और ग्वार है। इसके साथ साथ रबी में हमारे किसान भाइयों को हरा चारा लेना है पशुओं के लिए तो बरसी में रिजका है, जई है, इन फसलों को लेना चाहिए। इसके साथ साथ ही क्या होता है, गर्मियों में सबसे अधिक पशुओं को हरे चारे की आवश्यकता होती है उनका स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए, उनसे अच्छा दुग्ध उत्पादन लेने के लिए। इसलिए हमारे किसान भाइयों को गर्मियों के दिनों में भी हरे चारे की व्यवस्था करना चाहिए। किसान भाइयों के लिए सबसे अच्छा है कि वो ज्वार की जो हमारी चरी वाली किस्में हैं उनको लगाए, मक्का लगाए, इनसे हरा चारा प्राप्त करें और किसान भाई उनको खिलाए जिससे कि अच्छा दुग्ध उत्पादन मिले और उनका उत्तम स्वास्थ्य बना रहे।
1: डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात बताई है, लेकिन बात आती है ऐसी कौन सी चारा फसल हमारे किसान भाई उगाएं जो वर्ष भर जो है उन्हें पशुओं के लिए न्यूनतम चारा उससे प्राप्त होता रहे।
2: ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमको किसान भाइयों को एक ऐसी फसल लगाना चाहिए कि जिससे उनको वर्ष भर चारा मिलता रहे। क्योंकि पशुओं को तो उन्हें वर्ष दर वर्ष रखना ही है अपने पास। तो इसमें मेरा किसान भाइयों से कहना यह है कि एक घास है जिसे हम नेपियर घास या हाथी घास, ये बाजरा जैसी दिखने में लगती है, इस घास का किसान भाइयों को उत्पादन लेना चाहिए, इसकी खेती करना चाहिए। और इस घास में कुछ बाजरे जैसे आदर्श गुण होते हैं, जैसे कि चारा कैसा होता है इसका, रसीला रहता है, घनी पत्तियां रहती हैं, इसकी बढ़वार बहुत शीघ्र होती है और इसमें प्रोटीन अच्छा रहता है और शर्करा की मात्रा रहती है। इतने सारे गुण होने के कारण ये चारा फसल उत्तम गुण है इसलिए अच्छी होती है और इससे हम किसान भाई वर्ष भर हरा चारा ले सकते हैं। वर्ष भर के अलावा वो एक वर्ष नहीं, उससे अगर उसका अच्छा प्रबंधन करेंगे, उसमें अच्छी कृषिगत क्रियाएं करेंगे तो 3 से 4 वर्ष तक वो लगातार निरंतर उससे हरा घास लेते रहेंगे।
1: ये तो बड़ी अच्छी आपने बात बताई है, लेकिन जो नेपियर घास होती है इसका स्वभाव कैसा होता है डॉक्टर साहब? किस तरह की जलवायु में इसको हम लगा सकते हैं या इसके लिए किस तरह की खेती की आवश्यकता होगी? हाँ,
2: कैसी भूमि हमको चाहिए? किसी भी फसल के लगाने के लिए जहाँ पर लगाई जा रही है वो जलवायु का उत्तम होना, उसके अनुकूल होना बहुत जरूरी है। तापमान जहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस रहता हो, वर्षा अच्छी हो, वायुमंडल में आर्द्रता अधिक हो, इसकी खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। इसकी बढ़वार के लिए मार्च से सितंबर की अवधि बहुत अनुकूल मानी गई है। इसकी खेती के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर यदि इसको 500 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्र में भी आसानी से किया जा सकता है यदि वहाँ पर उनके लिए पर्याप्त सिंचाई का साधन उपलब्ध है। लेकिन सर्दी जब अधिक पड़ती है, जैसे मान लीजिए दिसंबर जनवरी में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है जिन क्षेत्रों में इसका उत्पादन लिया जा रहा है, तो वहाँ पर इसकी वृद्धि सर्दी अधिक होने के कारण कम हो जाती है लेकिन इसको नष्ट नहीं होती है। अब इसका क्या है, इसके लिए कैसी भूमि की आवश्यकता होगी? इसके लिए या अधिकतर चारे वाली फसलों के लिए हमको ऐसी भूमि का चयन करना है जो कैसी हो, उत्तम जल निकास वाली होना चाहिए, जिसमें पानी का जल निकास अच्छा हो। यदि बलुई दोमट भूमि है, दोमट मतलब जिसमें रेत की मात्रा भी अच्छी है, उससे क्या होता है, उसमें जल का निकास अच्छा होता है, ऐसी भूमि इसके उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है।
1: बिल्कुल, तो जल निकास उत्तम होना चाहिए, ऐसी भूमि जो है नेपियर घास के लिए बहुत बढ़िया होती है। गर्ग साहब, आप ये बताएं कि यदि खेत की तैयारी करना है, यदि घास लगाने के लिए, तो किस तरह से इसकी तैयारी करेंगे हम?
2: हम जिस खेत में नेपियर घास लगाना चाहते हैं उस खेत के लिए हमें कम से कम उसको 2-3 बार अच्छी तरह से जुताई करने की जरूरत है, जिससे हमारी भूमि कैसी बन जाए, भुरभुरी बन जाए, और ऐसी भूमि को हमको समतल कर लेना चाहिए पाटा चला करके। पूर्व फसलों के अवशेष नहीं रहना चाहिए, मतलब खेत हमारा बिल्कुल साफ सुथरा और 2-3 बार उसकी जुताई हो और उसको मिट्टी को भुरभुरी कर ले, मतलब ढेले नहीं रहे और खेत समतल हो जाना चाहिए। ऐसा खेत हमारे लिए या ऐसी भूमि हमारे लिए नेपियर घास को उत्पादन के लिए बहुत अच्छी तैयारी मानी जाती है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, नेपियर घास की जो उन्नत किस्में हैं उनके बारे में आप थोड़ा बताएं। कई बार जो है बीज होते हैं तो बीजों की बुआई करते हैं, तो नेपियर घास किस तरह से और उपलब्ध कैसे होगी खासतौर से बीज के लिए?
2: नेपियर घास की किस्में बहुत अच्छी हैं अपने यहाँ। ऐसी किस्मों को लगाना है जिनमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी और मिठास भी हो। हमारे पशु बहुत स्वादिष्ट तरीके से खाएं। पूसा जायंट है, पूसा जायंट एक किस्म है, 25% प्रोटीन है और 12% शर्करा है। दूसरी वेराइटी है नेपियर हाइब्रिड बाजरा, NB21 वेराइटी है, इसे भी हम लगा सकते हैं। APBN एक वेराइटी है, इसका भी है। उसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से निकली हुई पूसा नेपियर 1 है और पूसा नेपियर 2 है, जो सर्दियों में भी अच्छा उत्पादन देती है। यदि तापक्रम नीचे जाता है उसके बाद भी पूसा नेपियर 1 और पूसा नेपियर 2, इनसे हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको बोने के लिए सबसे वर्षाधीन जहाँ क्षेत्र है, जहाँ वर्षा होती है, वहाँ मानसून पर है, इसकी बुवाई हमको मानसून के बाद जून जुलाई में कर देना चाहिए। यदि सिंचित क्षेत्र है कि जहाँ वर्ष भर हमको पानी देने की व्यवस्था रहेगी तो आप फरवरी में कर सकते हैं, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बुवाई का जो समय माना गया है वो फरवरी मार्च माना गया है कि फरवरी मार्च में यदि हम इसकी बुवाई करते हैं तो सबसे उत्तम मानी जाती। अब ये तो बुवाई का समय है, अब इसको बोने के लिए 2 विधियां हैं
1: जी।
2: इनके बोने के लिए तना कटिंग या जड़ कटिंग या प्रकंद, इनका उपयोग किया जाता है। इसके बीजों को नहीं बोया जाता, जैसे हम गन्ना के लगाते हैं ना, गन्ना ही कटिंग लगाते हैं
1: जी।

0: ऐसे ही इसके टुकड़े लगाए जाते हैं।
1: अच्छा,
0: तो इसके टुकड़े लगाए जाते हैं और इनको 6 से 8 सेंटीमीटर गहराई पर हम बो देते हैं। इसको बोने के 2 विधियां हैं, एक तो कूड़ों में बुआई करना चाहिए किसान भाइयों को,
1: जी,
0: और दूसरी बुआई करना चाहिए इसके टुकड़ों को 45 डिग्री के कोण पर झुका के लगाना चाहिए। तो कूड़ों में बुआई करने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा खेत लें जिसमें पर्याप्त नमी हो, क्योंकि हम जो भी कोई बुआई करते हैं किसी फसल की तो नमी होना उसमें पर्याप्त आवश्यक है। उस समय हम क्या करते हैं, 60 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर कूड़ बना देते हैं और दूसरा क्रॉस में कूड़ बनाते हैं हम, इसका अंकुरण हो जाता है। अंकुरण के बाद हम फिर इसमें सिंचाई करते रहते हैं। पर भूमि आपकी कैसी है, मान ली भूमि आपकी थोड़ा हल्की है तो हमको जल्दी सिंचाई करना पड़ेगी, भूमि यदि हमारी भारी है तो हम 20 दिन पर सिंचाई करेंगे, तो पहली विधि दीजिए। दूसरी विधि क्या है, टुकड़ों को 45 डिग्री के कोण पर झुका के लगाना। इसमें क्या करते हैं, इसमें कूड़ बना देते हैं और दोनों कूड़ के जहाँ क्रॉस आते हैं
1: जी,
0: उस पर हम कटिंग को खड़ी लगाते हैं। तो जो कटिंग लगा रहे हैं उसका एक बड दो कली कम से कम हर कटिंग में होना चाहिए, एक कटिंग हमारी जमीन के अंदर जाए और दूसरी बड ऊपर रहे और उसको 45 डिग्री के कोण पर झुका के लगाया जाता है। लगाने के बाद उनको सब कटिंग को हम दबा देते हैं, दबाने के बाद फिर उनमें हम सिंचाई कर देते हैं और हर बार 15 से 20 दिन के अंतर पर हमें इस प्रकार से सिंचाई करते रहना चाहिए। ये 2 विधियां हैं।
1: बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब आपने ये दोनों विधियां बताई, इनको बुआई कैसे करें ये भी आपने बता दिया, इसमें उर्वरक वगैरह की भी आवश्यकता रहती है क्या?
0: इनकी बुआई के पूर्व हमको 40 से 50 किलो नत्रजन डाल देना चाहिए पहले खेत में प्रति हेक्टेयर, 60 से 80 किलो इसको डाल देना चाहिए और 20 से 30 किलो पोटास हमको खेत में डाल के फिर बुआई करना चाहिए। बुआई के बाद पहली कटाई हम जो करते हैं वो 70 से 80 दिन में करते हैं, तो हर कटाई के बाद हमको फिर 40 से 50 किलोग्राम नत्रजन हर कटाई के बाद डालना है। जैसे मान लो अपन 6-7 कटाई एक वर्ष में कर रहे हैं तो हर कटाई के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, नत्रजन का उपयोग करना पड़ेगा जिससे हमारी बढ़वार अच्छी हो और अच्छा चारा हमको मिल जाए।
1: तो डॉक्टर साहब काफी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई है। अब आप ये बताएं कि नेपियर घास को अगर लगाया है तो उसकी कितने दिन में कटाई हो सकती है, मतलब कितने दिन में वो जो है पशुओं के चारे का उपयोग हम उसको कर सकते हैं?
0: नेपियर घास की प्रथम कटाई जैसे मैंने कहा 70 से 80 दिन में करना चाहिए। अगर आपने अच्छी जो अपन बता रहे हैं इस तरीके से यदि आपने प्रबंधन किया है तो 70 दिन में आपकी कटाई के लिए वो हो जाती है। तो पहली कटाई करते हैं, हर कटाई में हमारे किसान भाई को ये ध्यान रखना है कि कम से कम कटाई 2 इंची ऊपर से करना है। इससे करने से क्या होगा, दूसरी बार जब उसकी बढ़वार बहुत तेजी से हो, अगर हम जमीन के आधार से काट देंगे तो बढ़वार की वृद्धि नहीं होगी। दूसरी कटाई के बाद हर कटाई हमको 35 से 40 दिन करना है। हर कटाई के बाद हमको एक बार 40 किलोग्राम नत्रजन अवश्य देना है, क्योंकि नत्रजन एक ऐसी खाद है इसको देने से बढ़वार बहुत अच्छी होती है। और किसान भाई को एक बात और ध्यान रखना है, केवल रासायनिक खाद नहीं, खेत की तैयारी के समय उसको 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद या कंपोस्ट खेत में अवश्य डालना है जिससे हमारा और अच्छा उत्पादन हमको मिले। 3 से 4 वर्ष तक इसकी कटाई करते रहेंगे और प्रति वर्ष कम से कम 6 से 8 कटाइयां हम कर सकते हैं और एक साल की कटाई में इससे 150 से 200 टन यानी 1500 से 2000 क्विंटल तक हम हरा चारा इससे प्राप्त करेंगे।
1: तो किसान भाइयों इस तरह से यदि आप नेपियर घास का उत्पादन करते हैं तो ये पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में बहुत अच्छा विकल्प है। इसमें ज्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी है, बहुत आसान है लगाना और एक बार आप लगाते हैं तो लगभग 4 साल तक इसकी आप कटाई आसानी से करके अपने पशुओं को जो है खिला सकते हैं। डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग साहब आप यहाँ पर आए हमारे स्टूडियोज में, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी पशुओं के उत्तम स्वास्थ्य हेतु चारा प्रबंधन पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सभी किसान भाइयों को राम राम।
2: सो बहुत ही बढ़िया जानकारी हती पशुओं के उत्तम स्वास्थ्य के लाने चारा प्रबंधन पे छेची सलाह दे दी विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग जी ने। सो किसान भैया हरो उम्दा उम्दा प्रश्न पूछ रहे हते महेश भैया। सो आज हम सब ने सीख ले ली कि हरो चारो चोकर चुनी देव पशुओं को शान, दूध दही घी से रहे हमारे सभी सम्पन्न किसान। भैया बहन हरो बातें हो गई, चर्चा कर लई, जानकारी सुन लई, कहते हैं खेतों की मेहनत के बाद मल्हार गीत की एक तान साहुन की याद दिलाऊ थे और तन मन की थकान उतर जाते। सो देखो बदरा भी घिरे आए हैं। सो हम सबई को मन कर रहा है लोक गीत गावे को और सुनवे को। भोरा करत है गुंजार, सखियां गा रही गीत मलार। सो सुनत है मंजू मिश्रा के सुरीले स्वर में प्यारो सो मल्हार गीत।

भैया बहनहरों, मन एकदम खुश होगा मल्हार गीत सुन के। लोक गीतों की धुन और बेटा बिटियाहरों की किलकारी तन मन को खुश कर दी थे। और हम सबई तो जो ही चाहत है कि जा किलकारी हर घर में गूंजत रहे। सो ई के लाने उनके स्वास्थ्य को ध्यान रखवो भैया बहनहरो, बहुत ही जरूरी है। सो भैया भौजी हरो, हमारी बात ध्यान से सुन लियो। आज हम शिशु टीकाकरण की बातें कर रहे हैं, जे टीका अपने लला लली को 10-12 खतरनाक बीमारियों से बचाओ थे। सो भैया बहनहरो, टीका को लेके 3 बातों की गांठ बांध लियो। पहली है कि जन्म के बाद 6 हफ्ता, 10 हफ्ता और 14 हफ्ता और 9 महीना में आंगनबाड़ी दीदी आपको कार्ड बना दे है, ऊपर तारीख लिख दे है। सो फिर उ तारीख को भूलियो, समय पर टीका लगवात रहियो। और दूसरी बात जा है कि भैया बहनहरो, टीका लगवावे के बाद हल्को बुखार सुई आ जात है। सो डरियो ने, घबरियो ने, ई निशानी से पता चल जात है कि टीका अच्छे से काम कर रहा है। और सबसे जरूरी तीसरी बात जा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी में पोलियो, खसरा, टिटनस, निमोनिया, टीबी जैसी बीमारियों के टीका बिल्कुल निःशुल्क लगाते हैं। और फिर हमारे बेटा बिटिया रहे हमेशा सदा स्वस्थ रहे, निरोग रहे। भैया बहने, आलस तो बिल्कुल न करियो, याद रखियो कल ही जाके अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में और आंगनबाड़ी दीदी या ENM से मिलकर टीकाकरण कार्ड बनवा लियो। सुनो भैया बहनों, यदि एक ही टीका छूट गयो तो कहते हैं पूरी सुरक्षा कवच कमजोर हो जाता है। सो टीकाकरण करियो और बेटा बिटिया को स्वस्थ बनाए रहियो।

0: किसान भैया बहनों, इस समय सोयाबीन की फसल में घास फूस बहुत ही उग जात है, सो जंगली घास को नियंत्रण करवो बहुत ही जरूरी है, तभी तो सोयाबीन उत्पादन न हुई है। सो सुनो जानकारी, सोयाबीन में समेकित खरपतवार प्रबंधन विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मनोज कुमार तरवरिया।
1: आज हम बात करेंगे सोयाबीन की समेकित खरपतवार प्रबंधन के बारे में। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि सोयाबीन की फसल में खरपतवार एक प्रमुख समस्या होती है। कई किसानों ने सोयाबीन की फसल की बुवाई कर ली होगी, कुछ ने लेट की होगी। किसान भाइयों, समेकित खरपतवार वो वैज्ञानिक विधि होती है जिसमें हम खरपतवारों को नष्ट करने के लिए एक विधि पर निर्भर न रहकर हमें कई विधियों का उपयोग करना है, जिसमें हम निवारण, सांस्कृतिक, यांत्रिक, जैविक, रासायनिक और कृषि क्रियाओं के साथ सही समय पर उपयोग करना है। इसका मुख्य उद्देश्य किसान भाइयों यह होता है कि हमें किसी एक विधि पर निर्भर नहीं रहना है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ही उस खरपतवार का प्रबंधन करना है। किसान भाइयों, खरपतवार वो अनचाहे वीड्स होते हैं जिन्हें किसान अपने खेत में बोता नहीं है, स्वयं ही उग जाते हैं। इनके कंट्रोल की काफी सारी विधियां हैं, जिसमें हम निवारण हैं, उन्मूलन हैं, रासायनिक विधियां हैं। किसान भाइयों, निवारण विधि वही होती है जिसमें हम समय रहते हुए खेत का जो भी खरपतवार उग रहे हैं उनका कंट्रोल करना है। उन्मूलन, उनको जड़ से उखाड़ लेना है किसान भाइयों। और रासायनिक विधि के द्वारा हम जो सोयाबीन का खेत है उसको समय रहते हुए उनका दवा का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, जैसे कि खेत में जब बुवाई हो जाती है सोयाबीन की फसल, उस समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें इसमें प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस जो रासायनिक दवा होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। प्री इमरजेंस दवा का प्रयोग बुवाई के 2 से 3 दिन बाद कर देना चाहिए, जबकि पोस्ट इमरजेंस दवा का प्रयोग हमें बुवाई के 25 से 30 दिन बाद कर देना चाहिए। इसमें कुछ दवाएं जैसे कि पेनिसिलिन प्री इमरजेंस में आती, पोस्ट इमरजेंस में एमेजाथायपा 70% WP, ये सारी दवाएं आती है। किसान भाइयों, हमें जब दवा का स्प्रे करें उस समय हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि दवा डालते समय हमें तेज गति से नहीं चलना है बल्कि हमें धीमी गति से चलना है। तेज हवा और वर्षा की संभावना हो या वर्षा के दौरान हमें छिड़काव ना करें। छिड़काव करते समय खेत में नमी होना चाहिए, दवा का घोल एक समान बनाना चाहिए तथा उनको प्रयोग करते समय खेत में हमें कौन कौन सी सुविधाएं रखना है, उनमें दस्ताने, मास्क, चश्मा आदि का प्रयोग करना चाहिए ताकि रसायन का शरीर पर प्रभाव ना पड़े। दवा की अनुशंसित मात्रा का हमें अधिक या कम मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो हम दवा मार्केट से लेके आ रहे हैं उनको पैकेट में जो दवा है उनको बच्चों के आसपास या घर में रखना चाहिए या उनको नष्ट कर देना चाहिए। किसान भाइयों, जैसा कि रासायनिक विधि के द्वारा किसान जो सोयाबीन की फसल में जो भी हमारे खरपतवार उगते हैं उनको आसानी से कंट्रोल कर लेता है, उनमें जो क्रॉप बी कंपटीशन होता है वो 15 से 45 दिन के बीच में होता है। इस समय रहते हुए अगर हम खरपतवार का कंट्रोल कर लेते हैं तो उपज में 25 से 60% तक की उपज में वृद्धि होती है, साथ ही हमारे किसान भाइयों को सही मुनाफा मिल जाता है जिससे उन्हें उचित मात्रा में उपयोग मिल सके।
0: सुभैया रो, याद रखियो, समय पे निंदाई गुड़ाई करियो और सही दवाई डालत रहियो। सो देखो बहुत ही उम्दा जानकारी मिल गई। इस समय सोयाबीन में समेकित खरपतवार प्रबंधन पे विशेषज्ञ थे डॉक्टर मनोज कुमार तरवरिया। किसान भैया बहन हरो, आज अपन इंदौर मंडी के भाव के बारे में सोई जान लेवे कि इस समय अनाजों के का भाव चल रहे हैं। गेहूं की बात करें तो लगभग 2400 रुपया से 2650 प्रति क्विंटल हैं और काबुली चना 7000 से 7150 रुपया प्रति क्विंटल चल रहा है। और प्याज की बात करें तो 1100 से 1800 रुपया प्रति क्विंटल है। और भैया हरो, फिर अनाजों की गुणवत्ता के अनुसार भाव तय होते हैं, तो इते इंदौर मंडी के भाव इस समय जे हते। भैया बहन हरो, अब बात कर लेते हैं खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य की, मौसम की। इस समय देखो खरीफ की फसलें एकदम बड़वार पे हैं। सो पहलो काम निराई गुड़ाई और खरपतवार प्रबंधन को, काहे कि इस समय घास फूस बहुत ही उग जाऊ थे धान सोयाबीन उड़द मूंग में, तो 15 दिन में एक बार निराई गुड़ाई जरूर कर लियो। और दूसरो काम है, ज्यादा वर्षा हो गई हो तो खेतों में पानी की निकासी जरूर कर रहियो, नहीं तो देखो फसलों की जड़ें सड़ जाते हैं। और तीसरो काम का है भैया, बोसो ही हम बताए देते हैं कीट और रोग की निगरानी इस समय बहुत ही जरूरी है। सो हफ्ता में दो बार खेतों में जाके पत्ता पलट के देखियो, कीड़ा दिखे तो तुरंत ही कृषि विभाग या कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेके दवाइयों को छिड़काव कर

0: व्रत रही हूँ। और भैया बहनहरों याद राखियो, निराई गुड़ाई निकासी निगरानी तबई तो खरीफ की फसल बढ़िया हुई है, अच्छी हुई है। भैया बहनहरों अब हो रही है जाबे की बेरा, सो हर मंगलवार गुरुवार शनिवार को संजा विरिया 7:30 बजे से सुनियो किसान वाणी कार्यक्रम। स्वस्थ रहे घर स्वस्थ रहे खेत, करियो हिलमिल काम, पुष्पा बहन की अब स्वीकारो, भैया बहनों राम राम।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहा है?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहा,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच
1: है? एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
5: आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: सनवाणी।
1: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम सनवाणी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत और सिंगापुर के बीच रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: रणनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए सिंगापुर में आज चौथा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने भाग लिया। ये सम्मेलन पहली बार 2022 में नई दिल्ली में, दूसरी बार 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बार 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये चौथा गोलमेज सम्मेलन है भारत और सिंगापुर के बीच और इन दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने की ओर इन नियमित मंत्री स्तरीय बैठकों के महत्व पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं एम्बेसडर अशोक सज्जनहार। एम्बेसडर सज्जनहार, आपसे सर्वप्रथम यही जानना चाहेंगे कि सिंगापुर भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट एक बायोलैटरल पार्टनर है और हमारे संबंध कितने प्रगाढ़ हैं और उस संदर्भ में इस गोलमेज सम्मेलन का क्या महत्व है।
3: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जैसे आपने बताया ये चौथा राउंड टेबल हो रहा है

0: आज के दिन अभी संपन्न हुआ है वहां पर सिंगापुर में, चार मंत्रियों का एक साथ आना और मिलना ये बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि सभी के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बिजी स्केड्यूल होते हैं, बहुत ही उनका जो टाइम टेबल होता है, कार्यक्रम होता है, इन सभी को मिलाकर सभी को साथ में लाना, चार सिंगापुर के मिनिस्टर, हालांकि हमने देखा जो आज जो सिंगापुर में मुलाकात हुई है उसमें करीब 6-7 सिंगापुर के मिनिस्टर शामिल थे,
1: जी
0: और हमारी तरफ से तो जैसे आपने बताया ये चार मंत्री उसमें शामिल थे, तो इससे ये तो पता चलता है जो सिंगापुर अपने भारत के साथ संबंधों को कितना महत्व देता है।
1: जी
0: दूसरी बात इसमें ये है जो आसियान के जो 10 देश हैं उन सब में सबसे ज्यादा द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग है तो वो हमारा सिंगापुर के साथ है। करीब सिंगापुर भारत का मैं कहूँ तो छठा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी राष्ट्र है, और करीब हमारा $36 बिलियन उसके साथ द्विपक्षीय एक्सचेंज है, ट्रेड एक्सचेंज है। अगर इसको हम देखें इस परिप्रेक्ष्य में जो पिछले सालों में कितना ये और आगे बढ़कर उभरा है, तो मैं ये कहूंगा 2004-2005 में जब हमारे संबंधों को और आगे ले जाने की प्रक्रिया शुरुआत हुई थी तो तब दोनों देशों के बीच का सहयोग था करीब $7 बिलियन, आज वो बढ़कर $36 बिलियन हो गया है। हालांकि इसमें ये भी देखना होगा जो हमारा आयात है सिंगापुर से वो कहीं ज्यादा है, निर्यात हमारा उसका करीब 50% है, करीब $24 बिलियन हम इम्पोर्ट करते हैं और करीब $11-12 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट है, वहां पर निर्यात है। परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है जो इतने छोटा देश है जिसके 6 मिलियन लोग पॉपुलेशन है सिंगापुर की, और वो हमारा छठा सबसे बड़ा सहयोगी राष्ट्र है। आखिरी बात सोनू जी मैं इसमें ये कहूंगा जो अगर निवेश के नजरिए से देखा जाए, अगर पिछले साल देखें तो करीब $19.8 बिलियन का निवेश सिंगापुर की तरफ से भारत में आया, वो करीब 1/4 निवेश है जो कि भारत को मिला पूरे विश्व से, तो उसमें 1/4 हिस्सा सिंगापुर का था।
1: जी
0: अगर आप देखते हैं 2018 से तो सिंगापुर प्रथम श्रेणी पर आता है जहां से निवेश भारत में आया है। और आखिरी बात निवेश के बारे में कहूं, अगर 2000 से लेकर 2026 तक भारत में सिंगापुर से निवेश आया है करीब $200 बिलियन, जितना भी हमारे पास निवेश आया है $800 बिलियन का इस पीरियड में, इस ड्यूरेशन में, उसका 1/4 हिस्सा सिंगापुर से आया है। तो इसीलिए व्यापारिक क्षेत्र से, निवेश क्षेत्र से, उसके बाद हम अब आजकल की जो और महत्वपूर्ण जो पहलू हैं जैसे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हो गई, कनेक्टिविटी हो गई, इन सभी क्षेत्रों में भारत और सिंगापुर के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। और ये जो चौथा इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल आज हुआ है उसका यही उद्देश्य है इन संबंधों को और आगे ऊंचाई पर हम इसको लेकर जा सके।
1: सो एम्बेसडर सज्जनहा, जैसे आपने कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और सारे जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स हैं उन पर सहयोग बढ़ाने की खास तौर से आज बात हुई है। जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके तहत जैसे आपने कहा एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, फिनटेक, डिजिटलाइजेशन, AI गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी, सो आपको लगता है कि ये सारे जो हाई टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स हैं इनमें हमारा जो आपसी सहयोग है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चाहे वो हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी हो या हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसमें हमने सिंगापुर के पे नाओ के साथ 3 वर्ष पहले एक समझौता किया, जो पहला देश था जिसके साथ हमने ये किया। सो आपको लगता है कि हमारे डिजिटल और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत प्रगाढ़ संबंध की पोटेंशियल है?
0: जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए आपने जिक्र किया है दोनों देशों के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसकी शुरुआत 3 साल पहले हुई थी 2024 में जब प्रधानमंत्री मोदी का सिंगापुर में यात्रा हुई थी, और फिर पिछले साल जब वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत आए थे तो उन्होंने यही कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे ले जाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया था, और उसमें हमने करीब 8 ऐसे धारित किए थे, और उसमें सभी ये जो आपने बताया है डिजिटलाइजेशन है, ग्रीन एनर्जी है, हेल्थ केयर मेडिसिन है, सस्टेनेबिलिटी है, ये सभी चीजें उसमें शामिल होती हैं। और आज की जो मुलाकात हुई है भारत के चार मंत्री और वहां से करीब 6-7 मंत्री सिंगापुर से, तो उनमें इसी को आगे ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। दो वहां पर MOU भी साइन किए गए हैं मैरिटाइम हेरिटेज के ऊपर और फूड सिक्योरिटी

0: के ऊपर लेकर कैसे इनको और आगे बढ़ाया जाए। परंतु मैं कहूंगा जो इसमें बातचीत तो होती रही है, परंतु एक जो बहुत जोरदार कदम लिया गया था वो जब प्रधानमंत्री मोदी 2024 में
1: जी
0: सिंगापुर गए थे, तो उन्होंने उस समय शुरुआत हुई थी जो कैसे हम अपने यहाँ पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करें, और वहाँ की एक बहुत बड़ी कंपनी है AEM जिनके साथ सेमीकंडक्टर कंपनी वहाँ पर उन्होंने विजिट किया था। उसमें उनके साथ सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग भी गए थे वहाँ पर, और दोनों देशों ने यही बात की जो कैसे दोनों देशों के सहयोग इस क्षेत्र में जो अपना नए तकनीकी क्षेत्र है, हाईटेक क्षेत्र है, उसमें आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ट्रेडिशनल सेक्टर्स में हमारा सहयोग अच्छा बढ़ रहा है, अच्छा चल रहा है, तेजी से प्रगति कर रहा है। परंतु अब जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, AI का जमाना है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, ये सब का जमाना है, और इसमें सिंगापुर ने बहुत अच्छी महारत हासिल की है, तो इसको कैसे आगे लेकर जाया जाए। पिछले 3 सालों में हमने देखा है जो काफी प्रगति की है, और आज की जो मुलाकात हुई है उसमें भी इसको काफी आगे लेकर जाया जाएगा। और एक बात मैं इसमें कहूं, क्योंकि डिजिटलाइजेशन की आपने बात की है, आपने फिनटेक की बात की है, तो हमारा जो UPI है और उनका जो पे नाउ है, पहला देश था ऐसा जिसके साथ ये कार्यक्रम शुरू हुआ, और अब तो UPI बहुत प्रचलित हो गया है। मेरे विचार से 20 देशों से ज्यादा में उसे हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। परंतु जिसे कहा जाए ये जो रास्ता सीधा सामने देख किया गया था, ये सिंगापुर के साथ हमारे सहयोग के साथ ही किया गया था।
1: एम्बेसडर सज्जनहार, जब हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट आज जो उभर के आया तथ्य कि डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति दी जाएगी, ये आपको कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट लगता है स्किलिंग, ये जो अब नई उभरती टेक्नोलॉजी है उसमें?
0: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्किल डेवलपमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्षेत्र उभर कर आया है, और उनके जो लीडर ऑफ द डेलीगेशन, जैसे हमारे यहाँ से निर्मला सीतारमन जी हमारी डेलीगेशन को लीड कर रही थी, और उनकी तरफ से जो उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गैन किम यांग हैं, उन्होंने जब इसके बारे में बताया तो उन्होंने कहा स्किल डेवलपमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा है, क्योंकि अगर वहां पर ये एडवांस टेक्नोलॉजी की सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं, सहयोग को बढ़ाते हैं, तो अब बहुत सारी सिंगापुर की कंपनीज हैं जिन्होंने वहां पर निवेश किया है, वहां पर इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें मैं ये भी बता दूं जो हमारी तरफ से अभी 2 साल पहले हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने वहां पर इन्वेस्ट इंडिया का ऑफिस खोला है, जिससे कि और ज्यादा वहां से निवेश हो सके भारत में, वहां से इन्वेस्टमेंट हो सके, और अलग अलग वहां की सिंगापुर की कंपनी भारत में आकर अपने को स्थापित कर सके और दोनों देशों के सहयोग को आगे ले जा सके। तो इसमें स्किल डेवलपमेंट में ये बिल्कुल जैसे कहा जाए इंडस्ट्री बेस्ड एक एक्टिविटी इनिशिएटिव होगा, जो जो भी इसमें इंडस्ट्रीज लग रही हैं, जो जो कंपनीज आ रही हैं, वो अपने लोगों को कैसे स्किल किया जाए, उसमें सिंगापुर बहुत हमारी सहायता कर सकता है और कर रहा है। इसको और आगे ले जाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास और चाहे क्षेत्र में, जैसे आपने बताया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में हमने बहुत प्रगति की है, परंतु और जो बहुत क्षेत्र हैं, जैसे ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, AI है, इसमें हमने अपने को स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हमको जोर देना है, जो कि हम सिंगापुर के सहयोग से बिल्कुल कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, और सिंगापुर भी इसमें बहुत ही तत्पर प्रतीत होता है, क्योंकि वो भी देख रहा है जो भारत एक सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। हालांकि हमने देखा है विश्व में कितने ज्यादा उतार चढ़ाव आए हैं, बदलाव आ रहा है, परंतु फिर भी भारत का जो दर है जिससे हमारी आर्थिक स्थिति आगे बढ़ रही है वो काफी मजबूत है, और यह देखते हुए सिंगापुर भी चाहता है जो भारत के साथ सहयोग को और तेज किया जाए और ज्यादा प्रगाढ़ किया जाए।
1: जी बिल्कुल, कुछ आंकड़े हैं कि लगभग 9,000 भारतीय कंपनियां सिंगापुर में हैं, 6 हमारे पब्लिक सेक्टर व्हीकल्स हैं, 10 बैंक हैं, और सिंगापुर की भी 4 से 40 ज्यादा कंपनियां भारत में हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि जिस तरह के एफर्ट्स किए जा रहे हैं इन्वेस्ट इंडिया को लेकर या स्किलिंग को बढ़ाने के, बायलैटरल ट्रेड आपको लगता है इससे बढ़ेगा, और जो ये आपसी संबंध है, जो प्रेजेंस है सिंगापुर की भारत में, भारत की कंपनियों की सिंगापुर में, इसमें और हम बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं?
0: जी मेरे विचार से बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया, हमारी करीब 9,000 कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं। इसके अलावा हमारी PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बैंक्स हैं बहुत मात्रा में वहां पर। सिंगापुर के बैंक्स भी यहां पर हैं, जैसे DBS है जो कि वहां का सबसे बड़ा बैंक है, काफी यहां पर भारत में भी विस्तार कर रहा है। तो इसीलिए, और ये जो इन्वेस्ट इंडिया ऑफिस है, ये वही है जो इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है, परंतु सिंगापुर कंपनीज भी यहाँ पर हमको लेकर आनी है।
1: जी
0: और इसीलिए अगर आप देखें जो इसका अनुपात 9,000 है भारतीय कंपनी वहां पर, और करीब 440 कंपनी है सिंगापुर की जो भारत में है, और भारत इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इतना बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ पर यकीनन और भी सिंगापुर कंपनी आएंगी, तो उनके अपना फायदा होगा, और मैं ये कहूंगा जो भारत का भी फायदा होगा, क्योंकि भारत में अगर निवेश होता है, भारत में अगर नई कंपनी इस्टेब्लिश होती है, न केवल स्टॉक एक्सचेंज में करें, न केवल स्टॉक मार्केट में करें, परंतु वहां पर कोई नए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर उसमें निवेश किया जाए, तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा जो कि हमको चाहिए, और हमारा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगा। तो इसी क्षेत्र में बात की जा रही है, जो वहां से जो स्किल डेवलपमेंट के लिए हैं, और जो सेमीकंडक्टर हैं, और जो नए एडवांस्ड एरियाज हैं मैन्युफैक्चरिंग के,
1: जी
0: उन सभी में भारत में आया जाए, सिंगापुर कंपनीज को यहाँ पर लाया जाए। कनेक्टिविटी की एक और बात है, जैसे हम केवल फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं, हालांकि फिजिकल कनेक्टिविटी के बारे में भी आज बात हुई, जो कैसे सिविल एविएशन से और ज्यादा फ्लाइट्स दोनों देशों के बीच में हो सकती हैं,
1: जी
0: परंतु उसके अलावा चाहे वो डिजिटल कनेक्टिविटी हो, चाहे वो ऑप्टिकल फाइबर्स हो, इन सब प्रकार की कनेक्टिविटी को दोनों देशों के बीच में और ज्यादा जोड़ना और ज्यादा आगे ले जाना, मेरे विचार से ये दोनों देशों के हित में होगा, और इसी के बारे में आज बातचीत हुई है। अगले कुछ सालों में हमें इसके जरूर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका एम्बेसडर सज्जन हार, भारत और सिंगापुर के उभरते द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर हमसे बातचीत करने के लिए।
0: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत और सिंगापुर के बीच रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में

लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म अनुराधा का ये खूबसूरत नगमा, शैलेंद्र का गीत था और संगीत रविशंकर का।

आनंद फिल्म के इस खूबसूरत गीत के बाद आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म पड़ोसन से। बोल है राजेंद्र कृष्ण के, संगीत से सजाया आर डी बर्मन ने और आवाज़ लता मंगेशकर की।

आइए अब सुनते हैं एस डी बर्मन के संगीत से सजा हुआ गीत। बोल हैं योगेश के, फिल्म का नाम है मिली और आवाज़ें लता मंगेशकर और साथियों की।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं शागिर्द फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। मजरूर ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान

0: न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट।
2: न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। 2 याचिकाएं 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देती है, जबकि तीसरी याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के जरिए चुने गए 342 उम्मीदवार अभी नौकरी कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षा प्रक्रियाओं को रोकने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की थी। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की संपूर्ण विकास यात्रा 3 स्तंभ, उच्च साक्षरता दर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और गहरे समुद्र के उपयोग में तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। इन्हीं 3 स्तंभों ने दक्षिण भारत को देश के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से क्षेत्रीय परिषद को एक सार्थक मंच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित 8 मुद्दों में से 5 मुद्दे ब्रिटिश काल से पहले से ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र से लेकर कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी का सामना न करना पड़े। चेन्नई से आर चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को अनुमति दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आम तौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है।
4: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में 2 तरीके अपनाए गए हैं, मौजूदा विकसित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र आधारित पुनर्विकास और नए विकसित होने वाले क्षेत्रों के लिए

0: सड़क मार्ग आधारित योजना मौजूदा क्षेत्रों में परिवहन केंद्रित विकास, मिश्रित उपयोग वाली जगहों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं नए क्षेत्रों में जुड़े हुए सड़क नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लैंड पूलिंग और कम घनत्व वाले क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा। इन दोनों तरीकों से जमीन का बेहतर उपयोग, शहर के अंदर और दूसरे शहरों से बेहतर संपर्क तथा टिकाऊ और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस योजना में लोगों को शहरी विकास के केंद्र में रखा गया है। इसमें खास तौर पर युवाओं, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का आज अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए तैयार किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे। इसका उद्देश्य शहर की विशाल आबादी की आवास मांग पूरा करना है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
2: दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 इयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बनती है।
1: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य देश में ग्रीन हाइड्रोजन का एक मजबूत तंत्र बनाना है और भारत को इसके उत्पादन तथा निर्यात के लिए एक संभावित ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करना है। इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में स्वीकृति दी थी। इसके लिए 2029-30 तक की अवधि के लिए शुरुआती तौर पर 19,744 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यकारी निदेशक डीएमआर पांडा ने बताया कि अभी हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसों में हाइड्रोजन ईंधन भरा जा रहा है और हर बस एक बार फुल टैंक भरने पर 720 किलोमीटर तक चल सकती है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बनाने में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं होता।
3: हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है एंड जिस चीज के लिए पानी चाहिए बहुत ज्यादा। वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमने जो ट्रीटेड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलता है पानी, उसी को फर्दर ट्रीटमेंट करके उसी हाइड्रोजन से बसेस चला रहे हैं। बनाने के टाइम में कोई प्रदूषण नहीं, वाटर कंजर्व कर रहे हैं और जो बसेस चलते हैं एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि वाटर वेपर निकलता है।
1: भारत कल पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन ICT है। ये आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जाति संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया। ओली दक्षिणपंथी बांग्लादेश जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट मिले। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है कि अशांति केवल रावलकोट तक ही सीमित है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति JAAC ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। कोलंबिया ने 10 अगस्त को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में 30 दिन के लिए आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति अले बार्डो डे ला एस्प्रिला ने बोगोटा में कैबिनेट बैठक के बाद इस आदेश पर हस्ताक्षर

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं उमराव जान फिल्म की बहुत ही खूबसूरत गजल आशा भोसले की आवाज में। शहर यार की बोल हैं और धुन मनाई है खयाम ने।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मजरूह का लिखा हुआ गीत। गुलाम मोहम्मद ने इसे संगीत से सजाया है। फिल्म का नाम है पाकिजा और आवाज मंगेश।

मुकेश की आवाज़ में आइए सुनते हैं साहिर का लिखा हुआ गीत, खयाम की बनाई हुई तर्ज़ें। फिल्म का नाम है कभी कभी और आवाज़ें लता मंगेशकर और मुकेश की।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे थे अभिमान फिल्म का गीत। मजरूह के बोल थे और संगीत था एस टी बर्मन का। आपके रेडियो सेट पर आ रहा है अगला गीत। फिल्म शराबी से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें अनजान का गीत है और संगीत बप्पी लहरी का।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10 बज चुके हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में मैं अनुराधा अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा रहे हैं आपको लता मंगेशकर की आवाज में प्यासा सावन से। संतोष आनंद ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं धामणी मनोरा से, तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल डेरे और अनुत्र डेरे ने, और इसी गीत को पसंद किया है कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज शिमाली ने।

डोंगर गांव का तन्मय गजबिये, छत्तीसगढ़ दंतरी से भागवत वर्मा, लिवई वर्मा और गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चंडोरगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू। हमारे सभी श्रोता सुनना चाहते हैं चांदनी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और बाबा की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है शिव हरी ने।

बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर, और घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचालिया, प्रियंका पंचालिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचालिया। हमारे सभी श्रोता सुनने के ख्वाहिशमंद हैं फिल्म तुम्हारे लिए का बहुत ही प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में और संगीत से सजाया है जयदेव ने। तो आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म बाजीगर से। विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज़ है। इस गीत को लिखा है गौहर कानपुरी ने और तर्ज बनाई है अनु मलिक ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं बाजीगर फिल्म की सिंगापुर बड़ा से राजेश नीमा, संगीता भावना और प्राची नीमा, और इसी गीत को पसंद किया है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबीहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, और शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म बंटवारा से। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ है, मजरूह का गीत है और संगीत एस मदन का। इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखा है कालका से शुभ चंद्र बजाज, चंद्रमोहन, इंद्रमोहन, बिट्टा बजाज, सेक्टर 67, मोहाली, पंजाब से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा। एक और पत्र हमारे हाथ में है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया, बेबी आरजू जाजौरिया। और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं पर संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर प्रभा अत्री का ख्याल गायन। राग है मधुमंती।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रभा आत्रे का ख्याल में राग मधुवंती। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य स्थानों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, छात्रों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्यबागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नवीं कक्षा के छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। एम्स्टर्डम में एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड के मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। ग्रुप डी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, जबकि चीन और इंग्लैंड के साथ 2 मुकाबले ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence today and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security and external affairs, and governance. He urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Highlighting the importance of informal interaction and building team spirit among officers, Mr. Modi called for greater engagement between government departments, universities and young people to bring fresh perspectives in policy making. During the meeting, the secretaries shared their experiences on sectoral priorities, emerging challenges and implementation issues. Cabinet secretaries of key ministries and departments and senior officials from the Prime Minister's office attended the meeting. Japan's Minister of Defense, Shinjiro Koizumi, who is on an official visit to India, called on PM Modi today. During their meeting, Mr. Modi shared his vision for further strengthening the special strategic and global partnership between India and Japan and highlighted the importance of India-Japan defense and security cooperation in furthering peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The PM outlined opportunities for Japan to partner with Indian companies and startups in the defense sector, particularly for co-development and co-production under the aegis of Make in India. Defense Minister Koizumi briefed Mr. Modi about the progress in bilateral defense cooperation and reaffirmed the government of Japan's continued commitment towards deepening ties with India. PM Modi also recalled his detailed discussions with Japanese counterpart Sanae Takaiji during her recent visit to India for the 16th India-Japan Annual Summit in July this year. Mr. Modi also appreciated the steady momentum in defense collaboration between India and Japan. Sharing a social media post, Mr. Modi said that they had an excellent conversation on deepening defense and security ties between India and Japan. The PM noted that the special strategic and global partnership between the two nations is an important anchor for peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. Union Cabinet has approved the establishment of a bench of the High Court of Jammu and Kashmir in Ladakh. Union Home Minister Amit Shah today announced this, sharing a social media post. Mr. Shah said that the decision will significantly enhance access to justice for citizens living in remote areas of Ladakh by reducing the time required to avail themselves of the legal services they are entitled to. He added that government is fully committed to the all-round development of Ladakh and to ensuring constitutional safeguards. PM Modi has congratulated Hakainde Hichilema on being re-elected as the President of Zambia. In a social media post, Mr. Modi noted that India greatly values its multifaceted partnership with Zambia. The PM added that he looks forward to working together with President Hichilema to further strengthen India-Zambia relations. Veteran Bangladesh Nationalist Party leader Mirza Fakhrul Islam Alamgir was today elected as the country's 23rd president. The 78-year-old leader secured 255 votes.